मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 24 सितंबर 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितम्बर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता की में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर

0: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फीडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें दौर में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। अन्य मुकाबले में अर्जुन इरेगेसी का माइकल एडम्स के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। निहाल सरीन को ल्यूक मैक्शेन से हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला वर्ग में बी सविता श्री ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार 7वीं जीत दर्ज की, जिसे भारत ने 7वें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविता श्री इस ओलंपियाड में अपने सभी 7ों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

जब भक्त का मन ईश्वर के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, फिर उसे संसार की कोई वस्तु अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर सकती। हालांकि भक्ति में जब तक विकलता, जब तक विवलता ना हो, ईश्वर इतनी आसानी से रिश्ते भी नहीं हैं।

जब भक्त अपने भगवान का हो जाता है, फिर उसे सभी वैसे ही अपनी आत्मा समझने लगते हैं जैसे उनके खुद की आत्मा होती है, क्योंकि वो सबका प्रिय बन जाता है, वो सबके लिए सरल हो जाता है, वो सबके मन का हो जाता है, सबका अपना हो जाता है। ईश्वर की भक्ति में बहुत बड़ा बल है, वो मनुष्य को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। मनुष्य को बदलना तो क्या, ईश्वर उसे अपने आप तक को दे डालते हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।

0: इसी के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आधुनिक भारत के मनुष्यों में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। आपको हम एक महान राजनीतिज्ञ, कानूनविद, देशभक्त और शिक्षाविद के रूप में जानते हैं। आपकी विचारधारा लीक से हटकर रही है, शायद इसीलिए तत्कालीन भारत के कुछ एक नेताओं की विचारधाराओं के साथ आपका सामंजस्य नहीं बैठ पाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के टाइगर कहलाने वाले सर आशुतोष मुखर्जी के सुपुत्र थे। आपका जन्म आज ही के दिन यानी 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन शिक्षा प्राप्ति के बाद सक्रिय रूप से प्रांतीय राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति से भी जुड़ा रहा। बंगाल विभाजन के वे पक्षधर थे। उन्होंने पुरजोर शब्दों में बंगाल के विभाजन की वकालत वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर की थी। आप भारतीय संस्कृति और भारतीय भाषाओं के पक्षधर थे। तभी तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद आपने मातृभाषा बंगला में एमए की डिग्री प्राप्त की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के वे सबसे कम उम्र के कुलपति थे। 30 दशक के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय में आपके शैक्षणिक सुधारों को सदा याद किया जाएगा। औपनिवेशिक भारत के इस विश्वविद्यालय को आपने एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया। फलस्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय राष्ट्रवाद का एक हब बना। इस विश्वविद्यालय ने देश के अनेक स्वाधीनता सेनानियों, वैज्ञानिकों, प्रशासकों, विधिवेत्ताओं और राष्ट्र निर्माताओं को जन्म दिया। इसका श्रेय देश के इस महान शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को है। वे देश के शिक्षकों का सम्मान करते थे। यही नहीं, उनका समूचा परिवार राष्ट्र के प्रत्येक शिक्षक के प्रति आदर भाव रखता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ओर जहां संविधान सभा के सक्रिय सदस्य रहे, तो दूसरी ओर एक स्वप्नदृष्टा के रूप में देश के भावी विकास हेतु अपनी मौलिक राजनीतिक विचारधारा को भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कर इसे मूर्त रूप दिया। आप इस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के क्रांतिकारी विचारों को आधार बनाते हुए वर्तमान राष्ट्रीय सरकार ने सन 2016 में रूबर्न मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का विजन था अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए

0: ग्रामीण विकास के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गाँव के क्लस्टर को रूबर्ण गाँव के रूप में विकसित करना। इस मिशन का उद्देश्य है स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूबर्ण क्लस्टरों को विकसित करना। समय की पुकार है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनैतिक व शैक्षिक विचारों का हम आदर करें, इन विचारों का मनन करते हुए उनके महत्व को समझें और इन विचारों के माध्यम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास राष्ट्रीय विकास के इस वर्तमान मूल मंत्र को हम व्यवहारिक रूप दें।
1: विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

शिक्षा का नहीं है कोई मूल, है जीवन के भांति अनमोल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों को हम सुनवा रहे हैं वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल विषय पर डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।
1: किसान भाई खेती किसानी में लगा बाटे न भी जानत थी कि भाई खेती किसानी से ही काम नहीं चले वाला बा, दो पैसा आमदनी खातिर और भी उद्यम करे के चाहे। अपन किसान भाई चाहे का कहा थी भाई मछली पालन हो, चाहे बाग बागवानी हो, चाहे पशुपालन हो, सब के काम करत थी। ओकरे साथे साथे काफी किसान भाई हैं जोन मधुमक्खी पालन का काम करत थी। तो आज जोन बातचीत के विषय बा कि जोन वर्षा के समय बा जे भी मधुमक्खी पालन काम किए बाटन भाई, वो मधुमक्खी के देखभाल कैसे करें जौने से उनका शहद ज्यादा मिले, इस सब पे बतावे खातिर आज कार्यक्रम में आए बटन डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह जी जवन की इस सब का जानकार मने बटन। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत बा। एक विशेषक के नाते हम आपसे जानना चाह कि बारिश में जवन बाटे वर्षा ऋतु में मधुमक्खियन के देखभाल किसान भाई कैसे करें बतावें आप।
2: किसान भाइयों आप लोग खेती बाड़ी के साथ साथ किसानी के साथ साथ मधुमक्खी पाल कर शहद और मोम और मधुमक्खियों को परिवार बेच कर अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
1: जी जी।
2: और इस समय जो वर्षा ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु मधुमक्खियों के लिए बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
1: हाँ हाँ।
2: एक तो फूल की कमी नहीं, दूसरी इनके प्राकृतिक जो शत्रु होते हैं बढ़ जाते हैं।
1: जी,
2: फूल
1: जी।
2: की कमी, पराग न मिलने और पुष्प रस न मिलने के कारण रानी अंडा देना बंद कर देती है।
1: जी।
2: और इस प्रकार से रानी अंडा देना बंद कर दे, उस समय आपको जो है मधुमक्खियों की अच्छी तरह देखभाल करेंगे तभी आपकी बरसात में मक्खियां बची रहेंगी।
1: अच्छा,
2: वरना जो है आपकी पली हुई मधुमक्खियां घर छोड़ के भाग जाएंगी।
1: ऐसे समय में कहाँ रखे चाहे?
2: मधुमक्खी के बक्सा जो होता है भैया, पेटी होती है, उसको ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर जो है इतनी धूप भी आवे दिन भर में और इसके बाद छाया भी रहे।
1: अच्छा,
2: और
1: अच्छा।
2: उसको रखने के लिए ऊंचे स्थान, समतल स्थान, घास फूस नहीं होना चाहिए, सामने झाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर रखना चाहिए।
1: अच्छा।
2: और रखने का तरीका है भैया, मधुमक्खी के बक्से जो आपके पास 100-150 जो भी कॉलोनियाँ हैं, जो परिवार हैं, उसको स्टैंड, लोहे का स्टैंड होता है, उसके ऊपर रखें। स्टैंड के नीचे प्याली लगा दें और प्याली में बराबर पानी भरते रहें। अगर पानी नहीं भरेंगे भैया तो उसमें जो चीटे चढ़ जाते हैं।
1: अच्छा,
2: और मधुमक्खियों को खा जाते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि जहां आप रखे हुए हैं साफ होना चाहिए, घास फूस नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है समझ लीजिए कि आपकी मधुमक्खियां जो है सामने कोई झाड़ी भी नहीं होनी चाहिए, तभी आप रखना चाहिए, इस प्रकार से रखने चाहिए। और इस समय जो मधुमक्खी पालन जो कर रहे हैं

0: प्राकृतिक शत्रु। उनके प्राकृतिक शत्रु क्या भैया, एक तो चीटा है, दूसरा छिपकली है,
1: अच्छा,
0: तीसरा जो है गिरगिटान है, बरैया, लाल वाला बरैया जो नहीं, हड्डा जिसको बोलते हैं, यह हड्डों से बचाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और
1: अच्छा।
0: अगर नहीं बचाएंगे तो आपकी मधुमक्खियों को खा जाएंगी।
1: हाँ,
0: तो इसके लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मैंने बताया कि प्याली में पानी भरते रहें, छिपकली हैं और गिरगिटान हैं उसको भगाते रहें, और तीसरी जो बरैया लगती है, बरैया जो है अंदर घुस जाती है।

0: मैंने बताया कि प्याली में पानी भरते रहें, छिपकली हैं और गिरगिटान हैं उसको भगाते रहें, और तीसरी जो बरैया लगती हैं, बरैया जो है अंदर घुस जाती हैं, मधुमक्खियों को उठा करके चली जाती हैं, और इस प्रकार से मधुमक्खियाँ कमजोर हो जाती हैं, और उसके लिए क्लीन गेट लगा देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और क्लीन गेट लगाएंगे भैया तभी जो है बरैया अंदर घुस नहीं पाएंगे। और एक समस्या और आ जाती है बरसात के दिनों में, मधुमक्खियों में मोमी पतंगा। यह मोमी पतंगा जो खाली मोम खाता रहता है, दो तरह का होता है, एक तो बड़ा मोमी पतंगा, दूसरा छोटा मधुमक्खी मोमी पतंगा। यह रात को समय जा करके अंदर घुस करके अंडा दे देती हैं। उसके गिरार जिसको कैटरपिलर कहते हैं भैया, वो जो उसमें शेर बनाकर घूमते रहते हैं, जाला बना देते हैं, और मधुमक्खियां जो परेशान हो जाती हैं घर छोड़ के भाग जाती हैं। और एक और जो है इसके शत्रु है वो है हाक मांक। वो जो है शहद का डाकू होता है, रात को निकलता है, अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद मधुमक्खियों को परेशान कर शहद खाता रहता है। इसके लिए भी आपको गेट छोट करना चाहिए, क्वीन गेट लगा देना चाहिए। इस प्रकार से मधुमक्खियों को जो है देखभाल करना चाहिए। और बरसात के सीजन में भैया मैं इसमें फूल न मिलने के कारण मकरंद और पराग नहीं मिलता है, मधुमक्खियों को चीनी का घोल देना चाहिए। अगर चीनी का घोल नहीं देंगे तो मक्खियां जो है भोजन के अभाव में रानी अंडा देना बंद कर देती है और उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पाता है। इसलिए मधुमक्खियों के प्रति परिवार आधा किलोग्राम चीनी पानी के घोल में बना करके हल्का गर्म करके ठंडा होने पर शाम के समय 4 बजे मधुमक्खियों को खिलाना चाहिए। और खिलाने का तरीका है क्या भैया, इसके लिए जो कुछ छत्ते में खाली छत्ते अगर मधुमक्खी के डब्बे में है तो उसमें जो है मधुमक्खियों को छत्ते में वो चीनी का घोल भर दे। और दूसरा तरीका यह भी है कि यह स्लो फीडर जो होता है माने मंद भोजन पात, उसको जो है मधुमक्खियों को चीनी में भर, चीनी का घोल उसमें डाल करके भर करके और उलट करके छत्ता में डालना चाहिए। और एक पराग पूरक भोजन न मिलने पर मधुमक्खियों को पराग पूरक भोजन भैया देखा, सोयाबीन का आटा, चना का आटा,
1: अच्छा,
0: चीनी को पीस करके महीन करके उसको खिलाना चाहिए।
1: और
0: इस प्रकार से जो है मधुमक्खियों को खिलाएंगे तभी मधुमक्खियां बचेंगी, वरना आपकी मक्खियां जो है बच नहीं पाएंगी। और एक समस्या और आती है भैया, अगर फूल न मिले तो किसानों के पास मकई का खेती होती है, मक्का लगाते हैं और मक्का के अगल बगल मधुमक्खियों के डब्बे को रख दें, और इसके बाद वहां पर अगल बगल देसी बबूल है, अब वह खिलने वाला है। देसी बबूल बरसात का जो पुष्प होता है उससे मधुमक्खियां पराग भी मिल जाता है और मकरंद भी मिल जाता है। इस प्रकार से पराग मकरंद मिल जाने से इनका ब्रीडिंग प्रजनन जिसको कहते हैं भैया होती रहती है।
1: और एक मतलब कि भैया कि यहाँ समय डब्बा हुआ रखा है जहाँ या तो मकाई के खेत हो या तो बबूर हो, तो वहाँ से कुछ मिल सकत का है। आजकल फूल ना ही हो तो उनका पराग मिले में दिक्कत।
0: हाँ, मिलना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा।
0: और इसके साथ ही साथ जो आप मधुमक्खियों में चीटे छिपकली और इसको बचाव करने के लिए मधुमक्खियों को अच्छी तरह से कहीं ऊंचा स्थान पर रख दें, और प्रतिदिन चीनी का घोल जो बताया हूँ भैया, प्रतिदिन आधा किलोग्राम चीनी का घोल घोल के दें, और वरना जो है नहीं देंगे तो आपकी मधुमक्खियां घर छूट कर जाती हैं। घर छूट का मतलब होता है भैया मधुमक्खी पालन में पुरानी सहित पूरा परिवार भाग जाती है।
1: अच्छा,
0: तो बरसात ऋतु में मधुमक्खियों को देख रेख करने के लिए आपको जो है मधुमक्खी पालक जो है उनको जो है यह सावधानी बरतनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ मधुमक्खियों को जो है अगर पराग न मिल रहा हो तो मैंने बताया कि पराग के लिए पराग पूरक भोजन दें, ऊंचे स्थान पर देखते रहें, रखते रहें रखें। और इसके साथ ही साथ सप्ताह में एक बार चीनी का घोल जरूर दें, और अच्छा, खाली छत्ते हों तो उसको निकाल के रख देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: यह नहीं कि पूरा छत्ता भर दें और वही छत्ता जब खाली हो जाता है तो उसमें जो है मोमी पतंगा लग जाते हैं, छिपकली लग जाती हैं। इस प्रकार से मधुमक्खी पालन करने से मधुमक्खियां बची रहेंगी।
1: अच्छा,
0: यह मधुमक्खी बचे रहेंगी तभी अक्टूबर नवंबर से भैया फूल जो खिलेगा ना, तो खूब सरसों का शहद, सहजन का शहद, नीम का शहद, जाम का शहद, अलग अलग शहद
1: जब फूल का समय आए,
0: करीब फूलों का शहद जो है मिलता रहेगा, और आप जो है मधुमक्खी पालक जो है जब अधिक लाभ लेने के लिए मधुमक्खियों की शक्तिशाली बनाना चाहिए, और वो कमजोर हो जाएगी मधुमक्खियाँ तो वो मधुमक्खियाँ जो है घर छोड़ के भाग जाएगी।
1: अच्छा, और अच्छा।

0: प्रकार से जो है मधुमक्खी पालन करें भैया, ताकि उनकी जो है मधुमक्खियाँ बची रहे।
1: अच्छा अच्छा। अब भैया जो डब्बा होते हैं वह बारिश में खराब हो सकते हैं,
0: बारिश में खराब हो जाती है। तुम देखिए भैया, जैसे हम लोगों का घर है ना, वैसे डब्बा होता है, नीचे तलपट होता है, उसके ऊपर खंड मधु शिशु खंड होता है, शिशु खंड में 10 छत्ते होते हैं, और 10 छत्ते में जो है रानी रानी का परिवार रहता है।
1: अच्छा,
0: उसमें
1: अच्छा।
0: रानी एक रहेगी, राजा जो है 200-300 तक सीजन में रहते हैं, और इस जो है कमेरियां तो समझ 45,000 से लेकर 80,000 तक होती हैं, और इसके ऊपर जो एक मधुखंड लगा होता है भैया, मधुखंड में भी 10 छत्ते होते हैं, और 10 छत्ते से ही शहद निष्कासन करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और जो
1: अच्छा।
0: किसान भाई मधुमक्खी पाले हैं, अगर मधुखंड लगाए हैं तो चीनी देते समय मधुखंड में चीनी को घोल को भर देना चाहिए।
1: अच्छा अच्छा। हम कहे भैया डॉक्टर अनुज सिंह जी, आप आए भाई वर्षा ऋतु में मधुमक्खियन के देखभाल करे के बारे में बहुत अच्छे से बताएं। हम कही आपका जानकारी की सब किसान भाई लाभ उठाई ही, आपका जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे वर्षा ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल विषय पर डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य की वार्ता, बदलते मौसम में बच्चों में होने वाला सामान्य संक्रमण।
1: सर्वप्रथम हम बात करेंगे नमी से होने वाली बीमारियां, जो वातावरण में बरसात के समय में नमी बढ़ने की वजह से फैलती हैं। ज़्यादातर ये श्वसन तंत्र से फैलती हैं। इसमें पहली सबसे मुख्य बीमारी है, जो सबसे ज़्यादा फैलती है, वो है मौसमी इन्फ्लुएंजा, या जिसको फ्लू बोलते हैं। साधारण भाषा में इसको हम सर्दी जुकाम भी बोलते हैं। इसके लक्षण हैं बुखार, सिरदर्द, अत्यधिक थकान, खांसी, गला खराब होना, बहती या भरी हुई नाक और मांसपेशियों में दर्द। ऐसी बीमारियों में ज़्यादातर केवल एक बुखार की गोली से या बुखार की सिरप से काम चल जाता है। फ्लू के टीके भी होते हैं, लेकिन वो 60 साल से ऊपर के लोग या फिर जिनको गंभीर बीमारी है, जैसे फेफड़े की बीमारी या फिर गुर्दे की बीमारी, उनमें दिया जाता है अक्सर। अगली बीमारी है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। इसमें ऊपर से लेकर फेफड़े तक कोई भी परेशानी, जैसे कि नाक कान गले में इन्फेक्शन या दर्द होना, साथ में कभी कभी कान में भी दर्द होता है, और इसका इन्फेक्शन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो फेफड़ों में परेशानी हो जाती है। इससे तेज़ बुखार, खांसी और सांस लेने में दर्द होता है। कभी कभी छाती में सांस लेते समय गड्ढे भी पड़ते हैं। ये एक सीरियस कंडीशन है, और ऐसे केसेस में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगली बीमारी है खसरा, जो कि ज़्यादातर केस में एक हल्की बीमारी होती है, लेकिन कभी कभी इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। इसके लक्षण हैं तेज़ बुखार, बहती नाक, खांसी, लाल आँखें या फिर आँखों से पानी आना। कभी कभी इस बीमारी में ज़्यादातर केस में लाल शरीर पे धब्बे पड़ जाते हैं, और रैशेज़ जिसको बोलते हैं, ये रैशेज़ स्टार्ट होते हैं कान के पीछे से, चेहरे पर, गले में, और उसके बाद शरीर के अन्य हिस्सों में भी वितरित हो जाते हैं। इसके जटिल परिणामों में कान में दर्द, कान में इन्फेक्शन, या फिर कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है ये बीमारी। अगली बीमारी है वायरल बुखार। वायरल बुखार में आमतौर पर केवल बुखार आता है, जो कि तेज से मध्यम बुखार हो सकता है। शरीर में दर्द, अस्वस्थता या कभी कभी सूखी खांसी और उल्टी भी बच्चों में होती है। इस तरह के लक्षण अगर कोई मिलता है तो उनके इलाज के लिए हमें डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है। इनसे बचाव के लिए हमारे पास जो उपाय हैं, बार बार हाथ धोएं, छोटे बच्चों को छूने से पहले तो अवश्य धोएं। अगर श्वसन संक्रमण या वायरल बुखार है तो पीड़ित लोगों उसके संपर्क में ना आएँ या उनसे दूरी बना के रखें। यदि फ्लू की बीमारी आपको हो गई है या आपके बच्चे को हो गई है या वायरल बुखार हुआ है, खूब सारा तरल पिएं और बच्चे को प्रोत्साहित करें तरल पीने के लिए। खांसते छींकते समय मुंह पर टिश्यू या रुमाल रखें। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। बच्चों को घर के अंदर वायु प्रदूषण, जैसे कि माता पिता धूम्रपान कर रहे हैं, तो उनसे बचाव करें। प्रथम 6 महीने यानी कि शुरू के 6 महीने के बच्चों को केवल माँ का दूध दें, और उसके बाद से उसका

0: पौष्टिक आहार शुरू करें। निमोनिया या कोई भी जटिल परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। छोटे बच्चों का स्तनपान बीमारी में भी जारी रखें और पर्याप्त मात्रा में भोजन और तरल पदार्थ देते रहें। यदि खांसी 7 दिन या उससे अधिक है और निमोनिया के लक्षण हैं तो उस समय अपने चिकित्सक की परामर्श अवश्य लें। अगली कुछ बीमारियां हैं जो पानी की वजह से होती हैं। बरसात के समय में पानी ज़्यादातर संक्रमित हो जाता है क्योंकि गंदी जगह से बहाव होता है। इसमें सबसे प्रमुख बीमारी है दस्त या हैजा। दस्त के लक्षण हैं कि बच्चे को बार बार पतला मल होता है और बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसमें हैजा सबसे खतरनाक होता है। इसमें बच्चों के शरीर से पानी और कुछ पोषक तत्व जैसे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत तेज़ी से निकल जाते हैं और प्राण घातक भी हो सकती है ये बीमारी। इससे बचाव के लिए सुरक्षित स्रोत से पानी पिएं। उबला हुआ पानी या क्लोरिनेटेड वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से पका हुआ खाना खाएं। खाना पकाने से पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लें। मानव अवशिष्ट या मल को अच्छी तरह निपटारा करें, यानी कि कोई भी नाली खुली ना रहे और कहीं इधर उधर मल त्याग ना करें। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ हमेशा धोएं। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए संभावित तरल पदार्थ जैसे कि नमकीन दही पेय, नमक के साथ सब्जी या चिकन सूप या नमकीन चावल का पानी, इसके अलावा ORS उपलब्ध हैं बाज़ार में, जिसको एक ठीक मात्रा में डॉक्टर की परामर्श के हिसाब से बनाकर और बच्चे को देते रहें।
1: बदलते मौसम में बच्चों में होने वाला सामान्य संक्रमण, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नरेंद्र कुमार मौर्य की बात की वार्ता। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स और रात 10 बजे 20वें एशियाई खेलों की झलकी, ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:30 पर डॉक्टर गीता बनर्जी का उपशास्त्रीय गायन, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 पर भी हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर गीता बनर्जी का उपशास्त्रीय गायन। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रीति मिश्रा के गाए भजन और शाम 7:45 पर सुनिएगा संगीता भारद्वाज के गाए गीत और भजन।

लोकगीतों के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर कलाकार होंगे दिनेश कुमार और साथी, उर्मिला श्रीवास्तव और अमित यादव। दिन में 11:30 पर किस्सा गोई में कहानी होगी ताई दूसरी, कहानीकार कृष्णचंद्र,

एक बार फिर से सुन लीजिए। किस्सा गोई में आप सुनेंगे कहानी ताई इसरी, कहानीकार कृष्णचंदर। प्रसारण समय दिन में 11:30। दिन में 12:30 पर आप सुनेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम। दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में बहनें मंजू देवी की बातचीत सुनेंगी। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी आवश्यक है।

शाम 6:30 बजे ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम में ज्ञान सिंह पटेल और राकेश कुमार मौर्य से सुनेंगे किसान।

चर्चा। शाम 7:31 पर राकेश मालवीय और डॉक्टर कविता से सुनिएगा काव्य पाठ, और सबरस का प्रसारण होगा रात 8:30 पर। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: विकास बैंकेन कृषकेभ्यः प्रदीयमानेषु ऋणेषु वृद्धिमूल्यं 11%तः 6% यावत् न्यूनीकृतमस्ति। वित्तमन्त्रालयेन संसूचितं यत् सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रीयाः बैंकाः क्षेत्रीयग्रामीणबैंकाश्च अस्मिन् मासरे रविवासरे 27 दिनांके उद्घाटिताः भविष्यन्ति। भारतस्य पुरुष बैडमिंटन दलं जापान देशस्य आईची नगरे उपान्त्यचक्रे चीनदलेन 1-3 इत्यंकान्तरालेन पराजितम्। अनेन पराजयेन भारतेन कांस्य पदकं प्राप्तं। सहैव भारतस्य पदक संख्या 12 जाता, यस्मिन् 1 सुवर्णं 5 रजत पदकानि तथा 6 कांस्य पदकानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस से संगीतमय।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रोकर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

अभी आप महेंद्र कपूर और साथियों के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी प्रयागराज है। लीजिए अब सुनिए फिल्मों से भजन। रचना है शकील बदायूनी की, धुन बनाई है नौशाद ने, फिल्म है बैजू बावरा और स्वर मोहम्मद रफी का। हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में बैजू बावरा फिल्म की ये रचना।

और अब अंत में हम आपको सुर संगम फिल्म की रचना सुनवा रहे हैं। रचना है बसंत देव की, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और स्वर है पंडित राजन साजन मिश्र का।

0: इसी के साथ फिल्मों से भजन अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी ये सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में कराएगा अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन। और प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, 27 सितंबर तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सहकारिता एवं नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कल लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। लखनऊ के साथ साथ गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में भी ये सेवा शुरू की गई है। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे भारत की टैक्सी है जो भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी।
3: जिन लोगों के बारे में कोई सोचता नहीं था, टैक्सी ड्राइवर के बारे में, टू व्हीलर के बारे में, थ्री व्हीलर के बारे में, अब वह रजिस्ट्रेशन के साथ जीरो कमीशन पर वे भारत टैक्सी का हिस्सा बनेंगे और बदले में उनको सामाजिक सुरक्षा की कवरेज मिलेगी 5 लाख रुपए की।
2: इस अवसर पर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई पोर्टल, सहकारिता विभाग के उर्वरक सेतु मोबाइल ऐप और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटा बेस सेंटर के मोबाइल ऐप UPCDC का भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में करीब 42,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। पैक्स के कंप्यूटरीकरण और ग्रामीण बैंकों के डिजिटलीकरण का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सहकारिता मॉडल देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी बन सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने राजकीय महिला शरणालय का लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार साथ खड़ी है।
3: सरकार हर नारी की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, हर युवा की अच्छी एजुकेशन के लिए और उसके इम्प्लॉयमेंट के लिए पूरी सजगता के साथ कार्य कर रही है, पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है।
2: मुख्यमंत्री कल ही गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ महाराज की 12वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही सड़क हादसे और कैंसर के कारण दिवंगत 2 अलग अलग लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता का चेक भी प्रदान किया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी प्रकरण में कल पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। अभियोजन का आधार जांच में सामने आए CCTV फुटेज, आरोपितों के बयान, बरामद रकम और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बनाया गया है। आगामी दीपावली के अवसर पर अयोध्या धाम में दीपोत्सव के दौरान 26,50,100

0: 101 दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राम की पैड़ी, लक्ष्मण किला घाट, चौधरी चरण सिंह घाट और भजन संध्या स्थल घाट पर सहित कुल 56 घाटों पर दीप प्रज्वलित करने की कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों को कल समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि दीपोत्सव 2026 का आयोजन भव्य और अलौकिक ढंग से किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दीप जलाने का काम 35,000 वॉलेंटियर्स द्वारा किया जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नमक, चीनी या वसा की अधिक मात्रा वाले डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के लिए फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग को एक ही चरण में लागू करने का प्रस्ताव दिया है।
1: उच्चतम न्यायालय में दायर एक हलफनामे में खाद्य नियामक ने ऐसे उत्पादों के सामने के हिस्से पर एक रेड हेक्सागन चेतावनी लेबल लगाने का प्रस्ताव दिया है, जो है स्पष्ट रूप से बताएगा कि कौन सा पोषक तत्व निर्धारित सीमा से अधिक है। प्राधिकरण ने कहा है कि इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले जनता और उद्योग जगत के साथ व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। नियामक का अनुमान है कि परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 4 महीनों के भीतर इन मसौदा नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन किया जाएगा। इस संबंध में आयोग के सचिव हरिकेश चौरसिया ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। उन्होंने अभ्यर्थियों को अपने बायोमेट्रिक डेटा और आधार कार्ड को अपडेट कराने की सलाह दी है। प्रदेश के प्रमुख सचिव ऊर्जा और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने कल लखनऊ स्थित राज्य लोड डिस्पैच सेंटर SLDC का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र के आवश्यक आधुनिकीकरण का कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने SLDC के कामकाज, वास्तविक समय ग्रिड निगरानी, SCADA प्रणाली और लोड प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा की। इस अवसर पर प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि आने वाला महीना गर्मी और बढ़ती मांग के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रहेगा। ऐसे में लोड वितरण अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए, ताकि कहीं भी अनावश्यक ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग न हो, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलती रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ी रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। विशेष श्रृंखला में प्रस्तुत है अटल इनोवेशन मिशन को लेकर एक खास रिपोर्ट।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नीति आयोग के अंतर्गत यह मिशन एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूलों में समस्या के समाधान और नवाचार की सोच विकसित करना तथा विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और MSME में उद्यमिता का एक सशक्त इकोसिस्टम तैयार करना है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
3: पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक इरादा है कि इस एम के द्वारा, अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा, पूरे देश में एक इकोसिस्टम तैयार हो, इनोवेशन, एक्सपेरिमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये एक सिलसिला चले।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लखनऊ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कल हल्की से लेकर

0: मध्यम बारिश होने के साथ ही एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। गोरखपुर और जौनपुर सहित कई पूर्वी जिलों में कल शाम से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर तक प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने प्रदेश में आज से लेकर 27 सितंबर के बीच तेज झोंकेदार सतही हवाएं चलने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत की गति को प्रगति में बदलने का काम करेगी ये सेवा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में 8 आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में कराएगा अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन। और प्रदेश में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, 27 सितंबर तक कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज हम आपको डॉक्टर गीता बनर्जी की गाई राग भैरवी में ठुमरी सुनवा रहे हैं। बोल हैं तुहरो लाल भरमाने और जमुना किनारे श्याम। तबले पर आपके साथ संगत की श्री महावीर भट्ट ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। तो आइए सुने डॉक्टर गीता बनर्जी की राग भैरवी में ठुमरी।

अभी आप गीता बनर्जी की गाई राग भैरवी में ठुमरी सुन रहे थे। तबले पर आपके साथ संगत की थी श्री महावीर भट्ट ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। इसी के साथ उपशास्त्रीय गायन का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बज

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गाँवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
2: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर तक नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
3: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
2: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
4: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
2: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: दिल्ली सरकार ने महिलाओं

0: महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
1: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
2: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुँचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्री

0: मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रोशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया ओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रोशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है, मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है, असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे और जापान में

0: Wushu at Asian Games in Japan, Satnam Singh and Salman Khan secure bronze in rowing men's double sculls. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फ्रीडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को डेढ़ के मुकाबले ढाई पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। यह सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये अवामी खिदमत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमत और अवामी राबतों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। ये सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इस तरह तरतीब दिया गया कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राबतों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राबतों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर से वाराणसी के इस सफर में 10 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गाँव से होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली की काबीना ने दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन और मुखन्नस अफराद को रोजगार के महफूज और बावकार मौके फराहम करना है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता के जेर सदारत मुनक्किद काबिनी मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे, जिनमें से 1170 ऑटो खवातीन के लिए जबकि 130 ऑटो मुखन्नस अफराद के लिए मखसूस होंगे। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन और मुखन्नस अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि हर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट खवातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 और मुखन्नस अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रिक ऑटो मुख्तस किए जाएंगे। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ टैक्सी ड्राइवरों और किसानों के लिए बड़े इकदाम करते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आगाज किया। भारत टैक्सी के जरिए टू व्हीलर टैक्सी और थ्री व्हीलर ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। इन ड्राइवरों को 5 लाख रुपए की सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में इसकी खिदमत शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिरों की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के

0: नज़दीक आधी रात के आसपास पेश आया। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजारत खजाना ने कहा है कि इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस महीने की 27 तारीख को यानी इतवार के रोज खुले रहेंगे। वजारत ने कहा है कि बैंक यूनियनों के यूनाइटेड फोरम की जानिब से इस महीने की 28 तारीख से 30 तारीख तक पूरे मुल्क में 3 दिन की मुजवजा बैंक हड़ताल के मद्देनजर ये फैसला किया गया है, क्योंकि इससे कबल 26 और 27 सितंबर को खत्म हफ्ता की तातीलात भी हैं। वजारत ने कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों की शाखों, दफातर, ATM से वाबस्ता शाखों और करेंसी चेस्ट को इतवार के रोज पूरी तरह काम करने की मंजूरी दे दी है। इधर वजारत खजाना ने कहा है कि सरकार और बैंकों की इंतजामिया ने यूनियनों से अपील की है कि वो मुजवजा हड़ताल मुलतवी कर दें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं कि जरूरी बैंककारी खिदमत बिला रुकावट जारी रहें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता एक केस में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक बैंक फ्रॉड केसों के तहत प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इसी तरह की प्राइवेट फर्मों के दीगर एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से 290 करोड़ रुपए मालियत के बैंक फ्रॉड में मुलव्वस है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की जिंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: मरकजी हुकूमत के जरिए 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के दूर दराज और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को नल से पानी फराहम करना था, जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दुश्वार गुजार जोग्राफियाई इलाके के बावजूद हिमाचल प्रदेश ऐसी पहाड़ी रियासतों में से एक बनकर उभरी है, जहां तकरीबन हर घर में नल के जरिए पीने का पानी सप्लाई हो रहा है। अभी तक रियासत के तकरीबन 17,09,000 देही घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और जल जीवन मिशन के प्रोविज़न के मुताबिक योमिया फीकस 55 लीटर साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। शिमला ज़िले के बदेई गांव की रहने वाली ममता ने कहा कि जल जीवन मिशन ने उनके गांव के हर घर को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं, जिससे ख़ास तौर से ख़वातीन को काफ़ी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: इसी तरह से उमंगों वाले जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज इलाकों में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया।
3: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: फालियत के जायजे और पीने के पानी के मेयार में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से हिमाचल प्रदेश की मुसलसल हौसला अफजाई की जा रही है। जल शक्ति की वजारत ने माली साल 2026-27 के लिए जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के तहत रियासत के लिए 258,07,00,000 रुपए की आर्जी रकम मुख्तस की है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कालिंगापट्टनम के नज़दीक शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के साहिल को पार कर गया है और अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके ज़ेरे असर उड़ीसा के कई हिस्सों, खासतौर पर जनूबी ज़िलों में कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।

0: उड़ीसा में लगातार बारिश होने से कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में पानी भर जाने, चट्टानों के टुकड़े गिरने और सड़क राबते मुनक़ता हो जाने की इत्तला मिली हैं। कल रात देर गए हवा के गहरे दबाव का हल्का कलिंगापट्टनम के नज़दीक साहिल को पार कर गया। उस वक्त 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे। अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने कुदरती आफात की सूरत में तेजी के साथ काम करने वाली 33 टीमों को बचाव से मुतालिक साजो सामान के साथ मुतय्यन किया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है।

0: चल रहे थे, अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है। ओडिशा सरकार ने कुदरती आफात की सूरत में तेजी के साथ काम करने वाली 33 टीमों को बचाव से मुतालिक साजो सामान के साथ मुतय्यन किया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में सरकारी मुलाजमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। इनमें शिमाली और जनूबी 24 परगना, हावड़ा, बांकपुरा, परोलिया और बीरभूम शामिल हैं। शिमाली बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। साहिली जिलों जनूबी 24 परगना और मशरकी और मगरबी मिदनापुर में हवा के तेज झक्कर चलने की भी पेशगोई की गई है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अंडमान, निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इधर गोवा, महाराष्ट्र और रायलसीमा में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी और वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन के झांग शियाऊ यू से 3-0 से हार गईं। रोशबीना ने 2023 के हांगजू एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है, जबकि आजमुदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इधर निहाल सरीन को लूक मैकशेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता वित्युगोव को हराया, जबकि सियाह मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने डैनियल हार्वर्ड फर्नांडिस को शिकस्त दी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय होने वाले आज के अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि तरक्की पजीर ममालिक को फैसला साज इदारों में जगह दी जानी चाहिए। अखबार इनकलाब वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हवाले से लिखता है, भारत अचानक रूस से खाम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता और ना ही फौरन दूसरे सप्लायर्स पर शिफ्ट हो सकता है। अखबार की एक अहम सुर्खी है, सरकारी बैंकों में 27 सितंबर बरोज़ एतवार भी होगा काम, हुकूमत ने हिदायत जारी की। जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी, ड्राइवरों को मिलेगा 5 लाख रुपए का समाजी तहफ्फुज़।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर, यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़।

0: पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। श्रोताओं, अभी आपसे कुछ कहना था लेकिन याद नहीं आ रहा कि क्या कहना था। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, है ना? आज हम इसी एकाग्रता और याददाश्त को सुधारने के तरीकों के बारे में बात करेंगे। हम सबके हाथों में ये जो हथेली के आकार की वस्तु है यानी मोबाइल, इसने हमें बहुत सारी सुविधाएं दे दी हैं, जिससे हमारे दिमाग का काम बहुत आसान हो गया है। किसी का नंबर मिलाना हो तो हम उसका नाम सर्च करते हैं और फ़ोन मिलाकर बात कर लेते हैं, पर हमें उसका नंबर याद नहीं रहता। किसी भी काम को ठीक तरह से करने में जिस एकाग्रता की आवश्यकता होती है वो भी हमें नहीं है, क्योंकि आज हम ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। पहले हमें कई लोगों के फ़ोन नंबर याद रहते थे, क्योंकि हम उन्हें किसी नोटबुक या डायरी में लिखते थे और ध्यान से याद कर लेते थे। मगर आज हम झट से फ़ोन मिलाकर अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। किसी भी चीज़ पर एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें उसे ध्यान से पढ़ना, देखना, सुनना या लिखना होता है, उसे दोहराना होता है। जब हम बार बार पूरी एकाग्रता से ऐसा करते हैं तो हमारा दिमाग जो सुस्त हो गया है सक्रिय हो जाता है और उस चीज़ को याद कर लेता है। यानी एकाग्रता के लिए हमारा किसी वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है, बिना इसके एकाग्रता संभव नहीं हो सकती।

अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा नजर आना भी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आज एकाग्रता और याददाश्त में हम सुधार कैसे करें इस विषय पर। तो हम आपको बता दें कि निरंतर अभ्यास, अच्छी नींद यानी 6 से 8 घंटे का तनाव रहित जो जीवन है, वो आपकी एकाग्रता और याददाश्त इन दोनों को सुधार सकता है। जब हमारा दिमाग एक साथ कई जगह होता है तो एकाग्र नहीं हो पाता। एकाग्रता के लिए उस खास विषय पर ही ध्यान केंद्रित करना होता है। पर्याप्त पानी पीना, पोषण वाली चीज़ों का इनटेक करना या हमें उन्हें लेना, जैसे कि हम अक्सर आजकल जो जंक फूड या पैक्ड फूड या झटपट बनने वाले जो नाश्ते हम कर लिया करते हैं, उनकी जगह अगर हम स्प्राउट्स लें, अंकुरित चीज़ों का इनटेक करें, उन्हें खाएं, तो और हाँ, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ी मात्रा में अगर हम अपने से जीवन में शामिल करते हैं, तो ये चीज़ें भी हमारी याददाश्त को बढ़ाती हैं। याददाश्त को तेज़ करने के लिए एक और तरीका है, वो ये कि अगर हमें कोई चीज़ याद करनी है तो पढ़ने के बाद हमें उसे बार बार दोहराना चाहिए। जो याद है उसकी एक तस्वीर दिमाग में बना लेनी चाहिए। कोई सूची याद करनी हो तो उसे कविता या कहानी की शक्ल में याद करने से भी याददाश्त बढ़ती है। और सबसे ज़रूरी बात, योग, प्राणायाम, व्यायाम, ये अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो फिर इन समस्याओं से हमें कभी दो चार होना नहीं पड़ेगा। योग प्राणायाम शरीर के हर तरह के विकारों को दूर करने में सक्षम है, बशर्ते हम उसे नियमित रूप से अपने जीवन में स्थान दें। हम सारे काम करते हैं लेकिन इनके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, ऐसा कहकर हम खुद का नुकसान कर लेते हैं। अगर समय रहते हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमें इनसे जुड़ी व्याधियों का सामना करना पड़ेगा। याददाश्त बढ़ाने का एक और तरीका है, जो कि एक नया तरीका है, उसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें अपने मोबाइल में 25 मिनट का टाइमर लगाना होता है और उस 25 मिनट के दौरान हम सिर्फ उस एक विषय पर अपने दिमाग को केंद्रित करते हैं जिसे हम पढ़ रहे हों, देख रहे हों, सुन रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, उस एक चीज़ पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं। और उसके बाद जैसे ही टाइमर बजता है 5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा सा टहलते हैं और फिर वही साइकिल हम फिर से दोहराते हैं। ऐसा अगर हम लगातार करते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे फोकस में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। दूसरा तरीका, जैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए टहलते हैं, योग प्राणायाम वगैरह करते हैं, ऐसे ही अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए सुडोकू, चेस या क्रॉसवर्ड पहेलियाँ जिसे हम सुलझाएं, ये हमारे दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। कभी कभी अगर हम उल्टे हाथ से ब्रश करके देखें या फिर घड़ी को अगर हम जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं, अगर राइट हैंड तो हम उसे कभी लेफ्ट हैंड में पहन के देखें, अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो याददाश्त को मजबूत करते हैं। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है एक समय में एक ही काम पर अपनी पूरी ताकत लगा देना। ऐसा करने से हम जीवन में हर क्षेत्र में सफल होते हैं। और हाँ श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें

कि जो एकांत है उससे हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। एकांत अकेलापन लेकर नहीं आता, बल्कि एकांत एकाग्रता का पूरक है, यानी एकाग्रता के लिए एकांत का होना भी ज़रूरी है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: मिस सीमा
3: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
3: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
3: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 बन जाओगे।
3: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
3: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फिल्म संगीत की शुरुआत कर रहे हैं सोनू निगम, पूर्णिमा, विनोद राठौर, वैजयंती और साथियों की आवाज़ों में इस गीत के साथ, जिसे लिखा है समीर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का और फिल्म चल मेरे भाई।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: मैंने प्यार क्यों किया? हम आपसे ये पूछ नहीं रहे, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। गीतकार हैं समीर, संगीत है हिमेश रेशमिया का, आवाज़ें हैं सोनू निगम, जयेश गांधी और अमृता काक की।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और संत कबीर नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्र का।
2: गत माह 31 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में जिला पंचायत भवन सभागार प्रयागराज में आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत सप्ताह समापन समारोह 2026 संपन्न हुआ। समारोह में शिक्षा विभाग के अधिकारियों, संस्कृत के विद्वानों, शिक्षकों तथा संस्कृत प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अपर मुख्य सचिव माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि संस्कृत के ज्ञान से हमें अपने देश के समृद्ध विरासत सहज ही प्राप्त हो जाती है। आज विश्व के अनेक प्रख्यात विश्वविद्यालयों में संस्कृत के अध्ययन एवं शोध का कार्य हो रहा है। ऐसे में भारत में भी संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और व्यापक प्रसार के लिए विशिष्ट प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसी माह 2 सितंबर को नगर निगम सभागार में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महापौर उमेश चंद्र, गणेश केसरवानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और आउटसोर्स कर्मचारियों को किट व स्वीकृत पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर उमेश चंद्र, गणेश केसरवानी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को समझते हुए उनके दैनिक जीवन को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के साथ ही उनके लिए कई सामाजिक सुरक्षाओं की घोषणा की है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का नगर निगम सभागार में सजीव प्रसारण किया गया, जिसे वहां उपस्थित लोगों के द्वारा देखा व सुना गया। उत्तर प्रदेश ने आलू के गिरते भाव और बढ़ती लागत के बीच किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राहत योजना लागू की है। इसके तहत किसानों को उनके भंडारित आलू पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम के मुताबिक इस योजना के तहत किसानों को उनके कोल्ड स्टोर में भंडारित आलू के भंडारण शुल्क पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 200 क्विंटल आलू यानी 400 पैकेट इस पर अनुदान का लाभ उठा सकता है, जिससे उसे सीधे तौर पर अधिकतम 20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए जिले के किसानों की ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 UPITS 2026 के अंतर्गत प्रयागराज मंडल में मंडल स्तरीय क्रेडिट कैंप ऋण मेला का आयोजन सितंबर के प्रथम सप्ताह सरस सभागार विकास भवन प्रयागराज में किया गया। अभियान के अंतर्गत मंडल के प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं फतेहपुर जनपदों में बैंकों द्वारा कुल 281 करोड़ के कृषि ऋण एवं 295 करोड़ के MSME ऋण अर्थात कुल 576 करोड़ का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न ऋण योजनाओं के लाभार्थियों को मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से ऋण वितरण स्वीकृत के चेक के साथ साथ टूल किट का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, जिला विकास अधिकारी GP कुशवाहा, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक धर्मवीर रघुवंशी, संयुक्त आयुक्त उद्योग अजय चौरसिया प्रयागराज मंडल, DDM नाबार्ड शोभना सिंह, उपायुक्त NRLM समा सिंह, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी सहित चारों जनपदों के अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि, MSME एवं स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देना, पात्र लाभार्थियों को बैंकिंग ऋण सुविधाओं से जोड़ना तथा वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना रहा। अभियान के माध्यम से मंडल में 576 करोड़ का ऋण वितरण कर कृषि एवं उद्यमिता गतिविधियों को गति प्रदान करने के साथ साथ रोजगार एवं आजीविका सृजन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। प्रयागराज के मंडलायुक्त डॉ. लोकेश M की अध्यक्षता में प्रयागराज विकास प्राधिकरण की

0: में 143वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालन आख्या के साथ स्मार्ट सिटी मिशन, कुंभ मेला एवं प्राधिकरण की विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई तथा महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक के दौरान स्मार्ट सिटी मिशन एवं कुंभ मेला के अंतर्गत हेल्थ क्लब एवं कल्चरल कॉम्प्लेक्स के कार्यों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने गुणवत्ता एवं पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की जानकारी ली।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संत कबीर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय कुमार श्रीवास्तव का।
2: संत कबीर नगर में सेवा संकल्प अभियान के तहत थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। थाना समाधान दिवस में जिले के जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से कोतवाली खलीलाबाद में फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों ने संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि आवश्यकता के अनुसार अधिकारी मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों का आपसी समन्वय से निस्तारण करने पर जोर दिया। इस दौरान शिकायत पंजिका का निरीक्षण कर पूर्व में निस्तारित मामलों का फीडबैक भी लिया। इस अवसर पर एसडीएम हृदय राम तिवारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संत कबीर नगर में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी आलोक कुमार ने विधायक धनगटा गणेश चंद चौहान के साथ मतराहा बहरा डांडी और ढोल बजा तटबंध का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को तटबंधों की लगातार निगरानी और बारिश से हुए रेन कट्स को तत्काल भरने के निर्देश दिए। सीयर कला में कटान से विद्युत पोल गिरने की आशंका पर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने को कहा। बाढ़ प्रभावित गांवों में चिकित्सा शिविर लगाने, आवश्यक छिड़काव और पशुओं का टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। ढोलबजा में आवागमन के लिए 2 के स्थान पर 4 नावें लगाने को कहा। अधिकारियों को आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने 5 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम के लिए किसानों की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के तहत 50 किसान और 10 अधिकारी कर्मचारी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंत नगर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। किसानों को श्री अन्य फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण से जुड़ी तकनीक जानकारी कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान को जिले के अन्य किसानों के साथ साझा करें और श्री अन्न उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार सिंह और जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार मौजूद रहे। संत कबीर नगर जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बैरक, पाकशाला, अस्पताल, महिला बैरक, कार्यालय और परिसर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई व्यवस्था भी परखी। डीएमएसपी ने जेल कर्मियों को निर्देश दिया कि कारागार में किसी भी प्रतिबंधित सामग्री का प्रवेश न होने पाए और सभी कार्य नियमानुसार किए जाएं। परिसर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक कुलदीप सिंह सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। संत कबीर नगर जिले की महुली पुलिस ने प्रगति फिनसर्व कंपनी के करीब 90 लाख रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में 4 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को ट्रस्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता दिलाने के नाम पर धनराशि की हेराफेरी की गई थी। संत कबीर नगर में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर संत कबीर नगर पुलिस ने 2 दिवसीय ऑपरेशन मजनू अभियान चलाया। स्कूल, कॉलेजों, शिक्षण संस्थानों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष चेकिंग की गई। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान 226 मंचलों से माफीनामा भरवाया गया, 123 वाहनों का चालान कर 1,25,000 रुपये सम्मान शुल्क वसूला गया, जबकि 5 दोपहिया वाहन सीज किए गए। 7 लोगों का VNS की धाराओं में चालान हुआ, 1 के खिलाफ धारा 296 VNS में मुकदमा दर्ज और 12 लोगों का धारा 355 VNS में चालान किया गया। पुलिस ने अभिभावकों को नाबालिगों को वाहन न देने की अपील भी की। संत कबीर नगर पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीणा ने पुलिस कार्यालय में IGRS, CCTNS और CM डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जुलाई 2026 में IGRS पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में संत कबीर नगर ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं CM डैशबोर्ड में जिले को प्रदेश में 5वां स्थान मिला। CCTNS के कार्यों में जनपद ने प्रदेश, जोन और रेंज स्तर पर प्रथम रैंक हासिल की। SP ने सम्मानित कर्मियों की मेहनत और कार्यकुशलता की सराहना करते हुए तकनीकी आधारित समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण पुलिसिंग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: जिले की हलचल आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए समूह स्वरों में देशगान।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 9:30 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। हमारे अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: Sí. सात सौ सैतालीस किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान श्रृंखला में सुनते हैं मेहमान सुमोना एस पांडेय, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी लखनऊ से की गई गुफ्तगु। शरीके गुफ्तगु हैं आसिफ इकबाल।
1: सामईन आदाब, रेडियो की दुनिया सिर्फ आवाज और अल्फाज का सफर नहीं होती, बल्कि ये उन रिश्तों का सफर भी है जो वक्त के साथ दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। आज की ये खास मुलाकात भी आकाशवाणी के एक ऐसे ही यादगार सफर के नाम है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहतरमा सुमोना पांडे जी, जो आकाशवाणी से अपनी लंबी और काबिल फख्र खिदमात के बाद इसी महीने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के एक अहम दौर को अलविदा कहने जा रही हैं। उनके इस सफर में ब्रॉडकास्टिंग के बदलते दौर, प्रोग्राम प्रोडक्शन, टीम मैनेजमेंट और आकाशवाणी की जिम्मेदारियों से जुड़े बहुत से तजुर्बे शामिल रहे हैं। तो आइए इस खास गुफ्तगू का आगाज करते हैं और जानते हैं सुमोना जी से उनके आकाशवाणी के सफर के बारे में। मैम, आज के इस उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है।
2: जी, और आसिफ जी आपको आदाब, हमारे सभी श्रोताओं को आदाब। और आज इस खास मौके पर आपने मुझे बुलाया, थोड़ा असहज जरूर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि आपकी कुर्सी पे मैं बैठी होती थी और इस कुर्सी में हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं टॉकर्स वो बैठते हैं, लेकिन आज आपने हमें कहा है तो आपकी इस बात के लिए मैं आपको बहुत
1: मैम आपका बहुत शुक्रिया, आप इसमें शामिल हुई। मैम, आपने आकाशवाणी में एक लंबा अरसा गुजारा है, अब आप असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्राम के ओहदे से रिटायर हो रही हैं। आकाशवाणी के साथ इस 38 साल से ज्यादा के लाजवाब सफर को जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो किन एहसासात से आपका सामना होता है?
2: सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो शख्सियत रही है वो आकाशवाणी में आने के बाद और निखरी है, क्योंकि आकाशवाणी का जो माहौल है इसमें आके लोगों को जानना, उनके बारे में समझना और ऐसे ऐसे शख्सियतों से मुलाकात हमारी हुई है, साक्षात्कार हमने किए हैं, तो ये सारे जो हमारे एहसास हैं इसके साथ जुड़ा हुआ एक रूमानी रिश्ता तो हो ही गया है, क्योंकि एक परिवार की तरह हम मानते हैं आकाशवाणी को। और एक लंबे चार दशक के अगर हम सफर को तो मुझे कभी कभी ये भी एहसास नहीं होता कि मैंने इतना लंबा सफर तय कर
1: लिया है। जी। तो मैम, आपने कहाँ कहाँ अपने इस फर्ज को अंजाम दिया है और किन रेडियो स्टेशन पे आपकी तैनाती रही है?
2: सबसे पहले मैंने आकाशवाणी अहमदाबाद में ज्वाइन किया था। जी हाँ, ये 1988 की बात है। और वहाँ से फिर मेरा तबादला हुआ मथुरा, मथुरा से फिर मैं लखनऊ आई हूँ, उसके बाद फिर मैं कानपुर रही, रायबरेली, तो ये सारे स्टेशन पे मैं।
1: मैम, आपने किस पोस्ट से आकाशवाणी को ज्वाइन किया था?
2: हमने ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, जो हमारा एक पहला पायदान होता है यहाँ पर आने का ड्यूटी ऑफिसर का, क्योंकि मैं उस वक्त ग्रेजुएशन कर रही थी जब ये वांट निकली थी, तो फिर हमने अप्लाई किया रिटन में और इंटरव्यू से होते हुए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से मैं इसमें आई।
1: मैम, आपने इस तवील अरसे में जो भी प्रोग्राम किए, जो तख्लीकी यानी क्रिएटिव काम किए, खुसूसन जिसको आप आज याद करना चाहती हैं और हमारे सामने से बांटना चाहती हैं वो जरूर बताएं।
2: देखिए आसिफ जी, जब मैंने अहमदाबाद में ज्वाइन किया तो वहां पे लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया एक तरह से, क्योंकि हम लोग का नया बैच था, सब लोग यंग लोग थे और मैं बहुत ही छोटी थी, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, तो लोग सिखाने के लिए तैयार भी रहते हैं।
1: वहाँ तो लैंग्वेज अलग है गुजराती।
2: बिल्कुल, और लैंग्वेज की जहाँ तक आपने बात की, भाषा की बात की है, अब मेरे लिए तो गुजराती बिल्कुल ही अलग भाषा थी, मुझे मालूम नहीं था, तो वहाँ के जितने भी हमारे साथ के कर्मी थे उन्होंने ये शर्त रखी कि सुमोना हम कभी भी तुमसे हिंदी में बात नहीं करेंगे, हम गुजराती में करेंगे, तो इस वजह से वो गुजराती लैंग्वेज।
1: आपने गुजराती भी सीखी?
2: जी, तो ये तो है बात, जहाँ तक की भाषा की बात हुई या आपने जैसे पूछा कि किस स्टेशन पे, तो हमने अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग चीजें सीखी। मथुरा में मैं जब रही तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत प्यार दिया और मेरे हादसा भी हो गया, मेरे पिताजी वहाँ पे उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उस दौरान जो साथियों ने, जो हमारे आकाशवाणी के कर्मियों ने हमारा साथ दिया वो मैं ताउम्र नहीं भूल सकती।
1: तो मैम, आपने कौन कौन से वो प्रोग्राम प्रोडक्शन के काम किए वो जरा हमारे सामने से बांटिए।
2: जी, तो हमने शुरुआत की थी, एक ड्रामा ऑडिशन होने वाला था, तो शुरू शुरू में लगता था हाँ नाटक, क्योंकि हम थोड़ा बहुत स्कूल के दिनों में भी कर लेते थे, तो नाटक में पहले ऑडिशन दिया, फिर हमें लगा कि कुछ और करते रहना चाहिए, तो प्रोडक्शन हमने इस तरह से स्टार्ट किए। और पहले चूंकि ड्यूटी ऑफिसर थे तब लगता था प्रोडक्शन करना कितना मुश्किल काम है, हाँ, तो बहुत समय तक मैं यही सोचती रही कि प्रमोशन मेरा ना हो। मैं ड्यूटी ऑफिसर ही रहूं, अपना ट्रांसमिशन ड्यूटी करूं, क्योंकि शिफ्ट की ड्यूटी होती थी, और उसके बाद आप घर चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब प्रमोशन हुआ तो हमारे जो अफसर हैं उन्होंने हम पे इतना विश्वास रखा कि नहीं आप कर

0: सकते हो। उन्होंने सबसे पहले मुझे ये कहा कि आप एफएम मेहमान करिए।
1: एफएम मेहमान
0: जी। तो मैंने कहा मैं तो इंटरव्यू लेना ही नहीं जानती हूँ, कैसे मैं करूँगी।
1: जी जी।
0: लेकिन उन्होंने इतना विश्वास जताया मेरे ऊपर, तो मैंने कहा नहीं, अगर करना है तो अच्छे से करना है। वहां से शुरू किया, तो एफएम मेहमान से एक ये तो जुड़ाव है ही है, साथ ही इंटरव्यू बेस्ड जितने भी प्रोग्राम्स थे, मैंने हर तरह के कार्यक्रम किए। लेकिन एक खास कार्यक्रम जो मैं करती थी एचआईवी पेशेंट्स के लिए, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो पीड़ित व्यक्ति है जिनके साथ स्टिग्मा जुड़ा होता था, वो लोग सामने आकर बात करते। मुझे लगता है कि ये इतनी अच्छी बात थी कि लोगों से हम जुड़ पाते हैं। और हाँ, एक नाटक का भी मैं जिक्र करूंगी, मैंने एक सीरीज बनाई थी इंद्रधनुष की, जिसमें हमारे जो अच्छे साहित्यकार महिला साहित्यकार थी लिखने वाली, जैसे ममता कालिया, मनु भंडारी या मैत्रेयी पुष्पा, इनकी कहानियों पर आधारित करके मैंने एक पूरा 10 एपिसोड का सीरियल बनाया था।
1: क्या बात है। तो मैम, आपने रेडियो का वो दौर भी देखा है और अब बदलते वक्त और डिजिटल तरक्की के साथ साथ रेडियो को भी बदलते हुए देख रही हैं। जैसे कि अब सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें आप आकाशवाणी को और खुसूसन आकाशवाणी लखनऊ को किस तरह से बदलते हुए देख रही हैं?
0: जी बिल्कुल। और आकाशवाणी ने समय के साथ अपने आप को परिवर्तित किया है, अपने आप को बदला है। और पहले हम लोग स्पूल पे काम करते थे, जो एक टेप टाइप के होते थे, उसपे हम लोग रिकॉर्डिंग करते थे। अब कंप्यूटर्स आ गए, डिजिटल युग आ गया, तो पहले पहले डर भी लगता था कि अगर हम कंप्यूटर बैठ जाएंगे तो शायद अपने आप ही सब इरेज हो जाएगा। तो लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने उसको अपना लिया। और अब सोशल मीडिया की बात अगर हम करें, तो हम लोग हर प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो सोशल मीडिया का। और पूरी कोशिश हमारे तरफ से ये तो हो ही रही है, क्योंकि अलग अलग चैनल्स हैं हमारे, एफएम के चैनल हैं और प्राइमरी चैनल विद भारती है। तो इन तीनों चैनल्स में हमने कोशिश की है कि हम मीडिया के माध्यम से भी लोगों से जुड़े। तो हमने कुछ अपने जो टेक्निकल एडवांसमेंट है करते हुए, जैसे रील्स बनाने का जमाना है, तो रील्स बना के ताकि लोगों तक पहुंचे कि हम किस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं।
1: जी। और मैम, अब तो जो हमारा रेडियो है वो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है।
0: जी। और न्यूज ऑन एयर ऐप है ही है।
1: हाँ,
0: तो अब मोबाइल में सब चीज है, वेव्स ओटीटी है। तो अब बाकी चीजों के साथ साथ हमारा रेडियो भी मोबाइल पे भी है, इसलिए लोगों तक पहुंचना आसान
1: हो गया।
0: और आज भी लोग रेडियो को सुनना पसंद करते।
1: सामईन, आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक दिल फरेब गजल।

0: एक स्टेज पे आपको कुछ जिम्मेदारियां और दी जाती हैं प्रमोशन के साथ साथ, तो वो जिम्मेदारी जब मुझ पर आई तो ये एक बार को मेरे को लगा कि मैं कैसे इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: स्टेशन के पूरे प्रोग्राम काडर को लेके
1: यकीनन
0: चलना।
1: यकीनन जी
0: तो मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं 1-to-1 लोगों से इंटरेक्शन रखूं।
1: जी
0: हमारे जितने भी प्रसारण कर्मी हैं, चाहे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हों या ट्रेक्सेस हों या ADPs हों, यानी कि सहायक निदेशक, ये जितने भी
1: जी
0: हमारे साथ
1: जी
0: के लोग हैं, उनसे मैंने कोशिश की है कि कभी भी ट्रांसपेरेंसी खत्म ना हो,
1: जी
0: और साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन है वो
1: जी
0: बनाए रखने की
1: बातचीत का
0: जरूरत
1: रास्ता
0: है।
1: खुला रहे।
0: बातचीत का रास्ता खुला रहने से ये क्या होता है कि जिसके अंदर भी कोई बात होती है तो वो अगर आपसे शेयर कर लेता है,
1: गलत फहमियां नहीं पनप पाते हो,
0: बिल्कुल, और कभी
1: बातचीत
0: कभी आपके पास सोल्यूशन नहीं भी होता है, लेकिन अगर आप
1: से।
0: सुन लेते हैं किसी को ना, तो उसका आधा दर्द तो
1: हाँ
0: वही
1: बिल्कुल
0: खत्म हो
1: मैम
0: जाए।
1: जी
0: तो
1: जी
0: कोशिश मैंने यही की है कि इस तरह से मानवतावादी जो चीज है उसको लेते हुए हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें चलाना पड़ा है, प्रशासन हमने चलाया, और कभी कभी कुछ कदम भी ऐसे लेने पड़े जो जरूरी थे नियम के तौर पे, तो वो भी लेने पड़े। और लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि जो मेरा ये कार्यकाल रहा, मेरे जितने भी साथी कर्मचारी रहे, प्रसारण कर्मी रहे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट

0: यही की है कि इस तरह से मानवतावादी जो चीज है उसको लेते हुए हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें चलाना पड़ा है, प्रशासन हमने चलाया, और कभी कभी कुछ कदम भी ऐसे लेने पड़े जो जरूरी थे नियम के तौर पे, तो वो भी लेने पड़े। लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है कि जो मेरा ये कार्यकाल रहा, मेरे जितने भी साथी कर्मचारी रहे, प्रसारण कर्मी रहे, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि वो
1: आपका सपोर्ट हमेशा मिला है हम लोगों को। मैम, आज के कॉमर्शियल दौर में सामाजिक पहलुओं पर, औरतों के हुकूक पर, मुआशरे के कमजोर तबकों पर, आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इन पर प्रोग्राम बनाना कितना जरूरी है?
0: इन पर इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो कि शोषित भी हैं और वो पिछड़े हुए भी हैं, तो उन तक बात जब तक हम नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि रेडियो तो बहुत आसान माध्यम है, दूर दूर के इलाकों में भी पहुंचता है, और आसान इसलिए है कि मोबाइल आजकल सबके पास है। जब तक हम बार बार एक बात को नहीं कहेंगे कि आपको अपने अधिकारों के प्रति सजग होना है, आजकल जैसे वित्तीय बहुत सारी दिक्कतें आने लगी हैं क्योंकि डिजिटल हम फाइनेंशियल चीजें करने लगे हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है जागरूकता। तो हम जब बार बार एक बात को दोहराते हैं अपने महिलाओं के कार्यक्रम में, महिलाओं को सशक्त करने में भी ये काम आता
1: लोगों
0: है,
1: लोगों के बीच बेदारी बढ़ती है
0: जी। और अगर हम वृद्ध जनों की बात करें या हम कोई भी वर्ग की बात करें, इवन युवा वर्ग जो है,
1: अगर इन प्रोग्राम से अगर रेवेन्यू नहीं आता है तो?
0: देखिए, सबसे पहले हमारा तो जो मोटो रहा है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, तो हमने इस मोटो के साथ चलते हुए ही रेवेन्यू को अर्न करने की कोशिश की है ना। तो राजस्व अर्जन जरूरी है बिल्कुल, अगर हमसे ये उम्मीद की जाती है, हालांकि हम लोग के जो जॉब रिक्वायरमेंट में ये कहीं नहीं आता था कि हम अपना मार्केटिंग भी करें, लेकिन हम लोग ने उसमें भी दक्षता हासिल की, तो इसलिए हम समय के साथ चल रहे हैं, अपने बदलाव के साथ चल रहे हैं, परिवर्तन के साथ, और हम ये प्रमाणित कर रहे हैं कि आकाशवाणी आज भी जिंदा है और अपना काम कर रहा है।
1: बिल्कुल मैम, इतने साल के तजुर्बे में आपको अपनी ड्यूटी का या रिकॉर्डिंग का कोई ऐसा वाकया हो जो आपको आज भी याद आता हो?
0: मैं जब मथुरा में थी वहाँ पे पंडित किशन महाराज जी आए थे जी। और उनका कॉन्सर्ट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था और उनको लाइव सुना था
1: जी।
0: वो आज भी मैं जब उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी तरह अगर हंसी की बात है तो यहाँ पे कुछ कुछ वाकया ऐसे रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटर हाफ भी यहाँ पे थे तो उनको लेकर कभी कभी लोगों में शंका हो जाती थी। वैसे हम लोग जाहिर नहीं करते थे कि हम लोग पति पत्नी है ऑफिस में, तो कभी कभी अगर कोई बाहर का व्यक्ति आता था तो वो कन्फ्यूज हो जाता था कि इनको हमने बाहर कहीं एक साथ देखा है तो क्या मतलब, क्या रिश्ता
1: जी,
0: है
1: जी, जी,
0: तो ऐसे ऐसे कुछ किस्से। और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग में तो इतने अच्छे हमारे अनुभव रहे हैं।
1: मैम, अपने सफर में आपने बहुत सारे कलाकारों के साथ, अनाउंसर, प्रोड्यूसर और हस्तियों के साथ काम किया है
0: जी।
1: वो कौन सा शख्स है जिसे आप आज भी बहुत याद करती हैं, जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा?
0: हमारे ज्वाइनिंग के समय में डॉक्टर महावीर प्रसाद जी एसडी हुआ करते थे अहमदाबाद,
1: स्टेशन डायरेक्टर
0: जी। और उनके जैसा हम्बल इंसान जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर रहते हुए भी आपको इस तरह से सपोर्ट करे, क्योंकि मैं नई नई आई थी, कुछ कुछ गलतियां हो ही जाती थी, तो उसमें उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। तो यही चीज मैंने भी बाद में सीखी कि आदमी को अगर कुछ बताना है तो आप सामने सामने बात करके उसको समझा दीजिए, मेमो देकर ही कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सजा हर चीज का इलाज नहीं है। और आप चाहें तो उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, किसी भी शख्स में ला सकते हैं, अगर आप उसको दूसरी तरह से हैंडल करें।
1: मैम, वो कौन सा शख्स है जिसे मिलने की तमन्ना आज भी आपको है?
0: पहले तो मैं ये बता दूं कि इसी आकाशवाणी की वजह से मैं दिलराज जी से मिल पाई,
1: दिलराज कौर
0: जी। उनसे मिलने में मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं बचपन से उनको सुनती थी, आशा भोसले जी और लता जी तो हमारे रोल मॉडल्स होते ही थे, लेकिन दिलराज जी को भी मैं बहुत पसंद करती थी, तो एक मौका मिला और उन्होंने भी बहुत अपनापन दिया। तो ये तो बात है कि हाँ, बहुत सारे लोगों से यहाँ मुलाकात हुई, बड़े बड़े कवरेजेस हम लोग करते हैं, चाहे वो पीएम का हो या प्रेसिडेंट का हो, तो ये जो मौके हैं या किसी भी व्यक्ति से आप मिलना चाहें तो आकाशवाणी एक माध्यम हो जाता है। और जिससे मैं मिलना चाहूंगी कभी, तो बहुत सारे लोग हैं जिससे मैं मिलना चाहूंगी, बल्कि हाँ, आसिफ जी मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि हमारे समय में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए जैसे गोपाल दास, नीरज जी, इनके साथ भी हमने काम किया, तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने इनके साथ काम किया है। और इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन
1: ये बात तो सही है
0: जी, बस यही इच्छा है कि जिससे भी मिलूं, आकाशवाणी के माध्यम से अगर मैं मिल रही हूँ, मुझे जो सम्मान मिल जाता है उसकी वजह से, उसको मैं अपने दिल में बसाए रहती हूँ।
1: मैम, रिटायरमेंट का लफ्ज सुनने में जितना सादा लगता है, उसके पीछे उतने ही सारे जज्बात होते हैं। आपके लिए रिटायरमेंट का क्या मतलब है?
0: देखिए, रिटायरमेंट होना तो उसी दिन से तय हो जाता है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इसको एक स्वाभाविक रूप से लेना चाहिए। और एक लंबे समय तक अगर किसी ने काम किया है, अगर उसको संतुष्टि अच्छी मिली है जॉब से, तो मुझे लगता है रिटायरमेंट मेरे लिए तो ये है कि एक नए सफर की शुरुआत है जिसमें आप जो है एक नया कुछ करने को तत्पर हो सकते हैं, क्योंकि एक रिटायरमेंट जब हो जाता है तो एक ऑफिशियल जो एक जिम्मेदारियां हैं उससे थोड़ा आप मुक्त हो जाते हैं, तो आप

0: कुछ और नया कुछ कर सकते हैं और वो हौसला भी बना रहता है क्योंकि यहाँ ऐसा मीडियम है क्रिएटिव कि अगर आपको उसमें मजा आ रहा है।
1: इस नजर से देखें कि एक दरवाजा बंद है तो तीन चार दरवाजे खुल गए हैं।
0: बिल्कुल, आपके कितने शौक होते हैं जो आप शायद ना कर पाए हो तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। और आकाशवाणी से तो कभी रिश्ता खत्म होने वाला ही नहीं होगा, तो वो कहीं ना कहीं जुड़ा ही रहेगा।
1: तो सामईन, अब वक्त है एक रैपिड फायर राउंड का। मैम, हम जानना चाहेंगे आपका पसंदीदा खाना कौन सा है?
0: मुगलई।
1: मुगलई। पसंदीदा सिंगर?
0: सिंगर में तो जितने भी अच्छे सिंगर्स हैं, चाहे लता हो, आशा जी हो, रफी हो, किशोर हो, और अभी हाल में जो अभी कुछ गाने पॉपुलर हुए हैं तो उसमें मैं साधु तिवारी जी को बहुत पसंद करती हूं।
1: मैम, आपका पसंदीदा सैरगाह यानी टूरिस्ट प्लेस कौन सा है?
0: मुझे बीचेस पसंद है, समुद्री तट जो
1: गोवा।
0: गोवा भी गई हूँ, मतलब पूरी भी गई हूँ और हर तट का अलग अनुभव रहा है।
1: ये तो है। मैं, आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है?
0: उमराव जान।
1: उमराव जान। अब मैम, हम आपको दो ऑप्शन देंगे यहाँ पे, गुलाम अली या जगजीत सिंह।
0: दोनों।
1: किताबें या सिनेमा?
0: किताबें।
1: किताब। सिंगिंग या डांसिंग?
0: सिंगिंग नो डाउट, लेकिन डांसिंग भी मुझे बहुत पसंद है।
1: चाय या कॉफी?
0: पानी।
1: पानी। प्रेमचंद या मंटो?
0: प्रेमचंद।
1: प्रेमचंद। लता मंगेशकर या आशा भोसले?
0: दोनों। इस पे कोई बात ही नहीं है, कोई शक नहीं।
1: सामईन, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। तो सामईन, आइए प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले सुनते हैं मैम की पसंदीदा फिल्म का एक पसंदीदा गाना।

0: मैम, आज आपसे बात करते हुए आपके सालों के इस खूबसूरत सफर के कई पहलू सामने आए हैं। आपके तजुर्बे, आपकी सोच और आकाशवाणी के लिए आपका जज्बा हम सब के लिए हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। आपने इस इदारे को अपना वक्त दिया, अपनी सलाहियत, अपनी मेहनत से जो कुछ दिया उसके लिए हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं। जिंदगी का हर एक सफर अपने साथ कुछ खूबसूरत यादें छोड़ जाता है और आपके आकाशवाणी के सफर की ये यादें हम सब के लिए हमेशा खास बनी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया
1: आसिफ जी, आपने हमें ये मौका दिया कि मैं आपसे भी और अपने श्रोताओं से अपनी बात कह सकूं अपने सफर के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम आदाब।
2: उर्दू प्रोग्राम में हमारे मेहमान श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सुमोना एस पांडे, कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी लखनऊ से की गई गुफ्तगू। शरीके गुफ्तगू और पेशकश आसिफ इकबाल की थी।

0: आज का उर्दू कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ मरकज की पेशकश था।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
1: लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज कलाकार हैं प्रीति मिश्रा। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं प्रीति मिश्रा के स्वर में ये भजन।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आज कलाकार थी प्रीति मिश्रा। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
2: हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा

0: परमो धर्म, इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं के पलक मुच्छल और अनुता दत्त के और पलक मुच्छल की आवाज़ों में इस गीत से, जिसे लिखा है अनुता दत्त ने। संगीत है सोहेल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

जब तक है जान। इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन और रैपर सोफिया अशरफ की आवाज़ों में। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार ए आर रहमान।

ये आवाज आप सुन रहे हैं, आवाज है अभिजीत भट्टाचार्य की। साथ दिया है श्रेया घोषाल ने, फिल्म है बेशरम। गीत के बोल लिखे हैं राजीव बर्नवाल ने और धुन तैयार की है ललित पंडित ने।

एक बार फिर अभिजीत की ही आवाज़ों में हम आपको आवाज़ में सुनवा रहे हैं जावेद अख्तर का लिखा हुआ ये गीत, संगीत जतिन ललित का और फिल्म दिल लगी।

और अब कार्यक्रम के अंत में एक विलेन फिल्म का गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार और संगीतकार मिठुन और आवाज़ है मोहम्मद इरफान की।

ये था आज का फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है लोकगीत। आज कलाकार हैं दिनेश कुमार और साथी, उर्मिला श्रीवास्तव और अमित यादव। सबसे पहले हम आपको दिनेश कुमार और साथियों के स्वर में सुनवा रहे हैं ये देवी गीत।

आप सुन रहे थे उर्मिला श्रीवास्तव के स्वर में ये गंगा गीत। अब हम आपको अमित यादव के स्वर में सुनवा रहे हैं ये पचरा।

अमित यादव के गाए स्लो गीत के साथ ही ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं शुभ्रा श्रीवास्तव लेकर हमारा आज का कार्यक्रम एक ही कलाकार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप सुन सकते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम। हमारा आज का ये कार्यक्रम आधारित है संगीतकार नदीम श्रवण पर। दो नाम, दो व्यक्तित्व, लेकिन सुरों की एक ऐसी साझेदारी जिसने 90 के दशक के प्रेम गीतों को एक नई पहचान दी। तो आइए यादों की उसी सुरीली गलियों में चलते हैं और सुनते हैं नदीम श्रवण के सदाबहार गीत।

दोस्तों, 1990 में आई फिल्म आशिकी ने नदीम श्रवण को देश भर में एक अलग पहचान दिलाई। फिल्म का संगीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसने उस दौर के फिल्म संगीत की दिशा पर गहरा प्रभाव डाला। इसकी एल्बम इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली बॉलीवुड एल्बमों में से एक है। प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी नदीम अख्तर सैफी का जन्म 6 अगस्त 1954 को मुंबई में हुआ और इनके साथी श्रवण कुमार राठौड़ का जन्म 13 नवंबर 1954

में हुआ था और वे संगीत के संस्कारों वाले परिवार से आए। उनके पिता पंडित चतुर्भुज राठौड़ ध्रुपद धमार परंपरा के प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। श्रवण ने बचपन से ही तबले की शिक्षा ली। नदीम और श्रवण की मुलाकात 1970 के दशक में हुई और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती संगीत की साझेदारी में बदल गई। शुरुआती वर्षों में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया और फिर हिंदी फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश जारी रखी। 1990 में फिल्म आशिकी से उन्हें असली सफलता मिलनी शुरू हुई और उसके बाद तो जैसे हिंदी फिल्म संगीत में नदीम श्रवण के नाम की एक अलग ही धुन बजने लगी।

दोस्ती हो, प्यार हो या किसी के इंतजार की कहानी, दिल की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा को अगर किसी ने 90 के दशक में खूबसूरती से सुर दिए तो उनमें नदीम श्रवण का नाम सबसे आगे आता है। फिल्म साजन के संगीत के लिए इस जोड़ी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक पुरस्कार मिला। पहली मुलाकात, पहली नजर और दिल में उठती अनकही सी हलचल, इन्हीं भावनाओं को संगीत में ढालना नदीम श्रवण को खासियत थी। 1992 की फिल्म दीवाना के संगीत के लिए भी नदीम श्रवण को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ

दोस्तों, समय बदलता है, संगीत की पसंद बदलती है, लेकिन अच्छी धुन कभी पुरानी नहीं होती। 2000 के दशक में भी नदीम श्रवण ने अपनी पहचान कायम रखी। फिल्म राज के संगीत के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड मिला और फिल्म फेयर में नामांकन भी मिला।

0: दोस्तों, जब धुन में प्यार हो, शब्दों में एहसास हो और आवाज में दिल की धड़कन, तो गीत सीधे श्रोताओं के दिल में उतर जाता है। फिल्म धड़कन का संगीत भी नदीम श्रवण की इसी रोमांटिक शैली का सुंदर उदाहरण है।
1: अंजलि मत भूलो, तुम्हारी शादी जबरदस्ती की गई थी, एक इंसान से नहीं बल्कि उसके धन दौलत से, उसके शान और शौकत से, उसके रुतबे से। आज वही धन दौलत, वही शान और शौकत, रुतबा मेरा है, तो तुम मेरी हुई ना?
2: देव, मैं नहीं जानती मेरा रिश्ता किससे कराया गया था। मैं बस इतना जानती हूं कि जिस आदमी से मेरी शादी हो गई है उन्हें मैं पूछती हूं, वही मेरे पति हैं, वही मेरे जीवन साथी, मेरी हर सांस में, हर धड़कन पर।

0: राम बसे हुए हैं। देव तुम कहीं नहीं हो, कहीं नहीं, भूल जाओ देव, भूल जाओ मुझे, भूल जाओ सब कुछ, भूल जाओ।
1: अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं।
2: दोस्तों, नदीम श्रवण के संगीत की यही तो खासियत है कि उन्होंने अपने संगीत के साथ साथ कई सारी आवाजों को भी अपने गानों में बहुत ही खूबसूरती से समेटा।
0: मैं अगले 7 जन्मों तक उनकी हो चुकी, सिर्फ उनकी।

दोस्तों, नदीम श्रवण को उनके संगीत के लिए कई महत्वपूर्ण पुरस्कार भी मिले। आशिकी, साजन, दीवाना और राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। इसके अलावा राजा हिंदुस्तानी और परदेश के लिए भी उन्हें स्क्रीन अवार्ड मिले और फिल्म राज के लिए जी सिने अवार्ड मिला। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ बांसुरी, सितार और शहनाई जैसे वाद्य यंत्रों का खूबसूरत इस्तेमाल भी सुनाई देता है। तो दोस्तों, आज की इस संगीतमय यात्रा में हमने महसूस किया आशिकी का दर्द, साजन का प्यार, दीवाना होने की खुशी और धड़कन की बेचैनी। यही तो था नदीम श्रवण का संगीत, सरल, मधुर, रोमांटिक और दिल के बेहद

गरीब। दोस्तों, श्रवण कुमार राठौर का 22 अप्रैल 2021 को निधन हुआ, लेकिन एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसके जाने के बाद भी उसकी रचनाएं लोगों के दिलों में जीवित रहती हैं।

दोस्तों, आपसे फिर से मिलने की तमन्ना के साथ मैं फिर लौटूंगी संगीत की ऐसी ही किसी और सुरीली कहानी के साथ। आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार। आज का ये कार्यक्रम आधारित था प्रसिद्ध संगीतकार नदीम श्रवण पर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर लीजिए सुनिए कार्यक्रम किस्सा गोई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कहानी ताई इसरी। कहानीकार हैं कृष्ण चंदर, स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। किस्सा गोई।
1: किस्सा गोई के एक और दिलचस्प, खूबसूरत और ताजगी से भरपूर अंक के साथ हम करते हैं आप सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को हमारा नमस्कार।
2: और नेहा जी
1: जी,
2: देखिए कितनी अनोखी बात है कि किस्सा गोई के नाम भर से ही जहन की स्लेट पे उभरने लगती हैं सुनी पढ़ी कहानियों की वो बेशुमार आड़ी तिरछी रेखाएं जो दिल में सतरंगी भावनाओं अनुभूतियों को शब्द रूप में ढालने को उत्सुक नजर आती हैं। आपके साथ ऐसा होता है?
1: बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि बचपन में जो कहानी सुनी हुई होती है

0: या चलते फिरते कोई छोटा सा किस्सा कोई सुना देता है तो वो घूमने सा लगता है। और कई बार जब मैं कुछ लिखने बैठती हूँ तो वो शब्द की शक्ल में उभर आता है और शायद वो स्थायी होने
1: सच बात
0: लगता
1: है, बचपन जाग पड़ता है।
0: है। हाँ, और देखिए शब्द रूप में ढली ये कहानियाँ बेहद पुरकशिश मालूम होती हैं, जो जिंदगी के हाथों में थमा जाती हैं, कभी खुशी के रंग, कभी ख्यालों की तरंग, कभी उदास खामोशियां, तो कभी जिंदा दिली की उमंग।
1: क्या बात है। और दोस्तों, आज अपने इस प्रोग्राम में जिस अफसाना निगार की जज्बाती और कुछ सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी को चुनकर आप सबके साथ साझा करने के लिए हम आए हैं, उनकी कहानी में रोमानियत और यथार्थ का अद्भुत समन्वय मिलता है। जब अपनी बात करते हैं वो, तो मालूम होता है कि उसमें तो झलक सारे समाज की बातों की दिखाई दे रही है।
0: बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब मुझे लगता है कि साथियों को थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ रही होगी कि इतनी सारी बातें कह दी और नाम नहीं बताया। तो देखिए साथियों, हम बेहद कामयाब लोकप्रिय कहानीकार कृष्णचंद्र साहब की बात कर रहे हैं, जिनके कृतित्व के बारे में लिखते हुए उर्दू अदब के सशक्त हस्ताक्षर अली सरदार जाफरी साहब ने बखूब कहा। सच्ची बात तो ये है कि कृष्णचंद्र की नस्र पर मुझे रश्क आता है। वो बेईमान शायर है जो अफसाना नगार का रूप धर के आता है और बड़ी बड़ी महफिलों और मुशायरों में हम सब तरक्की पसंद शायरों को शर्मिंदा करके चला जाता है। वो अपने एक एक जुमले और फकरे पर गज़ल के अशआर की तरह दहाड़ लेता है, और मैं दिल ही दिल में खुश होता हूँ कि अच्छा हुआ कि इस जालिम को मिसरा मौजू करने का सलीका ना आया, वरना किसी शायर को पनपने न देता।
1: खूबसूरती के साथ एक-एक जो शब्द थे वो सीधे दिल तक उतर रहे थे कि किसी की तारीफ का ये तरीका भी हो सकता है, वो भी बेमिसाल लाजवाब सा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, कृष्णचंद्र उर्दू फिक्शन की वो कद्दावर शख्सियत हैं जिनकी कला में विविधता, रंगारंगी, ताजगी, रोमानियत, वास्तविकता, विद्रोह, हास्य और व्यंग सभी कुछ शामिल दिखाई देते हैं। उन्होंने दर्जनों उपन्यास और लगभग 500 से अधिक कहानियाँ लिखी, और आज हम उन्हीं की लिखी दिल को छू लेने वाली एक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है ताई इसरी। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
0: ग्रैंड मेडिकल कॉलेज कलकत्ता से लौटने पर पहली बार उसकी मुलाकात ताई इसरी से हुई थी। ताई इसरी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। वो शादीशुदा होकर भी एक तरह से कुंवारी थी। उनका शौहर जालंधर में रहता था और ताई इसरी लाहौर में। मगर अकेली होने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और जिंदगी को पूरे भरपूर अंदाज में जिया।
1: मैं ग्रांट मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में डॉक्टरी का फाइनल कोर्स कर रहा था और अपने बड़े भाई की शादी पर चंद रोज के लिए लाहौर आ गया था। यही शाही मोहल्ले के करीब कूचा ठाकुर दास में हमारा जहां आबाई घर था, मेरी मुलाकात पहली बार ताई इसरी से हुई।
0: ताई इसरी हमारी सगी ताई तो न थी, लेकिन ऐसी थी कि उन्हें देखकर हर एक का जी उन्हें ताई कहने के लिए बेकरार हो जाता था। मोहल्ले के बाहर जब उनका तांगा आकर रुका और किसी ने कहा, लो ताई इसरी आ गई, तो बहुत से बूढ़े जवान मर्द और औरतें इन्हें लेने के लिए दौड़ पड़े। दो तीन ने सहारा देकर ताई इसरी को तांगे से नीचे उतारा, क्योंकि ताई इसरी फरबानदाज थी और चलने से या बातें करने से या महज किसी को देखने से ही उनकी सांस फूलने लगती थी।
1: दो तीन रिश्तेदारों ने एक बारगी अपनी जेब से तांगा के किराए के पैसे निकाले, लेकिन ताई इसरी ने अपनी फूली हुई

0: सांसों में हंसकर सबसे कह दिया कि वो तो पहले ही तांगे वाले को किराए के पैसे दे चुकी हैं। और जब वो यूं अपनी फूली सांसों के दरमियान बातें करती करती हंसी तो मुझे बहुत अच्छी मालूम हुई।
1: दो तीन रिश्तेदारों का चेहरा उतर गया और उन्होंने पैसे जेब में डालते हुए कहा, ये तुमने क्या किया ताई, हमें इतनी सी खिदमत का मौका भी नहीं देती हो। इस पर ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने करीब खड़ी हुई एक नौजवान औरत से पंखी ले ली और उसे झलते हुए मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। ताई इसरी की उम्र 60 से कम न होगी। उनके सर के बाल खिचड़ी हो चुके थे और उनके भरे भरे गोल मटोल चेहरे पर बहुत अच्छे लगते थे। उनका फूली फूली सांसों में मासूम बातें करना तो सबको ही अच्छा लगता था, लेकिन मुझे उनके चेहरे में उनकी आंखें बड़ी गैर मामूली नजर आई। उन आंखों को देखकर मुझे हमेशा धरती का ख्याल आया है, मीलों दूर तक फैले हुए खेतों का ख्याल आया है। इसके साथ साथ ये भी ख्याल आया है कि इन आंखों के अंदर जो मोहब्बत है इसका कोई किनारा नहीं, जो मासूमियत है इसकी कोई थाह नहीं, जो दर्द है इसका कोई दरमा नहीं।
0: मैंने आज तक ऐसी आंखें किसी औरत के चेहरे पर नहीं देखी जो इस कदर वसी और बेकनार हो कि जिंदगी का बड़े से बड़ा और तल्ख से तल्ख तजुर्बा भी उनके लिए एक तिनके से ज्यादा हैसियत ना रखे। ऐसी आंखें जो अपनी पिनाइयों में से सब कुछ बहा ले जाए, ऐसी अनोखी माफ कर देने वाली, दरगुजर कर देने वाली आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। ताई इसरी ने कासनी शाही का घाघरा पहन रखा था जिस पर सुनहरी गोटे का लहरिया चमक रहा था। उनकी कमीज बसंती रेशम की थी जिस पर जरी के फूल कढ़े हुए थे। सर पर दोहरे मलमल का किरमिजी दुपट्टा था, हाथों में सोने के गोखरू थे। जब वो घर के दालान में दाखिल हुई तो चारों तरफ शोर मच गया। बहुएं और खालाएं और नंदे भावजे, मौसियां और चाचियां सब ताई इसरी के पांव छूने को दौड़ी। एक औरत ने जल्दी से एक रंगीन पीढ़ी खींचकर ताई इसरी के लिए रख दी और ताई इसरी हंसते हुए उस पर बैठ गई और बारी बारी सबको गले लगाकर, सबके सर पर हाथ फेरकर सबको दुआ देने लगी।
1: और उनके अकरीब हीरो महरी की बेटी सूत्री खुशी से अपनी बाछें खिलाए जोर जोर से पंखा झल रही थी। ताई इसरी घर से रंगीन खपच्ची की एक टोकरी लेकर आई थी जो उनके अखदमों के उनकी पीढ़ी के पास ही पड़ी थी। वो बारी बारी से सबको दुआएं देती जाती और खपच्ची वाली टोकरी खोलकर उसमें से एक चवन्नी निकाल कर देती जाती। कोई 100 चवन्नियाँ उन्होंने अगले 20 मिनट में बांटती होंगी। जब सब औरतें और मर्द, लड़के और बच्चे वाले उनके पांव छूकर अपनी अपनी चवन्नी ले चुके तो उन्होंने अपनी थोड़ी ऊंची करके पंखा झलने वाली लड़की की तरफ देखा और उससे पूछा, तू कौन है? मैं सूत्री हूँ, बच्ची ने शर्माते हुए जवाब दिया। आए हाय, तू जय किशन की लड़की है, मैं तो भूल ही गई थी तुझे, आजा आजा गले से लग जा।
0: ताई इसरी ने उसको गले से लगा लिया, बल्कि उसका मुंह भी चूम लिया। और जब उन्होंने उसे अपनी खपच्ची वाली टोकरी से निकालकर चवन्नी दी तो घर की सारी औरतें कहकहे मारकर हंस पड़ी और मौसी करतारों अपनी नीलम की अंगूठी वाली उंगली नचाकर बोली, ताई ये तो जय किशन की बेटी सूत्री नहीं है, ये तो हीरो महरी की बेटी है।
1: हाय मैं मर गई, ताई इसरी एकदम घबरा कर बोली, उनकी सांस फूल गई। हाय अब तो मुझे नहाना पड़ेगा।

मैंने उसका मुंह भी चूम लिया है, अब क्या करूं? ताई इसरी ने अपनी बड़ी बड़ी हैरान निगाहों से मोहरी की बेटी सूत्री की तरफ देखा, जो अब इस तरह धुतकारे जाने पर सिसकने लगी। यकायक ताई को उस पर रहम आ गया। उन्होंने फिर उसे बाह से पकड़कर चिमटा लिया। ना ना, तू क्यों रोती है? तो तू अनजान है, तू तो देवी है।

0: पकड़कर चिमटा लिया। ना ना, तू क्यों रोती है? तो तू अनजान है, तू तो देवी है, तू तो कुंवारी है, तेरे मन में तो परमेश्वर बसते हैं, तू क्यों रोती है? मुझे तो अपने धर्म के कारण नहाना ही पड़ेगा, पर तू क्यों रोती है? एक चवन्नी और ले।
1: ताई इसरी से दूसरी चवन्नी पाकर महरी की बेटी सूत्री अपने आंसू पोछकर मुस्कुराने लगी। ताई इसरी ने एक बाजू उठाकर पूरे दालान में गुजरती हुई हीरो महरी को देखकर बुलंद आवाज में कहा, नी हीरो, मेरे स्नान के लिए पानी रख दे, तुझे भी एक चवन्नी दूंगी। इस पर सारी महफिल लोटपोट हो गई। ताई इसरी को कई लोग चवन्नी वाली ताई कहते थे, कई लोग कुंवारी ताई कहते थे, क्योंकि ये भी मशहूर था कि जिस दिन से ताया युधराज ने ताई इसरी से शादी की थी, उस दिन से आज तक वो कुंवारी की कुंवारी चली आ रही थी। सुनाने वाले तो ये भी सुनाते हैं कि ताया युधराज ने अपनी शादी से पहले जवानी में इतनी खूबसूरत औरतें देख डाली थी कि जब उनकी शादी गांव की इस सीधी साधी लड़की से हुई तो शादी के पहले रोज ही वो उन्हें बिल्कुल पसंद ना आई। जब से उन्होंने शादी करके उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था, मगर किसी तरह की सख्ती नहीं करते थे।
0: ताया युधराज हर माह 75 रुपये उसे भेजते थे। वो गांव में रहती थी, अपने ससुराल के यहाँ और सबकी खिदमत करती थी, और ताया युधराज जलंधर में लोहे का व्यापार करते थे और कई कई साल अपने गांव नहीं जाते थे। मैके वालों ने कई बार आकर ताई को ले जाना चाहा, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैके वालों ने ये भी चाहा कि उनकी शादी फिर से कर दी जाए, मगर ताई उसके लिए भी राजी ना हुई। वो ऐसे इन्हिमाक से अपने ससुराल के लोगों की खिदमत करती रही कि ससुराल वाले खुद उन्हें अपनी बेटी और बहू से ज्यादा चाहने लगे। ताया युधराज के बाप मानकचंद ने तो अपने घर की सारी चाबियां ताई इसरी के सुपुर्द कर दी थी, और सास भी इस हद तक चाहने लगी थी कि उन्होंने अपने सारे गहने पाते निकालकर ताई इसरी की तहवील में दे दिए थे।
1: वैसे बहुत सी औरतों को देखकर ये ख्याल भी आता कि जवानी में कैसी रही होंगी, मगर ताई इसरी को देखकर कभी ये ख्याल भी ना आया। हमेशा यही ख्याल आता कि ताई इसरी शायद बचपन से, बल्कि जन्म से ही ऐसी पैदा हुई होंगी। पैदा होते ही उन्होंने अपनी माँ को हाथ फैलाकर आशीर्वाद दी होगी और शायद बड़े मीठे मेहरबान लहजे में ये भी कहा होगा, तुझे मेरे लिए बहुत दुख उठाने पड़े, इसलिए ये लो एक चवन्नी। शायद इसीलिए अपने शौहर से भी उनके ताल्लुकात बेहद खुशगवार थे। ताया युधराज हमारे रिश्तेदारों की नज़र में शराबी कबाबी थे। वो लोहे के बड़े व्यापारी थे तो क्या हुआ, उन्हें इस तरह से ताई इसरी की जिंदगी बर्बाद न करना चाहिए था। मगर जाने क्या बात थी कि ताई इसरी को कतन अपनी जिंदगी बर्बाद होने का कोई गम न था।
0: उनके तर्ज़ अमल से मालूम होता था, जैसे उन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि किसी ने उनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। हर वक्त हंसती खेलती बातें करती, हर एक के सुख और दुख में शामिल होने और खिदमत करने के लिए तैयार नज़र आती। ये तो बिल्कुल नामुमकिन था कि पड़ोस में किसी के यहाँ खुशी हो और वो उसमें शरीक ना हो, किसी के यहाँ कोई गम हो और उसमें हिस्सा ना बटाए। ताई इसरी के शौहर अमीर थे, मगर वो खुद तो अमीर न थी। 75 रुपये जो उन्हें माहवार मिलते थे, वो उन्हें हमेशा दूसरों पर खर्च कर देती थी, मगर वो सस्ते जमाने के 75 रुपये थे, इसीलिए बहुत से लोगों के दुख दर्द दूर हो जाते।

0: मगर लोग उनसे उनकी वक्त बेवक्त की मदद की वजह से सिर्फ प्यार नहीं करते थे, ऐसे ही बहुत से मौके आते थे जब ताई इसरी की जेब में एक छदाम तक न होता था। उस वक्त भी लोग बेमज़ा न हुए, बल्कि यही कहते हुए सुने गए कि ताई इसरी के चरण छू लेने से ही दिल को शांति मिल जाती है।
1: मगर जितनी अच्छी ताई इसरी थी, ताया युधराज उतने ही बुरे थे। 30 बरस तक तो उन्होंने ताई इसरी को अपने माँ बाप के घर गांव में ही रखा, और जब उनके माँ बाप दोनों ही मर गए और घर खाली हो गया, घर के दूसरे अफराद बड़े हो गए, शादियां करके और अपने घर बसा के दूसरी जगहों पर चले गए, तो उन्हें ताई इसरी को भी जालंधर बुलवाना पड़ा। मगर यहाँ ताई इसरी चंद दिनों से ज़्यादा न रह सकी, क्योंकि पक्का बाग के मुअज्जिद पठानों की एक लड़की से तायायुत ने याराना गाँटने की कोशिश की थी। नतीजे में उन्हें जालंधर से भागकर लाहौर आना पड़ा, क्योंकि पक्का बाग के पठानों ने आकर ताई इसरी से कह दिया था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से हमने उसे जिंदा छोड़ दिया है, अब बेहतर यही है कि तुम अपने घर वाले को लेकर कहीं चली जाओ, वरना हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ताई इसरी इस वाकये के चंद रोज बाद ही ताया को लेकर लाहौर आ गई।
0: मोहल्ला वंजारा में उन्होंने एक छोटा सा मकान ले लिया था। खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से यहाँ भी ताया युधराज का व्यापार चंद महीनों में चमक गया। इसी असनाए में उन्होंने शाही मोहल्ले की एक तवाइफ लक्ष्मी से दोस्ती कर ली, और होते होते ये अखस्सा यहाँ तक बढ़ा कि मुस्तकल तौर पर इसी लक्ष्मी के घर रहना शुरू कर दिया था और मोहल्ला वंजारा में कदम तक न धरते थे। लेकिन ताई इसरी को देखकर कभी कोई ये नहीं कह सकता था कि उन्हें इस अमल का इत्ता सा भी मलाल हुआ होगा। ये वो ज़माना था जब ताया युधराज और लक्ष्मी तवाइफ का कस्सा जोरों पर था। उन्हीं दिनों हमारे बड़े भाई की शादी हुई। शादी में ताया युधराज तो शरीक न हुए, लेकिन ताई ने रिश्तेदारों, मेहमानों और बारात की खिदमत गुजारी में दिन रात एक कर दिया।
1: उनकी खुश मिजाजी से पेचीदा गुत्थियां भी सुलझ गईं, चेहरे पर चढ़ी हुई तेवरियां उतर गईं और जबान शिकनों से साफ और मुनव्वर होती गईं। इसमें ताई की कोशिश का कोई दखल न था। सुकून की शुआएं गोया खुद ब खुद उनके जिस्म से फूटती थीं। उन्हें देखते ही हर एक का गुस्सा उतर जाता, पेचीदा से पेचीदा उलझने खुद ब खुद सुलझ जाती, घर भर में बशाशत बिखर जाती। ऐसी थी ताई इसरी। मैंने ताई इसरी को कभी किसी की बुराई करते नहीं देखा, कभी किस्मत का गिला करते नहीं देखा। हाँ, एक बार उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी, और वो वाकिया उसी शादी से मुतालिक है।
0: बड़े भाई साहिब तो रात भर शादी की बैरी पर बैठे रहे। सुबह के 5 बजे शादी के बाद लड़की वालों ने अपने घर के हाल को जहेज का सामान दिखाने के लिए सजा दिया। पुराने जमाने थे, उस जमाने में सोफों की बजाय रंगीन पीढ़ियाँ दी जाती थीं और मुनक्कश पायों वाले पलंग दिए जाते थे। उस जमाने में ड्राइंग रूम को बैठक या दीवान खाना कहा जाता। मेरे बड़े भाई के ससुर मिलिट्री में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। चूंकि वो पहले हिंदुस्तानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने जहेज में बहुत कुछ दिया था और सारी ही नए फैशन की चीज़ें दी थीं। हमारी बिरादरी में पहली बार जहेज में सोफ़ा सेट दिया गया। सारी बिरादरी में उस सोफ़ा सेट की धूम मच गई। दूर दूर के मोहल्लों से भी औरतें अंग्रेज

0: इसी पीढ़ियों को देखने के लिए आने लगी। ताई इसरी के लिए भी सोफा सेट देखने का पहला मौका था। पहले तो बड़ी हैरानी से उसे देखती रही, उस पर हाथ फेर कर मन ही मन कुछ बड़बड़ाती रही। आखिर उनसे रहा न गया तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया, वे काका, इसको सोफा सेट क्यों बोलते हैं?
1: अब मैं इसका जवाब क्या देता। सर हिलाकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम ताई।
0: अच्छा, तो इसकी दो कुर्सियां छोटी क्यों हैं और वो तीसरी कुर्सी लंबी क्यों है?
1: मैं फिर लाजवाब हो गया, खामोशी से इनकार में सिर हिला दिया। ताई देर तक सोचती रही, फिर यकायक जैसे उनकी समझ में कुछ आ गया, उनका चेहरा उनकी मासूम सी मुस्कुराहट से रोशन हो गया। बोल उठी,
0: मैं बताऊं?
1: बताओ ताई।
0: देखो, मेरा ख्याल है कि ये लंबा सोफा इसलिए बना है जब दोनों मियाँ बीबी में सुलह हो तो वो दोनों इस लंबे सोफे पर बैठें, और जब उन दोनों में लड़ाई हो तो अलग अलग इन दो छोटे छोटे सोफों पर बैठें। सचमुच ये अंग्रेज़ बड़े अकलमंद होते हैं, जब ही तो हम पर हुकूमत करते हैं।
1: ताई की दलील सुनकर महफिल में एक जोरदार कहकहा पड़ा, मगर मैंने देखा कि ताई ये सोचकर और बात कहकर चुप सी हो गई। क्या उस वक्त उन्हें अपना और अपने खाविंद का झगड़ा याद आया था? ये तो मैं नहीं कह सकता। मैंने जब गौर से उनकी आंखों में देखा तो एक पल के लिए मुझे उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे दरिया का पाट बहुत चौड़ा हो गया हो।
0: दोस्तों, आज हमने कृष्णचंद्र साहब द्वारा लिखी कहानी ताई इसरी का पहला भाग सुना।
1: नेहा जी,
0: जी
1: जब ये कहानी हम लोग पढ़ रहे थे
0: जी,
1: तो बहुत सारी बातें जहन में आ रही थी कि हमारी भी मुलाकात हमारे जीवन काल में, हमारे रिश्ते नाते जो हैं या आसपास का जो हमारा माहौल होता है उसमें कितने लोग हमसे मिलते हैं, जुड़ते हैं। कुछ लोग जहन में बस जाते हैं, कुछ बस के निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रूह में उतर जाते हैं। तो मुझे लगता है ताई इसरी का जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, वो इसी तरह की विशेषताओं से भरा हुआ है जो जहन में होते हुए दिल में उतरता है और फिर रूह में समा जाता है। आप क्या कहेंगी?
0: सच कहूँ, जब मैं कहानी पढ़ रही थी ताई इसरी, तो पहले तो लगा कि ताई इसरी क्या है, लेकिन जैसे ही पढ़ती चली गई मुझे समय का भान नहीं रहा और एक खास तरह का भाव पहली बार मैं महसूस कर रही थी कि क्या शब्दों को पढ़ने के साथ हम उस भाव में डूब सकते हैं क्या? तो शायद कैरेक्टर में ये दमखम होता है और जो कहानीकार होते हैं वो इस तरह से शब्दों को रचते हैं कि हम वही भाव महसूस कर सकते हैं, जो कि ये कहानी आज़ादी से पहले की बात है इस कहानी में, और हम आज आज़ादी के जो इतने बरस बीत चुके हैं तभी भी हम वो हूबहू भाव को महसूस करते हैं। वो सफ़ेद बालों वाली महिला जिसके झोली में सबके लिए दुआएं हैं, हाथों से जिसके बरकत बरसती हो, आंखों से नूर बरसता हो।
1: बिल्कुल सच कह रही हैं। और नेहा जी, उत्सुकता बहुत सारी हमारे दोस्तों के जहन में, दिलो दिमाग में भी चल रही होगी कि आगे ये कहानी किस मोड़ की तरफ जाएगी। तो उसके लिए तो थोड़ा सा विराम की ज़रूरत है, एक सप्ताह का वक्फा लेना है हमें भी। और एक सप्ताह के बाद जब हम आएंगे तो हम सुनेंगे ताई इसरी का दूसरा भाग। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो समय हो रहा है विदा लेने का। तो नेहा जी
0: जी,
1: अब चलते हैं और दोस्तों से कहते हैं।

नमस्कार। किस्सा गोई, किस्सा गोई कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कहानी ताई इसरी का पहला भाग। कहानीकार थे कृष्ण चंदर, स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। शिक्षा को समय दो, शिक्षा आपका समय बदल देगी।

शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी आपको झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और

0: क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately.

दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी संगीता राय से लोकगीत और मंजू देवी से की गई बातचीत। पढ़ना सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही रसोई घर से जानेंगी खाने की बर्बादी रोकें। 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

चार बजे फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। शाम 5:15 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा श्रोता सुनेंगे आज के प्रेरणापुंज। आज के प्रेरणापुंज होंगे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे शैलेश कुमार शर्मा से लोकगीत और किसान चर्चा में ज्ञान सिंह पटेल से राकेश कुमार मौर्य की बातचीत।

6:50 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे राकेश मालवीय और डॉक्टर कविता से काव्य पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी संगीता भारद्वाज।

रात 8 बजे सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत, 8:30 बजे सबरस, 9:30 पर सुनिएगा गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर गीता बैनर्जी का राग मिश्र पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबली पर संगत की है श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने, हारमोनियम पर हैं श्री शमशेद अहमद खां। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर गीता बैनर्जी का उपशास्त्रीय गायन राग मिश्र पीलू में ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता बनर्जी का राग मिश्र पीलू में ठुमरी। आपके साथ तबले पर संगत की थी श्री महावीर प्रसाद भट्ट ने, हारमोनियम पर थे श्री शमशेद अहमद खान। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। तो श्रोताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सबने ट्यून कर लिया होगा आकाशवाणी प्रयागराज और अपना मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, हम उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने चिट्ठियों का बेहद इंतजार किया था, और आज देखिए, आज AI के साथ बातें कर रहे हैं। आपको अपने समय के वो कैसेट तो याद है जिसको लगा लगा के हम लोग खूबसूरत से अपनी पसंदीदा गीतों को सुना करते थे, और वहाँ से स्पॉटिफाई तक का सफ़र हम लोगों ने देखा है। और अब हम जी रहे हैं ऑनलाइन की दुनिया में। दूरदर्शन तो

आपको याद होगा ही, अब हम दूरदर्शन से पहुंच चुके हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म तक। बचपन के संडे वाले कार्टून्स आपको याद है ना, अब हम लोग आ चुके हैं 2G से 5G तक के बदलाव में, और अब दुनिया सच में हथेली पर है। कम तस्वीरों के समय से लेकर हजारों फोटोज के दौर आए हैं, लेकिन यादें आज भी दिल में वैसी ही है। हमने टेक्नोलॉजी को बदलते देखा है, शायद इसीलिए हमारी यादों में हर दौर थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने इस कार्यक्रम की तरफ। वो जो दौर था, वहाँ के जो गीत थे, ऐसे गीतों की फरमाइश हमारे बहुत सारे श्रोता करते हैं। तो ऐसे ही एक गीत की फरमाइश आई है इन श्रोताओं की। नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव, मुस्कान, दिव्या सोमल, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र टांगी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। आप सब सुनना चाहते हैं कयामत से कयामत फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, एक संदेश हमें मिला है और लिखने वाले हैं लखनऊ से वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा शकील अहमद शहनाज खान और दानिश। इन्होंने लिखा है, अर्ज किया है, मेरा ख्याल तुम दिल से मिटा ना सकोगे, एक बार तुम जब मेरे गम से मिलोगे जिंदगी भर तुम भी मुस्कुरा ना सकोगे। वही बहुत खूब लिखा है वारिस अली खान साहब आपने, और साथ साथ इन्होंने एक गीत की भी फरमाइश की है और फिल्म का नाम है पाकीज़ा। आवाज़ है लता मंगेशकर की और इस गीत की फरमाइश हमें कोल सिटी बरका काना से भी आई है। ये हैं अफजल शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी सहानी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। गुजरात से धीरज पी रवारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य। मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति, नीलम प्रजापति, सिद्धार्थ प्रजापति श्रीजी। दादनपुर प्रयागराज से विकास और नीतीश आर्या। हंडिया से महेंद्र यादव, रेखा यादव और प्रेमचंद यादव। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का पाकीज़ा फिल्म का ये गाना।

लाइन जहाँ चौराहा से मधु कनौजिया जी लिखती हैं कि उनको देखे से जो आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। भाई बात तो बिल्कुल सही कही है, और कभी कभी रौनक आ जाती है अपने पसंदीदा फिल्मी गानों को सुनकर, और ऐसे ही गाने की फरमाइश भी आप सब ने की है। और जो गीत है वो आ रहा है, फिल्म का नाम है सूर्यवंशम, और इस गीत की फरमाइश हमें की है पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और मुरली वर्मा, रतलाम से जगदीश धाकड़, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़, बिलासपुर से चुन्नूलाल श्रीनिवास, अनीता पुष्पा श्रीनिवास, अंजू योगिता श्रीनिवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, आर्यनगर से उत्तम सिंह, मोरस जंगहल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदनी। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अर्ज किया है, कोई छांव तो कोई शहर ढूंढता है, मुसाफिर हमेशा एक घर ढूंढता है। बेताब है जो सुर्खियों में आने को, वो अक्सर अपनी खबर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब अपना, क्यों हर शख्स मुकद्दर ढूंढता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ, और फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना, और इस गीत की फरमाइश हमें की है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग और तानिया नारंग, दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, चंडीगढ़ मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर शर्मा और बिट्टा बजाज। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुति थी मधु कुमार की। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: है। अब आप शाइस्ता बानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेवा संकल्प अभियान के एक हिस्से के तौर पर वडनगर गुजरात से वाराणसी उत्तर प्रदेश तक सेवा यात्रा शुरू करने वाले शुरका के साथ बातचीत की। इस दौरान सेवा यात्रा के शुरका वज़ीरे आज़म के साथ अपने सफर के तजुर्बा शेयर किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीरे आज़म ने कहा कि हम खिदमत के रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी ही बुलंदी पर पहुंच जाएं, हम हमेशा खिदमत ही आला धर्म के जज्बे के साथ आगे बढ़ेंगे।
1: हम राष्ट्र निर्माण के लिए निकले हुए लोग, हम विकसित भारत के संकल्प को लेकर के निकले हुए लोग, 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत में 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। उनका सफ़र उनकी गैर मुतजलजल लगन और अवामी खिदमत के जरिए कौम की खिदमत के मंत्र से वाबस्तगी से निशानजद है। खिदमत और गुड गवर्नेंस के इस विज़न के साथ हुकूमत 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के हदफ को हासिल करने के लिए अनथक मेहनत कर रही है। यह आज़म जाम तरक्की और समाजी बाख्तियार बनाने के जरिए लोगों की जिंदगियों को बदल रही है। इस खसूसी सीरीज़ में हम अटल इनोवेशन मिशन पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।
2: अटल इनोवेशन मिशन, जिसे वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। वर्ष 2016 में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से नई पीढ़ी को विज्ञान और अनुसंधान की ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं।
1: नई पीढ़ी में विज्ञान के प्रति आकर्षण, टेक्नोलॉजी के प्रति रिसर्च और इनोवेशन, और इसी के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाए। और इसलिए तो मैं कहता हूँ लेटेस्ट एम टू इनोवेट। और जब मैं लेटेस्ट एम टू इनोवेट कहता हूँ तो मेरा एम का मतलब है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा।
2: अटल इनोवेशन मिशन देश भर में नवाचार और उद्यमिता की एक जीवंत संस्कृति विकसित करने और उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वरुण विहार और नैमिश नगर प्रोजेक्टों के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला इन मंसूबों के तहत प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन का भी आगाज करेंगे, जो तकरीबन 12

0: हजार करोड़ रुपए की लागत से 10,680 एकड़ के रकबे पर तैयार किए जा रहे हैं। वो 2,166 करोड़ रुपए के लागत से मुजव्वजा 5 कसीरुल मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट्स का संग बुनियाद भी रखेंगे। ये तकरीब लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे के करीब गांव दोना में मुनक़िद होगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में रियासती ख़वातीन की पनाहगाह का इफ्तिताह किया, जो 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत हर औरत की पैदाइश से लेकर उसकी तालीम, शादी, हिफाजत और खुद इनसारी तक उसके साथ खड़ी है। हुकूमत हर औरत की हिफाजत, इज्जत और खुद इनसारी पर नौजवानों की मियारी तालीम और रोजगार के लिए काम कर रही है। कल वज़ीर आला ने गोरखपुर में सड़क हादसात और कैंसर की वजह से हलाक होने वाले 2 लोगों के खानदानों को माली इमदाद के चेक भी तकसीम किए। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 मुसाफिर हलाक हो गए। कई दूसरे मुसाफिरों ने खिड़कियों से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाना इलाके के दयानतपुर गांव के करीब निसफ शब के करीब पेश आया। स्लीपर बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बस में आग लगने से हलाक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और अफसरान को जख्मियों को मुनासिब इलाज फराहम करने की हिदायत दी। उन्होंने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस हादसे में गम का इजहार किया। उन्होंने जा बहक होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरने वालों के लवाहिकीन को वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से हर एक को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। कल पुलिस ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रसाद की मुबैना चोरी के मामले में 8 मुलजमान के खिलाफ इंसदादे बदउनवानी की खसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस्तकासा, सीसीटीवी फुटेज, मुलजमान के बयानात, बरामद शुदा रकम और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद पर मबनी है। लखनऊ समेत रियासत के कई मकामात पर कल हल्की से दरमियानी बारिश हुई। गोरखपुर और जौनपुर समेत कई मशरकी अजला में कल शाम से वक्फे से बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने 27 सितंबर तक रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। महकमे ने आज और 27 सितंबर के दरमियान रियासत में तेज हवाओं और तेज बारिश की वार्निंग दी है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण बहनें सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट।

0: सरस्वती, अरे ओ सरस्वती,
1: का जया।
0: अरे सरस्वती, राम राम,
1: अपन कट सुने बैठी सब बहनी हरण के भी जया सरस्वती के।
0: राम राम। सरस्वती
1: हाँ,
0: का हुआ आज, काहे ऐसे बात करे तो?
1: हमसे पूछे तो का हुआ, सब जाना था, और हमसे कहा तो का हुआ, हमसे ना
0: अरे
1: बोला।
0: अरे तनिक ठहरा भाई, का होएगा है, काहे इतना गुस्सा थो, थोड़ा ठंडक पाओ। चला अच्छा थोड़ा सा पानी पी ला।
1: दा पानी।
0: ना जरा सा पानी पिया, अब बताओ का हुआ, काहे इतना गुस्सा थो?
1: अरे हम का बताए, हम जो नहीं जल्दी जल्दी आवत ही, तू हमका रास्ते में देखू और हमरे बदे रुकू नहीं। इतने दिन
0: अच्छा
1: बाद तो से मिले आवत ही, और तू तनको अथुआ ना करू कि हम थोड़ा सा सरस्वती बदे रुक जाए।
0: अरे चला, हम अपन गलती मानी थी भाई, पर देखा गुस्सा जिन करा। और देखा जब आज तू इतना गुस्से से हमसे ऐसे से बात कर रही हूँ, तो कस ना आज हम सोची थी कि अपने विषय जो चर्चा का विषय है वो जोने गुस्से से शुरू किया जाए।
1: अरे जी जया,
0: सही
1: देखा हमें तू तो हंसाए दे थो, है ना,
0: और
1: हमार
0: का
1: सब गुस्सा ही ठंडा हो गया तुम्हारे इतना प्यार देख के। हाँ, तू देखा हमके इतना गुस्सा आवत है, और तू मुस्कुरा जात हो, और तू हमरे गुस्सा के गंभीरता से नहीं लेत हो।
0: अरे का गुस्से का गंभीरता सा लेकर है। देखा गुस्सा जो ना क्षणिक होता, हाँ

0: पहले तो देखा आपने, पहले लोगन का विषय बता दिया जाए कि देखा आज जो ने हम सब लोग बात करब कि गुस्से पे काबू रखना ही रिश्तों में को बचावे के लिए पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल, देखा पहली सीढ़ी तो तू डाक गऊ
0: बिल्कुल,
1: अब सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़त जाबू। पहली सीढ़ी चढ़े के जरूरत है, फिर ओकरे बाद तो हम सभी सीढ़ी चढ़ी।
0: हाँ, और देखा हम आज एक चीज जान गवा कि अगर कोनो गुस्सा है तो अगर अगर ओका मनावे का है तो तन के मुस्कुराए भर दियो, फिर देखो कि गुस्सा छुमंतर हो जाए।
1: बिल्कुल सही कहते थे, बिल्कुल सही कहते। और जानत हो जया बहनी कि आजकल ना रिश्ता कितना कम हो गया है, पहले जैसे नहीं बाकी रिश्ता के ताना बाना बा, खूब बड़ा परिवार बा। जानत हो कि जैसे धीरे धीरे शहरीकरण इतना बढ़ गया आज के समाज में, मशीनीकरण के युग हो गया, तो परिवार भी कितना छोटा एकल परिवार होता है आजकल, है ना। और सब अपने अपने में इतना व्यस्त है काम काज में, भैया सब नौकरी हरे पे, भैया लोग नौकरी पे चले जाते हैं और खेती बाड़ी में चला जाते हैं, तो घर में जितना गिना चुना सदस्य है, 2-3-4, उनमें से घरवा में बचत कितना है।
0: बिल्कुल सही दिखा सरस्वती बहनी, सही कहो कि आज के समय में जब परिवार छोट है तो छोट परिवार में अक्सर ऐसा होता है कि हर आदमी व्यस्त है, पहली बात तो। और अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवार छोट है तो होत का है कि बात भी कम होता,
1: बात बहुत कम होता, काहे कि देखा जया बहनी हम सब हमेशा बोलत रहती ना कि तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, हर सब कोई जो है अपने हाथे एक ठे मोबाइल फोन लिए है और तरह तरह के साधन से अपन जो है आभासी दुनिया में रहते हैं।
0: बिल्कुल, और देखा जब ऐसी बात होती है ना तो होता का है कि जैसे मान लो कोनो को कोई बात कहे का भी है तो वो बात जब ओके तक पहुंचत नहीं तो अपने आप में एक अंदर ही अंदर एक गुस्सा बन जाता।
1: बिल्कुल सही,
0: एक जो ने एक क्षणिक होता वो, पर देखा आवत है मन में कि अरे देखा हमारी बात नहीं सुनी, पर देखा गुस्सा दिखा हर इंसान माँ एक स्वाभाविक भावना है ना। और हमार उम्मीद के अनुसार ऐसा अक्सर ऐसा नहीं कि कुछ भी हमार उम्मीद के हिसाब से कुछ होए, कोनो हमार बात मतलब चाहे कई बार ऐसा होता कि कोनो हमार बात नहीं समझत और परिस्थितियां भी ऐसे हो जाती कि मतलब वो अनुकूल नहीं होती, तो देखा गुस्सा अब स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होता जब गुस्सा हमार व्यवहार और रिश्तन पे हावी हो जाता।
1: बिल्कुल सही कह तू अजय बहनी, तू का कह रहे हो हम तो कर
0: देखा कई बार ऐसा हो जाता है सरस्वती बहनी कि हम कई बार देखा है कि कई बार जो गुस्से की जड़ होती वो कहाँ से शुरू होते हैं, जब हम आपन जो बात है सही तरीके से सामने वाले के सामने रख नहीं पाए।
1: हम देखा थी जय बहनी कि परिवार में जो गृहिणी है महिला है ज्यादातर वो इस चीज के महसूस करती
0: है, बिल्कुल,
1: काहे कि वो दिन भर काम जब करती ना तो उनका लगता है कि उनके भी जो ना मान मिले, सम्मान मिले, 2 मिनट बैठ के कोई प्यार से बोले। अब भैया हरन ऐसे बात के समझते नहीं, उस समय अपन जो ना व्यस्त रहते हैं अपने काम में, और कबो कबो भैया लोग भी ऐसे महसूस करते हैं, वो सब अपन काम करत रहते हैं और देखते हैं अपने पत्नी के पाजरे जाके तो कुछ बात करे चाहते हैं, कुछ बोले चाहते हैं, अपन सुख दुख बांटे चाहते हैं, लेकिन गृहिणी जोन है वो अपने काम में व्यस्त हैं एकदम, और घर संभारे में इतना व्यस्त हैं कि बिल्कुल समय नहीं दे पावती।
0: बिल्कुल, तो देखा सरस्वती बहनी तू सही कहो, पर देखा ये जो होता है ना, ये कहा जाता है ना जो पति और पत्नी है ये रिश्ता जो ने ऐसे कहा जाता है कि गाड़ी के 2 पहिया है,
1: बिल्कुल,
0: है ना। और जब 2 पहिया जब तालमेल से चली है तो गाड़ी कसना अच्छी कहे अच्छी ना चले, तो सबसे पहले तो ये बात। और देखा हम कई बार घर में देखा है जब पति पत्नी की तालमेल अच्छा रहता है तो परिवार इतना अच्छा चलता है कि कभी कोनो कोई दिक्कत नहीं आवत,
1: और लड़कवन भी समझदार होते हैं।
0: बिल्कुल, तो देखा सबसे बड़ी बात है कि तालमेल हर चीज का होएगा चाहिए, तो गुस्सा तो ऐसी चीज है कि इंसान 2 मिनट में दूर हो जाता है। देखा अभिन जैसे तो का मनावा ना, ऐसे घर में भी होएगा चाहिए, माहौल इतना अच्छा होएगा चाहिए कि देखा जब तू घर के अंदर घुसा, देखा भैया लोगन के यही एक जो ना चाहत है कि देखा हम घर वा आई तो घर में सा अच्छा वाला माहौल हो, लोग हंसत खुलत रहें, बच्चन हमार हंसत बोलत रहें, और बड़ पुरान भी यदि घर में है तो उन सब भी अच्छे से रहें, तो जब वो घर में घुसे तो उनका एक अच्छा माहौल चाहिए। पर देखा ये जो गृहिणी होते एक ही मन में भी एक छुपी भावना होता, वो ये सोचा थी कि जब हम पूरे घर के काम काज करके यदि हम अपन कोनो बात कोनो से कहे चाहिए तो हमार कोनो परेशानी है तो उका सुने और समझे कि हाँ भाई वो सही में परेशानी है भाई।
1: तो देखा आपन गुस्से के जया भाई ने कहे कि ई मतलब है कि भाई देखा अगर कोनो परिवार

0: गुस्सा है तो ओके समझे की कोशिश करें, ना कि ओके
1: बिल्कुल
0: ऊपर चिल्लाएं उसे नाराज होए, ओके समझे की कोशिश करें कि ये गुस्सा काहे बदे ह, और फिर ओकर समाधान निकालें, उसे प्यार से पूछें, ओके हंसावे बुलावे कोशिश करें,
1: बिल्कुल
0: तो ओके अच्छा लगत है कि देखा हमें कोई पूछे वाला है, हमें समझे वाला कोई है। तो ऐसे परिस्थिति जब होता तो गुस्सा दूर हो जाता है। और कई बार जया बहनी ऐसे होता कि हमार भैया आ रहे, चाहे बहनी रहे, जब घर से बाहर काम करे जाती, ऊंचे ओहदा पे ऊंचे पद के पाए जाती, तो वो घर में भी सोचती थी कि वैसे जैसे बाहर सम्मान मिला था वैसे भीतर भी उतने सम्मान से उनका देखा जाए, लेकिन और वो पद के अहंकार भी रहता है। लेकिन उनका समझे कि चाहिए, देखा बाहर के परिस्थिति अलग है और घर में उनकर दायित्व भूमिका अलग
1: अलग है।
0: है,
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: तो वही हिसाब से उनका निर्वहन करें, है ना।
1: बिल्कुल। देखा सरस्वती बहनी, जब पति पत्नी की बात तो हम लोग करते हैं, ओके साथ साथ देखा हम परिवार की बात भी करब, कि कहीं से देखा कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कई रिश्ते आप एक क्षणिक भर के गुस्से भर से जो उन्हें इतने दूर हो जाता कि समझब इतना मुश्किल हो जाता कि अरे हुआ का बात कौन सी हुई, और देखा क्षण भर में ऐसा गुस्से में ऐसी सी बात निकल आई जो उनकी बड़ा
0: बोले
1: मुश्किल
0: कि
1: हो
0: नहीं
1: जाता।
0: चाहिए,
1: हाँ बिल्कुल
0: और कहा जाता ना कि देखा एक बार मुंह से शब्द निकल जाते तो वो लौट के
1: नहीं
0: नहीं
1: आवा, तो देखा
0: आवत।
1: बहुत दिन तक अगले के दिमाग में रहते है कि देखा ऐसी ऐसी बात रही। तो गुस्सा सही बात है कि रिश्तन पे भारी पड़ जाते कभो कभो।
0: बिल्कुल भारी पड़ जाता और ऐसा दूरी आ जाता, और कभी कभी आदमी एकदम तुरंत में ऐसे निर्णय ले लेते, गलत निर्णय ले लेते, जिसे पूरे परिवार के क्षति होते और दूरगामी परिणाम एक आवत है नकारात्मक रूप में।
1: बिल्कुल।
0: तो देखा परिवार में जब बड़े बुजुर्ग घर के बड़े जौन है ऐसे अपने गुस्सा के संभारी हैं, तो बच्चे लोग भी ये सीखी हैं कि गुस्से पे देखा गुस्सा सबके आवा था, लेकिन अब जरूरत है कि हम सभी वो गुस्सा के संभाली, काहे कि देखा रिश्ता पहले ही कम हो चुका बाटे आज के समाज में।
1: बिल्कुल।
0: और वो रिश्ता के अगर हम अहंकार में अपने मद में और क्रोध में रिश्ता के तोड़ दे या खराब कह दे, तो देखा आगे चल के हम इनके समस्या हुई।
1: बिल्कुल।
0: और हम अगर ये सोची जया बहनी कि 16 कला संपन्न सर्वगुण संपन्न कोनो चीज
1: बिल्कुल
0: होता
1: बिल्कुल
0: तो ये
1: नहीं,
0: बिल्कुल नहीं
1: नहीं
0: होत,
1: हुए
0: और
1: बिल्कुल।
0: हम सब में कमी होत है,
1: हाँ
0: हम सब पूर्ण नहीं है, और हमें एक दूसरे के कमी के स्वीकार करे के
1: स्वीकार
0: पड़ी,
1: करे कि
0: तब
1: एक
0: हम एक साथ चल सकती
1: बिल्कुल।
0: और जी सकती। और देखा बहुत बड़ी परेशानी हो, बहुत बड़ी दिक्कत हो, तो वो दूसर बात है, जहाँ संहारा जा सकत है चीजन के, जहाँ सहा जा सकत है, हमें लगता है वहाँ सह के संहार के गाड़ी के आगे बढ़ावे चाहिए।
1: अच्छा सरस्वती बहनी, तो इतना बात बताओ पर हमारे मन में एक बात और रह जाए, जब ये बात पे जब ये विषय पे हम लोग बात करी थी तो अक्सर कहा हो जाते, अच्छा देखा कौन जब भी कोई आदमी बाहर जाते या हमारे बहनी हरे ने घरे पे रहे, चाहे वो घर पुरुष बाहर के होए चाहे गृहिणी घर पे होए, अगर बात ये होए कि कोनो बात से यदि कोनो के जो उन्हें थोड़ा मन दुखी है और हल्का गुस्से में भी है, यानी अगर ओके मन दुखी है या परेशान है या कोनो बात वो कहे चाहते पर कह नहीं पावत, तो होत का है कि ऐसे में दिक्कत ये आवत है कि मान लो चिल्ला दिए तो अगले का थोड़ा सा समझ भी लेकर चाहिए कि चला आज के लिए थोड़ा सा मान ला थोड़ा सा गुस्सा है भी तो उसका संभाल लिया जाए, है ना। रोज रोज तो नहीं होता पर देखा ये हूँ एक समझे की कला है। और देखा जब इस तरह परिवार में जब तालमेल मिल बन जाते हैं और जब दोनों एक दूसरे का समझे लगाते हैं, परेशानी चाहे बड़ पुरान हो चाहे बच्चा हो, देखा आजकल बच्चन भी दिखा हुआ गुस्सा।
0: बिल्कुल सही कहा तू। और देखा कहे के ये मतलब है, अगर रिश्ता बचावे के है, रिश्ता के पहले मूल्य समझे के पड़ी कि ये रिश्ता अगर जीवन से चल जाए तो देखा युवावस्था में तो दिक्कत नहीं होते, लेकिन आगे के जीवन में जब थोड़े धीरे धीरे उम्र ढले लगत है ना, तब रिश्तन के महत्व समझ आवत है। लेकिन तब तक हम सभी रिश्ता खत्म कर चुका थी, तो देखा ऐसा ना करे, थोड़ा सा दिमाग से चले, और कबो कबो जान बुझ के बहरा हो जाए, कबो कबो जान बुझ के गूंगा हो
1: जाए,
0: है ना।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: देखा ऐसे करें और थोड़ा दिमाग लगा के अपने रिश्ते के बचाए ले जाए,
1: बचाए ले।
0: नहीं तो देखा जैसे आजकल के समाज में तनाव की बीमारी, तनाव एक बीमारी हुई के बाद,
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: सही। और आम
0: अकेला
1: हुई भी इतनी ज्यादा आम है इस समय कि ना कहा,
0: और अकेलापन भी सब अधिकतर समाज में ये धीरे धीरे फैलत जात बा।
1: बिल्कुल
0: तो तनाव और अकेलापन जैसे चीजन से अगर बचे के है तो देखा अपने गुस्से पे
1: काबू
0: रखे
1: का चाहिए। और देखा ये विषय का अंत करत करत गुस्से पे काबू जो उनमें पाऊ पा जो गुस्से पे काबू पाना एक बेहतर और संतुलित जीवन जीने की कला भी है। तो चला अब ये विषय का अंत करी और चला एक बढ़िया से तो का लोकगीत सुनाई और सुनाओ दे संगीता राय।

0: सरस्वती बहनी, देखा कितना अच्छा गीत रहा सुन के, देखा मन थोड़ा सा भक्तिमय हुआ, है
1: बिल्कुल सही कहा
0: ना?
1: तू। और देखा जया, अब हम तो का एक ठे बातचीत सुनावे चाहती है ना। हम सबे पढ़ाई करती है ना, और ई सोचती कि देखा पढ़ब लिखब तो हमार दीन दुनिया जो ना अलग हो जाए है
0: बिल्कुल।
1: ना। और कई बार लेकिन हम सबे का करती ना कि जब लड़का बच्चा पढ़ लेते हैं तो आगे चल के ये देखते कि अब एक नौकरी पाई जाए, लेकिन इतनी प्रतिस्पर्धा है सबको नौकरी मिल नहीं पावत
0: बिल्कुल।
1: है ना। और कब तो ये बात दिमाग में आ जाते है कि पढ़ाई जो है जब नौकरियां मिलते ही नहीं बा तो का करे इतना पढ़ाई करके। तो
0: बिल्कुल।
1: देखा सिर्फ पढ़े बदे नौकरी, सिर्फ पढ़ के सिर्फ नौकरी नहीं खोजल जात है ना। एक परिवार में, एक समाज में, एक देश में अच्छे से रहे के बदे पढ़ाई के बहुत जरूरत है, बहुत
0: बिल्कुल।
1: कीमत है। तो चला वही से संबंधित एक ठे बातचीत तो का सुना दे थी। पढ़ना सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और मंजू देवी से जयश्री गुप्ता की बातचीत हवे, तो चला सुन लीन जाए।
0: चला सुना जाए। और बहनी अरिन में सुने। बहनी आज जब हम अपने जीवन के बारे में सोची थी, देखी थी कि देखा आज हम जहाँ कहीं भी है वो केवल और केवल अपने शिक्षा, अपने ज्ञान यानी कि अपनी पढ़ाई के बल पर है। तो देखा जब हम शिक्षा के बारे में हम सब लोग बात करी थी, शिक्षा आसान तो नहीं है। असली शिक्षा की बात करा जाए तो एक ही अर्थ भी यही हो जाते कि देखा अज्ञान का दूर करके अच्छी समझ पैदा करब, यानी कि अपने आसपास से जो भी अच्छी बातें नहीं है उनका दूर कर दे। अपने शास्त्रन में भी यही कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या हमका बंधन से मुक्त करती। तो देखा जब आज बात करी थी शिक्षा की, तो आज अपने पनघटे पे एक विषय है, पढ़ाई केवल नौकरी पाए के लिए नहीं जीवन जिए के लिए भी आवश्यक है। तो एके बारे में बात करे के लिए हमारे पनघटे पे आई है मंजू देवी बहनी। मंजू बहनी आपके बहुत बहुत स्वागत है। मंजू बहनी, शिक्षा का उद्देश्य का होत है एके बारे में बतावे।
2: जी बहनी, शिक्षा का उद्देश्य देखा केवल नौकरी पावे नहीं है, यह जीवन का समझे के, जीवन का जिये के कला है। अक्सर समाज में यह धारणा प्रबल हो चुकी है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य आर्थिक सफलता या प्रतिष्ठित नौकरी हासिल करे है, जबकि यह केवल शिक्षा का एक पहलू है। असली शिक्षा तो हमारे व्यक्तित्व, सोचे समझे के क्षमता, नैतिकता और सामाजिक समझ को विकसित करे का माध्यम है।
0: तो देखा बहनी बिल्कुल सही बताए ना आपकी। देखा शिक्षा जो है केवल किताबी ज्ञान का नहीं कहा जा सकत। शिक्षा देखा हमका जब एक अच्छी नौकरी देती वो तो देखा अच्छी बात है, पर वो शिक्षा हमका कितना अच्छा इंसान बनावती ये बात भी महत्वपूर्ण है। मंजू बहनी ये बतावे कि शिक्षा काहे आवश्यक है।
2: सबसे पहले तो यह जानने की जरूरी है कि शिक्षा क्यों आवश्यक है। क्या पैसा कमाई के लिए? नहीं, बचपन से ही हमार जोन मतलब बच्चन होती हम उनके माता पिता जोन होती वो बच्चे से दिमाग में यही भर देती कि बड़े होके का बनी है।
0: सही बात है।
2: तो कोनो लड़कियन डॉक्टर को, इंजीनियर कुछ भी बतावत हैं, लेकिन जेका इस दुनिया के अच्छे से समझ नहीं है वो सब यहाँ पे कैसे विचार कर सकी।
0: बिल्कुल सही। देखा नन्हवार गदेल होते उनका

0: ये सब जो ने दुनियादारी बहुत ज्यादा उनका समझ में भी नहीं आवत। उनका तो बस देखा जो ने विद्यालय जाओ वहाँ से कुछ अच्छी बातें सीख के घर आओ, यही उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा है।
1: तो माता पिता के हम तो ये कहे कि उहे कि सबसे पहले तो उन्हें एक सवाल और पूछे के चाहिए कि पढ़ाई मतलब करी है तो के कैसा इंसान बनी है,
0: बिल्कुल सही,
1: क्योंकि पढ़ाई का उद्देश्य केवल तय करे नहीं है कि हम कितना कमाब, बल्कि यह भी हो चाहिए कि हम कैसे जीवन जिए। पढ़ाई केवल नौकरी पावे के सीढ़ी नहीं है बहनी, यह जीवन का समझे के चाबी है।
0: बिल्कुल सही,
1: यह हमें केवल विषय नहीं सिखावत बल्कि सोचे के क्षमता देत है। जब हम देखा गणित सीखी था तो सिर्फ संख्या नहीं सीखी, हम तर्क करे भी सीखी थे।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: और जब हम देखा जब साहित्य पढ़ी था तो हमें केवल शब्द नहीं मिलत, हम अपने भावनाओं का समझे के संवेदनशीलता मिलत है।
0: बिल्कुल सही,
1: इसलिए शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि जीवन जिए के योग्य बनावत और हमें सही और गलत में अंतर करे सिखावत है।
0: बिल्कुल सही, देखा मंजू भाई ने कितने अच्छे से आप बताई कि देखा जब हम बात करी थी छोटे बच्चन की तो सही बात है, अक्सर कहा होते कि माँ बाप जो ने ननवार गदेलन का जो मतलब विद्यालय जाए लगा थी छोटे से उनका पूछे लगे तुम का बनी हो, तो देखा ये जो छोटा सा जो ने उनका दिमाग होते वो पे एक जो ने असर डालत है रोज रोज यही बात सुनब, तो देखा उनका तो उतने समय यू नहीं समझ में आवत कि देखा हमारे जो माता पिता हमसे का चाह थे। मंजू भाई ने एक बात और कि अक्सर अब हम लोग जो ने सोची थी कि जो उन पढ़ा हुआ ज्ञान है और उसके साथ साथ देखा डिजिटल शिक्षा आजकल हम सब लोग देखी थी, तो इन दोनों में का अंतर है?
1: देखा आज का समय सूचना का समय हो गया है, तो आज हमारे हाथ में देखा सब बहनी हरन के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है, जो कुछ भी कुछ ही समय में हजार जानकारी हमारे पास आई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि का जोन हर जानकारी हमारे पास है क्या सही है?
0: बिल्कुल सही,
1: यहाँ पर देखा हमार शिक्षा ही मदद करत है, क्योंकि एक जब शिक्षित व्यक्ति बा तो वो ये नहीं पूछत कि यह बात कहाँ लिखी है, वह यह पूछत है कि क्या ये सही है जानकारी जोन है।
0: बिल्कुल सही,
1: जब अफवाह तरह तरह के झूठ खबरें और गलत जानकारी जोन है ये तेजी से जब फैलत है, तो शिक्षा हमें आंख बंद करे के विश्वास करे के बजाय सोचे समझे का शक्ति देत है, और यह एक शिक्षित समाज का सबसे बड़ी पहचान है।
0: बिल्कुल सही, देखा मंजू भाई ने बहुत अच्छा बताई ना आपकी, देखा जो डिजिटल शिक्षा है हम सब लोग उसे जुड़े हैं, तो सही बात है कि अब जो सही और झूठ का फर्क कर अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ये सोचे का पड़त है हम लोगन का कि देखा जो हमका तो हमेशा ये लगत है कि जो हमार पढ़ा हुआ है वो कभी भी गलत नहीं हो।
1: जी बहनी, शिक्षा हम देखा जीवन का हर फैसला ले सिखावत है।
0: बिल्कुल,
1: जीवन में हर फैसला परीक्षा के तरह होता है, लेकिन हर परीक्षा में किताब हमारे साथ नहीं होत। जैसे कोनो दिन हमें पैसा के लेन देन का फैसला है, कोनो दिन सही और गलत का पहचान करे के है, कोनो दिन हमें असफलता का सामना करना होगा, जैसे तो उस समय किताब हमारे सामने उत्तर न लिखी। उस समय तो हमार शिक्षा से जौन विकसित हुए हमार बुद्धि है विवेक है वो हमारे साथ हुई।
0: बिल्कुल सही,
1: इसलिए शिक्षा का असली परिणाम जौन हमार मार्कशीट होता ही नहीं होते, बल्कि हमार सोच हमार व्यवहार और हमार फैसला होता।
0: बिल्कुल सही,
1: शिक्षा हम तब आत्मनिर्भर बनावत है, और आत्मनिर्भर का अर्थ ही न है कि हम पैसा कमाए सकी, आत्मनिर्भर हो का अर्थ है कि हम अपने फैसला खुद समझ के ले सकी, अपने अधिकार को पहचान सकी, अपना जिम्मेदारी निभाई सकी।
0: शिक्षा का अक्सर हमारे जो अब की समय में यदि जो ने डिजिटल शिक्षा की बात करा जाए तो अक्सर उन लोग बोला थे कि देखा वो पढ़ाई नहीं जो उन किताब में लिखा होगा पढ़ा, पर अक्सर बच्चे जो ने गलती कर रहे थे कि जो ने डिजिटल शिक्षा का अपन सही शिक्षा मान लेती, तो लेकिन सही बात है जो पढ़ा हुआ है जीवन में जो किताबी ज्ञान है देखा ओके अलग एक महत्व होता है। ये बतावें कि देखा जो शिक्षा होती इकर एक जो प्रभाव हमारे जीवन पे पड़े थे उसके बारे में बतावें।
1: जी बहनी, देखा कल्पना करें कि अगर एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत नौकरी है बड़ी, लेकिन दूसरे के प्रति सम्मान करे के नहीं है, ईमानदारी न है, तो क्या वह शिक्षित कहलावे के बा?
0: शिक्षा का हमारे जीवन में का प्रभाव होता है तो एक बारे में बतावें।
1: देखा कल्पना करें कि एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पास बहुत बड़ी नौकरी है, लेकिन उसके अंदर दूसरे के प्रति सम्मान करे के क्षमता नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो क्या वो शिक्षित कहलाए के बा?
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही, ये तो गलत बात,
1: क्योंकि देखा डिग्री इंसान का योग्यता बता सकती।

0: कथा, लेकिन ओका व्यवहार ओकर शिक्षा की गहराई बतावत है।
1: बिल्कुल सही।
0: सही शिक्षा तो हमें यह सिखावत है कि हम अपने से बड़ा का सम्मान कैसे करी, अपने से छोटे जौन हैं उनके प्रति स्नेह कैसे करी, जौन कमजोर हैं उनकर मदद कैसे करी।
1: बिल्कुल। देख सही बताए मंजू बेनी आप। और देखा जो शिक्षा होते कहा जाते कि जो हम अगर हम कहूँ खड़े हैं तो शिक्षा हमका वो स्थान दिलावती जो उनकी हमार सही में वो हमार स्थान होएगा
0: जी
1: चाहिए।
0: बहनी, लेकिन

0: जो हम अगर हम कहूँ खड़े हैं तो शिक्षा हमका वो स्थान दिलावती जो उनकी हमार सही में वो हमार स्थान होए का
1: जी
0: चाहिए।
1: बहनी, लेकिन देखा अगर हमार पूरी मतलब शिक्षा का जौन लक्ष्य है केवल नौकरी पावे रह जाए तो हम शिक्षा का बहुत बड़े उद्देश्य का समझा भूलत है। हम
0: बिल्कुल।
1: अपने बच्चन का यह सिखावे के चाही कि अच्छे अंक ले आओ लेकिन अच्छे संस्कार भी कमाओ,
0: बिल्कुल सही।
1: अच्छी नौकरी करे लेकिन अच्छा इंसान बने ना भूला, सफलता हासिल करे लेकिन संवेदनशीलता जौन है
0: ऊ ना
1: ओका ना
0: भूला,
1: भूला।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: सही।
1: देखा जिंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि हमार सफलता नहीं है कि हम लोग सफल कहें, हमार तो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लोग हमारे साथ रह कर अपने आप को सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: सही।
1: किताब जौन होत है किताब हमें यह बतावत है कि दुनिया कैसी है,
0: बिल्कुल सही।
1: लेकिन शिक्षा हमें यह शक्ति देत है कि हम इस दुनिया का कैसे बना सकित हैं।
0: बिल्कुल सही। तो देखा किताब का अपना महत्व है और देखा अब जो हम इंसान बनी थी शिक्षा से ओके देखा एक अलग प्रभाव पड़त है। मंजू ने एक बात और बतावे कि पढ़ाई जो ने हम सब लोग देख रहे पढ़ाई केवल जो ने नौकरी पावे के लिए आजकल हर इंसान भाग रहा है कि हमका नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाए, पर जो ने शिक्षा का हम ऐसे जोड़ सकी थी कि का जीवन जीने के लिए भी इतनी ना आवश्यक है।
1: जी बहनी, अगर पढ़ाई केवल नौकरी पावे के लिए होते तो नौकरी मिले के बाद जौन है शिक्षा की आवश्यकता ही समाप्त हो जात, लेकिन ऐसा नहीं होत क्योंकि जिंदगी हमका हर दिन कुछ न कुछ नया सिखावत है, हर गलती से एक सीख मिलत है, हर चुनौती एक परीक्षा के तरह होता है और हर सही निर्णय का हमार शिक्षा की पहचान करत। शिक्षा का केवल रोजगार का साधन न समझे चाहिए, शिक्षा वह शक्ति है जब हम दूसरे पर निर्भर होए के बजाय अपने पैरों पर खड़ा होए सिखावत है। जब
0: बिल्कुल
1: इंसान
0: सही।
1: पढ़ा लिखा होता है तो वह अपन बात दूसरे के सामने बेहतर तरीके से रख सकत है, वह किसी कागज पर जो अंगूठा लगावे के बजाय उसका पढ़ लिख कर और तब वहाँ पे हस्ताक्षर
0: हस्ताक्षर
1: बनाई
0: लग
1: सकत
0: से
1: है,
0: बिल्कुल सही।
1: वह किसी के बहकावे में आई के खुद अपन फैसला अपने आप से कह सकत है।
0: बिल्कुल सही। देखा मंजू मैंने बिल्कुल सही बताया कि देखा शिक्षा हमका एक अलग इंसान बनाए दे थे और शिक्षा में नौकरी पाए की जल्दी तो देखा हर इंसान का है, पर एक अच्छा इंसान बने के हुनर भी शिक्षा हमका दे था। तो शिक्षा के तो देखा महत्व का हम सब लोग नकार नहीं सके। हम सब लोग शिक्षा का ओके जो स्तर है कोनो भी हम सब मसल ओका नाप नहीं सके। तो देखा शिक्षा हमेशा से सर्वोत्तम रही है हम सब लोगन के लिए और आगे भी हम लोगन के लिए। देखा शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं का, ऐसे जीवन जिए के लिए शिक्षा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं, एक अच्छा इंसान बने के लिए शिक्षा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं। देखा चाहे कोई ननवार गदेल होए, चाहे हम उम्र होए हम लोगों जैसा या कोनो वृद्धावस्था में होए, तो का पढ़े की कोनो उम्र होती का।
1: ना ही बहनी, देखा बहुत सही आप पूछिन कि सीखे के देखा कोनो उम्र नहीं होत, व्यक्ति देखा जीवन पर्यंत सीखत है। अगर जेह दिन इंसान सीखे छोड़ दे वह दिन से ओकर विकास रुक जाए।
0: बिल्कुल।
1: अब जब सोचें अगर जरा कि किसान पढ़ा लिखा है तो वह नई नई तकनीक समझ सकत है,
0: बिल्कुल
1: मौसम का
0: सही।
1: जानकारी ले सकत है,
0: बिल्कुल।
1: खेती बेहतर तरीके से कर सकत है, और हमार जौन बहिनी अरे हैं अगर पढ़ी लिखी हैं तो वह
0: हाँ
1: अपने बच्चन का पढ़ाई लिखाई स्वास्थ्य
0: स्वास्थ्य
1: के बारे में बेहतर समझ सकत हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर हमारे युवा भैया है, लोग हैं जौन
0: हाँ
1: वह
0: हाँ
1: अपने भविष्य के बारे में सोच समझ कर निर्णय ले सकत हैं, तो पढ़ाई का कोनो उम्र नहीं होत, पढ़ाई हमेशा इंसान बचपन से लेके बुढ़ाई तक कर सकत है।
0: बिल्कुल सही। आप कुछ अपनी बहनी लोगन से कुछ बोले चाहती?
1: तो इसलिए हम मैं अपनी बहनी लोगों से यही कहे चाहब कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी पावे का माध्यम ना है, यह जीवन का समझे का आधार है। क्योंकि अच्छी नौकरी हमें सफल बनाई सकत है लेकिन शिक्षा हमें एक
0: एक
1: बेहतर
0: बेहतर
1: इंसान
0: इंसान
1: बनाई
0: बनाए
1: सकत।
0: सके थे। सरस्वती बहनी देखा कितनी अच्छी बातचीत रही
1: अब
0: मंजू।
1: जाना तू। हाँ मंजू देवी जी कितना अच्छे से समझाई ना जया।
0: बहुत अच्छे से देखा सब कुछ अच्छे से बात करें और देखा बहनी लोगन का भी बताएं है ना।
1: और जया हम एक बात कहे चाहते कि जौन विषय पे बातचीत हम सबे सुने हैं कि देखा नौकरी बदे पढ़ब जरूरी ना आई बाटे है हाँ ना, ई ना सोचे कि पढ़े तो नौकरी
0: मिल
1: मिली,
0: जाए
1: और
0: बिल्कुल।
1: ई बड़ा सोचे के चाहिए कि जरूरी ना है कि नौकरी बदे पढ़ा, तू नौकरी देवे बदे पढ़ा

0: इतना काबिल हो जाए हमारे घर के लड़का बच्चा कि वो नौकरी देवे लायक हो जाए।
1: बिल्कुल
0: है ना।
1: वाह सरस्वती, देख बहनी कितनी अच्छी तू बात कहो, देखा ई होत है देखा पढ़ाई का है ना असर तो चला देखा जब बातचीत तो हो गई, अब एक लोग ये सुन लिया जाए और सुनावा थी कामिनी श्रीवास्तव बहनी
0: चला एक थी झूमर पे झूम लिया जाए।

0: सरस्वती भाई ने देखा, बातचीत भी हो गई, लोक संगीत संगीत भी हो गया, तो चलो आप रसोइयाँ चला जाए।
1: बिल्कुल, रसोई घर में देखा आज हम बात करे चाहती, खाने की बर्बादी रोकें
0: रोके
1: कहीं।

0: कि बहुत जरूरी है। देखा कि खाना हम तक जोन पहुंचा था ना, वो अन्न उपजावे में बहुत मेहनत लगत है।
1: बिल्कुल
0: एक किसान नहीं बल्कि वो किसान के पूरा परिवार लगत है, और उकरे परिवार के साथ में बहुत सारा संसाधन लगत है,
1: बिल्कुल
0: और
1: सही
0: बहुत सारे लोगन के श्रम लगत है। तो अन्न के बर्बाद करे के मतलब बा इतने लोगन के श्रम के बर्बाद करब।
1: बिल्कुल। और देखा अन्न की बर्बादी तो उसे पूछा जेका एक दिन खाना नहीं मिलत है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: सही कहा। तो
1: तो अगर यदि आपके घर में ऐसा लगत है आपका कि खाना बर्बाद होए वाला, तो कोनो गरीब का ज़रूर से खिलाए दें। खाना कोशिश करें उतने बनावे जितना ज़रूरी है, अधिक खाना बनावे से ज़्यादा बर्बादी होता। और
0: बिल्कुल,
1: देखा
0: और
1: घर
0: सोच
1: में
0: समझ के ले अपने आप के जब खाना
1: बिल्कुल
0: परोसे,
1: थाली में सोच समझ
0: तो
1: के लें।
0: भाई खाना आपके घरे में बा उतने कम खाए से कोनो नुकसान ना हो जाए, है ना। तो भाई देखा खाना का बर्बादी रोकें, और जौन खाना बच जाते कोनो तरह से ओकर उपयोग करे के कोशिश करें,
1: बिल्कुल
0: बजाय कि ओका फेंकें।
1: फेंके के। तो सरस्वती बहनी, देखा रसोई घर से जब हम बात कर लिया, तो अब हमारा मन कर रहे थे कि चला एक फिल्मी गीत सुन लिया जाए। और फिल्म है गोदान और आवाज़ है लता मंगेशकर जी की, तो चला सुना जाए।

0: जया हम तक पहुंचे बदे हमारे बहनियरन के एक जरिया आउर बा उहा ए संदेश के माध्यम से चला बताई।
1: पनघट जहां बातन में होत है अपने पन का मिठास, माटी की खुशबू और दिल से दिल का जुड़ाव, जहां मिलके हम हंसी थे, बोली थे और आपन सुख दुख बांटी थे, ये हम सब का आपस में जोड़े का एक अदृश्य डोर है। बहनी हरिन, हमें बहुत खुशी हुए अगर आपो पनघट का हिस्सा बनी है।
2: तो हमका जरूर बतावें कि आप सबके हमारे कार्यक्रम कैसन लागत है, कौन बात आपका ज्यादा पसंद आवत थी और इमा आप नवा का जोड़े चाहत थी। आपन प्यारी प्यारी प्रतिक्रिया और सुझाव हमका ईमेल संदेश और व्हाट्सएप के जरिए भेजें।
3: हमारा ईमेल एड्रेस है
4: pangatprogram@gmail.com। स्पेलिंग है pangatprogram@gmail.com। pangatprogram@gmail.com। एमा कौनो प्रकार के कोई स्पेस ना हुई, सारे अक्षर छोटी ABCD या स्मॉल लेटर में।

0: हुई हैं।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 800-4926-2550। तो सखियन देर कोने बात के, तुरंत उठावें अपन मोबाइल और भेज दें अपने मन के बात, या तो लिख के या अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके। आपके संदेश के हम सबके
2: बेसब्री से इंतजार रही।
3: सरस्वती बहनी,
0: हाँ जया,
3: बेसब्री से इंतजार
0: हाँ
3: रही।
0: रहेगा।
3: तो बहनी हरेन, हम सबका संदेश अपने संदेश के माध्यम से हम लिख के भेजे कि हमारे कार्यक्रम उनका कैसे लगत है। और चला देखा, घड़ी इशारा करे थी कि राम राम किया जाए।
0: राम
3: राम
0: राम,
3: राम
0: बहनी
3: बहनी
0: हरे।
3: हरेन।

अभी ग्रामीण वहनी सुन रही थी अपना पसंदीदा कार्यक्रम पनघट। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स, FM 100.3 मेगा हर्ट्स और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम

0: provides relief to consumers, mitigating inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
2: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा।

0: ऐसी सात धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी। तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव

0: भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
2: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी तट को पार कर गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कई स्थानों पर जल भराव और बाढ़ की स्थिति बन गई है।
4: कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के तट को पार करने के बाद गहरा डिप्रेशन जमीन के अंदर की ओर बढ़ गया है और धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। उड़ीसा में इसका असर अभी भी महसूस किया जा रहा है। आज कोरापुट, नवरंगपुर, मालकानगिरी, कलाहंडी, नुआपड़ा, बलांगीर और बरगढ़ में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश और कल व परसों बहुत भारी बारिश के साथ साथ आंधी, तूफान, बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि भूस्खलन के खतरे के कारण 157 का कलिंगा घाट वाला हिस्सा बंद कर दिया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: और अब एशियाई खेलों की आज की अपडेट के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक

0: जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबिना देवी नाओरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियायोउ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने 6:13.25 का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए के मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी पक्का हो गया है। अब पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया। कहा, सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा, भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर, FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
3: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं।
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था। और तो और, गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में

0: सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
1: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए,
0: जी,
1: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा,
0: जी,
1: अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
0: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं? और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
1: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओं, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
0: जी,
1: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
0: जी,
1: यही तो है नवाचार।
0: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
1: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
0: जी,
1: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए, कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दी।
0: बिल्कुल,
1: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
0: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत छोटी गेंद। जब हम लिखते हैं तो वो नन्ही गेंद घूमती है और स्याही को नियंत्रित मात्रा में कागज पर पहुंचा देती है। वाह, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी।
1: जी, एक नन्ही सी गेंद ने लिखने की दुनिया ही बदल दी। तो साथियों, याद रखिएगा, आज जब हम परीक्षा देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, नोट्स लिखते हैं और फॉर्म भरते हैं, उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
0: तो ये थी हमारी आज की जानकारी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
1: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा, तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा, ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और

0: ₹5 की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
1: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
0: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
1: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
0: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
0: आओ खेलें झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षर।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए, सोचिए सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब

0: ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
1: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
0: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
1: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमाकर कहा,
2: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
1: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
3: माँ, ये चिट्ठी।
1: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी

0: चालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
1: अपनी मां को ये चिट्ठी दे देना।
0: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी मां को दे दी।
2: मां ये चिट्ठी।
0: मां ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
3: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
2: माँ आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
3: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
2: अच्छा,
3: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
2: अच्छा,
3: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। साथियों, उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
0: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
3: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
0: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
3: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
0: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
3: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थीं। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
0: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थीं और मुझ पर विश्वास करती थीं।
3: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।

0: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
1: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले, लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
0: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
1: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
0: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
1: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
0: लगभग 10,000 बार।
1: 10,000 बार?
0: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
1: अच्छा,
0: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
1: अरे वाह।
0: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
1: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
0: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
1: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
0: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
1: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोलकर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
0: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शिक्षा वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर जीवन को प्रकाश से भर देता है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। प्राइमरी चैनल पर हमारी आज की ये सभा यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में 4 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। विविध भारती पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा, सुनते रहिए विविध भारती।

किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4 बजे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के खास एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो। कारगिल की बुलंदियों पर लिखी गई थी एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया आज भी भारत की विजयी शौर्य गाथा के रूप में याद करती है। हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस, वीरता, कर्तव्य, निष्ठा और उनके अमूल्य बलिदान की कहानी। संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे खास मेहमान कारगिल युद्ध के एक ऐसे योद्धा, एक डैरिंग सोल्जर हैं जिन्होंने 25 साल तक इंडियन आर्मी आर्टिलरी में अपनी सेवाएं दी। वो हेलीकॉप्टर पायलट रहे और अनगिनत मिशंस के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशंस किए, देश और साथी जवानों की सुरक्षा में जान की बाजी लगा दी। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिप्यूटी प्लानिंग ऑफिसर के रूप में इंटरनेशनल कोऑपरेशन संभाला। ऑफसेट पॉलिसी 2006 के रचनाकार रहे। उन्होंने नेक्स्टर फ्रांस और राइन मेटल जर्मनी के हेड के रूप में भारत को रिप्रेजेंट किया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जय हिंद। थैंक यू ऑल द लिसनर्स। थैंक यू शाहिद फॉर हैविंग मी ओवर फॉर दिस ब्यूटिफुल शो टुडे।
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो सर, हम आज का शो शुरू करेंगे आपके साथ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मैं

0: ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूंगा। इतनी सारी आपकी जो कंट्रीब्यूशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, जो आपके जो ऑनर्स हैं उनको मैं जब पढ़ रहा था, तो आपकी शुरुआत ही, आप बचपन से बहुत डिसिप्लिन थे, बहुत ही हम्बल और बहुत ही ऑनेस्ट चाइल्डहुड आपका रहा। आपके पिता एक डॉक्टर और आपकी बहन जो है नेशनल एथलीट्स, और आपके भाई भी जो है स्पोर्ट्स और स्टडीज में एक्सेल कर चुके हैं। तो किस तरीके का बचपन था, कैसी हुई शुरुआत, फिर आगे बढ़ेंगे हम।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप ने हमको बहुत मेहनत की हम बच्चों के ऊपर, बिल्कुल ऑनेस्ट शुरू से सिखाया है कि आप सिंसियर रहो लाइफ के अंदर, ऑनेस्ट रहिए और बिल्कुल बिल्कुल हर चीज़ सीधी लाइफ में चलना हमारे माँ बाप ने सिखाया था। तो हमारी बहनों के ऊपर बहुत मेहनत की स्पोर्ट्स के ऊपर। हम भाइयों को उन्होंने बोला, उस टाइम स्पोर्ट्स में ज़्यादा वो नहीं था चांसेस, तो उन्होंने बोला आप पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर हम दोनों भाइयों ने पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया, तो हम चारों बहन भाई ने अपने अपने फील्ड में जहाँ भी काम किया काफ़ी एक्सेल किया लाइफ के अंदर, जो जम्प कर सकते थे। माँ बाप का बहुत बड़ा सहयोग था उसमें।
0: जी सर, हम बात करें कि जैसे आपकी शुरुआत हुई, तो क्या पहले से ही कुछ प्लान था बचपन में, लड़कपन में कुछ जोश, कोई जज्बा था कि इंडियन आर्मी मुझे ज्वाइन करनी है? और क्या ये कुछ खास एक जज्बा आपके दिल में था कि हेलीकॉप्टर पायलट ही बनना है? कैसी हुई शुरुआत, आपने आई में ज्वाइन किया?
1: ऐसा था, मैंने ना बीकॉम किया था, मैंने ग्रेजुएशन किया था, और मेरे ब्रदर इन लॉ आर्मी में थे, मेरे अंकल, हमारे और रिलेटिव बहुत आर्मी में थे, और जब भी मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट वहाँ का, और यूनिफॉर्म्स में देखना, सोल्जर्स ने आना, जैसे सोल्जर्स ने आके सल्यूट करना, कंडक्ट सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का लेडीज़ की तरफ, या जैसे बहुत बहुत ही जैसे होना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था ये इन्वायरमेंट विजावी आउटसाइड जो मैं देखता था। जैसे जो मुझे किसी, तभी तो कॉलेज में था तो थोड़ा थोड़ी समझ कम थी, पर फिर मैंने सोचा मुझे आर्मी ही ज्वाइन कर रही है। फिर मैंने आर्मी के दौरान हमारे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जब हम ज्वाइन करते हैं, मैंने कॉलेज के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमसे चॉइस ऑफ आर्म पूछा जाता है, तो मैंने आर्टिलरी इसलिए चुना कि मैं चाहता था कि आगे जाके मैं फ्लाइंग कर सकूँ। फ्लाइंग मेरा संभव पैशन था,
0: पैशन,
1: और सिर्फ आर्टिलरी की वजह से ही मैं फ्लाइंग कर सकता था, इसलिए मैंने आर्टिलरी चुना।
0: राइट सर, तो ये बड़ा जोशीला ये जज्बा था, और मतलब हमें अभी भी सुनकर के लगता है कि कितना ही एक्साइटिंग सा ये रहा होगा और रहता है। तो क्या ये उतना ही एक्साइटिंग होता है या बहुत ही खतरनाक भी होता है, और जिस तरीके के जब हमें मिशंस करने पड़ते हैं?
1: फ्लाइंग पे आने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फ्लाइंग से आने से पहले मैं और दो यूनिट्स में मैंने काम किया, 92 मीडियम रेजिमेंट में, 217 मीडियम रेजिमेंट में। उसमें मुझे मौका मिला काफ़ी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ करने में, चाहे आप पंजाब प्रॉब्लम समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर प्रॉब्लम समझ लीजिए, तो हमने ग्राउंड वर्क पे बहुत ज़्यादा, मतलब जो मिलिटेंसी के साथ बहुत इन यूनिट्स ने काम किया, तो हम वेरी प्राउड कि मैं ऐसी यूनिट्स के साथ एसोसिएटेड था। पर उसके बाद फिर मैं जब फ्लाइंग कैरियर में आया, मैं पायलट बना, मुझे विंग्स मिले फ्लाइंग में, फिर हमने 9 साल फ्लाइंग किया, तो उस 9 साल के अंदर हम अलग अलग स्टेशंस पे, आगरा, नासिक, कई जगह पे फ्लाइंग करता रहा मैं। बाद में मेरे को 2 साल मौका मिला सियाचिन ग्लेशियर में फ्लाइंग करने का। सियाचिन ग्लेशियर का फ्लाइंग का मतलब है ये मोस्ट हॉस्पिटेबल टेरेन इन द वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ टेम्परेचर होता है -50 से -60, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की बात करो तो वहाँ की फ्लाइंग, मतलब हमारे हेलीकॉप्टर भी जो थे वो चीता हेलीकॉप्टर थे, जो हमारे कुछ शुरू शुरू में एक्सीडेंट भी थे, हमारे से पहले एक्सीडेंट्स भी होते, तो फ्रेंच वालों को बुलाया गया था कि यहाँ पर आपके एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कहते हैं ये जो आप हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ा रहे हो इस जगह के लिए नहीं बना है ये। पर हमारी आर्मी में इतना जोश था, इतना जज्बा था कि चीता हेलीकॉप्टर्स हमारे आर्मी के भी और एयरफोर्स के दोनों उड़ा रहे थे, और सुबह से लेकर शाम तक जो हमने काम किया 2 साल, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी सेटिस्फाइंग कैरियर नहीं महसूस किया टिल आई केम टू द कारगिल वॉर। कारगिल वॉर मेरा दूसरा एक्सपीरियंस था, बट जो मेरी फ्लाइंग सियाचिन ग्लेशियर में थी, मेरे को लगता था मैंने ज़िंदगी में कोई बहुत अच्छा काम किया है।
0: जी सर, हम आगे बढ़ते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे, लेकिन हम इन चीज़ों पर और ज़्यादा आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही एक्साइटिंग था ये आपका जो फ्लाइंग करियर था, और जो हेलीकॉप्टर उड़ाना, और जिस तरीके के जो ख़तरनाक एरियाज़ में, और इतने कम टेम्परेचर, इतनी ऊँची पहाड़ियों पर, तो वो सब चीज़ें, और जो करियर आपका शुरू हुआ बड़ा ही जोश और जज्बे के साथ शुरू हुआ था। तो जैसा कि आपने बताया कि वो बचपन में जब आप देखते थे, तो वही चीज़ मोटिवेटिंग बनी, या और भी कोई चीज़ थी जो आप, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, अपने आर्मी ऑफिसर्स को देखते हैं, बैटल्स देखते हैं, तो वो जोश, वो जज्बा, वो हम उस पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। तो पहले हम बता दें अपने लिसनर्स को कि आप भी आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी से सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें, नंबर है 9।

9868107070। और आप हमें सुन रहे हैं 102.6 देश का नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर, दिल्ली एनसीआर में और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर अलग अलग हिस्सों में देश के। और साथ ही हमारी मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन AIR, जिस पर आप हमें सुन सकते हैं अपनी मोबाइल ऐप पर।

102.6 एशिया नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स, और आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। बचपन से ही शौक रहा अनिल नंदा जी को कि वो

0: लिए हमने कोर्स पूरा किया था। तो
1: ओके।
0: जिन जिन के दिमाग में वो डर था वो पीछे मतलब उनको उन्होंने वापस यूनिट पे भेज दिया था।
1: सर, ऐसा ये क्राइटेरिया होता है कि मतलब ट्रेनिंग के बाद भी ये मौका दिया जाता है कि जो फ्लाइंग कर रहे हैं एक्चुअल फ्लाइंग, उसके बाद भी उनको वापस बुलाया जा सकता है?
0: नहीं, जो एक बार ग्राउंडेड हो गया वो कभी दोबारा फ्लाइंग में नहीं आ सकता।
1: अच्छा,
0: एक बार ग्राउंड हो गया, जैसे मैंने बताया 28 में से हम लोग फाइनली 18 जो ऑफिसर्स थे जो फाइनली जिनको विंग्स मिला था जो पायलट बने थे, तो 18 बाकी 10 को वापस यूनिट आर्मी में बाकी काम के लिए भेज दिया गया।
1: तो फिर वो कभी
0: एक बार पायलट बन गए तो उसके बाद वो लोग वापस नहीं आ सकते थे।
1: सर, आपने जैसे बताया कि सियाचिन में जो टेम्परेचर होता है वो -50 to 60 degrees Celsius, सर वो अनबिलीवेबल लगता है हमें सुनकर के, आपको कैसा लगता था?
0: ऐसा है, ये टेम्परेचर -50 to 60 मैंने इसलिए बोला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर जो -50 60 पे जाता है, -10 भी हो सकता है, -15 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। ये टेम्परेचर ऐसा होता है जब विंटर्स होती है वहाँ पर, तो हमको सुबह सुबह उठ के फ्लाइंग करनी होती है, तो आपने ग्लव्स पहने होते हैं। अगर उस टेम्परेचर पर अगर आपने हेलीकॉप्टर के किसी पार्ट को हाथ लगा दिया, नंगे हाथ लगा दिए, तो आपको वही फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
1: तो सर उसको क्या समझे हम आम भाषा में?
0: फ्रॉस्ट बाइट मतलब जैसे बर्फ को अगर आप किसी अगर उस जगह पे करें तो आपका खून जम जाएगा वहां पर, वो खून आपको उंगली ही कटवानी पड़ेगी, आप वो उंगली ठीक नहीं हो सकती है, फ्रॉस्ट बाइट उसी को कहते हैं। तो अगर आपने सुबह सुबह ऐसा होता है कि जब हम हिल्स में सियाचिन ग्लेशियर हिल्स है बेसिकली, हिल्स में 11-12 बजे के बाद वेदर पैकअप हो जाता है।
1: अच्छा,
0: तो हम लोग क्या कोशिश करते हैं, और क्योंकि ऊपर लोग बैठे हैं, जो जवान लोग ऊपर चोटियों पे बैठे हैं, उनको खाना पहचाना, उनको उनको राशन पहुंचाना, उनको ऑयल पहुंचाना, उनको दवाइयां पहुंचाना, उनको जो कैजुअल्टी ऊपर बैठी है उसको नीचे लेके आना, लोगों के घर से जो चिट्ठियां आती हैं या उनकी चिट्ठियां जवानों के नीचे लेके आनी। मोबाइल वगैरह का टाइम तो हमारे टाइम पे नहीं था, जब मैं अपने टाइम, आज का क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इन सबको करते करते हमारे को हम 2 घंटे फ्लाइंग करके फिर पेट्रोल खत्म हो जाता था, वापस आके फिर पेट्रोल भर के फिर दोबारा, तो 5:30 to 5:30 हमारी फ्लाइंग शुरू हो जाती थी। 11-12 के बाद हर रोज और तकरीबन वहां वेदर पैकअप हो जाता है। अच्छा। तो हमारी कोशिश ये रहती है जितने भी ऊपर जो बीमार वगैरह है उनको जल्दी नीचे लाया जाए। हर पोस्ट के ऊपर एक डॉक्टर होता है, वो कहता है कि ये P1 कैजुअल्टी है, P2, P3। अगर P1 कैजुअल्टी है इसका मतलब अगर आदमी को नहीं निकाला आपने तो ये कल तक नहीं बचेगा। तो हेलीकॉप्टर पायलट का ये मिशन रहता है कि जल्दी से जल्दी उसको लाया जाए, और वेदर खराब मिला तो बहुत मुश्किल।
1: तो इसका मतलब सर हर रोज हर एक मिशन एक नया चैलेंज होता है आपके?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो सर वो इस कदर टफ सिचुएशंस में आपको अपनी भी सेफ्टी तो रखनी होती होगी ना, तो वो कैसे फिर आप पॉसिबल कर पाते हैं?
0: टू बी ऑनेस्ट विद यू, हर फौजी जब उसी अपने मिशन पे काम कर रहा होता है ना, अपना तो नहीं सोचता है, वो सोचता कि मुझे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग मिली है, मेरे को फ्लाइंग करना है सियाचिन में। अगर वो डरेगा तो फिर आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, जैसे आप अगर सुना होगा कभी कोई हेलीकॉप्टर का कभी भगवान ना करे एक्सीडेंट होगा ना, तो ऑर्डर ये होते हैं कि सारे के सारे हेलीकॉप्टर थोड़ी देर के बाद सब फ्लाई करनी शुरू कर देंगे। किस ताकि जो पायलट्स ग्राउंड पे बैठे हैं उनके दिल में डर ना बैठ जाए। ये डर दूर करने के लिए हमेशा ऐसे होता है, जैसे मिक्स अगर मिक्स स्क्वाड्रन में कहीं कोई वो होता है क्रैश होता है तो बाकी थोड़े मिक्स सब के सब फ्लाई करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये डर निकालने के लिए।
1: क्या बात है सर, ये
0: ट्रेनिंग का तरीका है। तो हम लोग अपना तो उस टाइम कहाँ सोचते थे, मतलब ऊपर जो जवान बैठा है उसको नीचे कैसे लाना है, जो बीमार है उसके उसको राशन कैसे पहुंचाना है। तो बहुत मतलब बहुत सोल्जर्स का बहुत जरूरी जज्बा होता है।
1: बिल्कुल सर, और वो जज्बा जो एक सोल्जर का होता है वो शायद हम महसूस भी नहीं कर सकते, जो एक सोल्जर का जज्बा, जैसे आपने कहा कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर।
0: एब्सोल्युटली
1: जी। तो सर ये जो चैलेंजेस आपके रहे इस तरीके से आपने जो मिशंस किए, तो उन मिशंस के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको आज भी डराता हो, याद आता हो?
0: ऐसा है, जब हम लैंड करने जाते थे तो जो 17,000 feet, 18,000 feet पे जहाँ हेलीकॉप्टर आपका उड़ना ही नहीं चाहता, पावर आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है।
1: जी, आपने बताया इस बारे में कि हेलीकॉप्टर इनकार कर देता
0: है फ्लाइंग की, बिकॉज पावर पूरी खत्म हो जाती है। जब आप लैंड करने जाते हो तो ऐसी जगह है, छोटा सा हेलीपैड होता है, वहां पर जो पोस्ट होती वो लोग इग्लू के अंदर होते हैं, इग्लू के अंदर।
1: अच्छा।
0: ओके, बाहर सारी बर्फ इतनी पड़ रही होती है रात को, तो एच कैसे बार्क करें हेलीकॉप्टर हमको भी बताना है, क्योंकि हर जगह वाइट वाइट वाइट, तो एच क्या करते हैं, बाहर निकल के एच का पेट तो है नहीं, कभी बॉर्नविटा से एच बना रहे हैं, कभी चॉकलेट पाउडर से एच बना रहे हैं ताकि हेलीकॉप्टर आ सके। हेलीकॉप्टर उनके लिए जान होती थी। तो वहां पर उससे पहले क्रिवास 100 फीट 200 फीट 500 फीट की क्रिवास होती है। तो एक बार आप लैंड करने जा रहे हो, उधर से पाकिस्तान को जब पता चलता था ये हेलीकॉप्टर आ रहे हैं तो एयर बस्ट एम्यूनिशन फायर करने शुरू कर देता,
1: यानी कि आपको चारों तरफ से वो

0: एब्सोल्युटली
1: उसका सामना भी करना है और
0: हाँ,
1: मिशन भी पूरा करना है
0: पूरा करना।
1: और आपको लैंड करने के लिए जगह भी नहीं है
0: कुछ सेकंड मिलते थे हेलीकॉप्टर के ब्लेड आप रोक नहीं सकते।
1: अच्छा
0: आप वहां पर रुकते हैं कुछ सेकंड के लिए, पीछे लोग आते हैं दरवाजा खोलते हैं पूरा सामान निकालते थे अपनी खाली टिन अंदर डालते थे, किसी कैजुअल्टी को नीचे आना एकदम जंप करता था हेलीकॉप्टर में, कुछ सेकंड्स भी हमको हेलीकॉप्टर हटा के वापस लाना होता था। तो मतलब कुछ सेकंड मिलते थे, कुछ आई विल नॉट से सेकंड्स, मे बी अप टू अ मिनट और टू,
1: तो मतलब
0: हमको इमीडिएटली वापस आना।
1: ये अगर मैं समझूं एक आम भाषा में तो पलक झपकते ही आपका हेलीकॉप्टर वहां आना है और वो जो एक मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ सेकंड्स का उसको समय मिलता है और उसको फिर वापस टेक ऑफ करना।
0: और हम सब ऑक्सीजन यूज कर रहे होते थे, लेवल पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है तो हम सब ऑक्सीजन बॉटल्स भी होते थे, मतलब वैसे भी अगर ऑक्सीजन वगैरह मास्क लगी हो थोड़ा विजिबिलिटी थोड़ी और भी कम हो जाती है।
1: तो सर ये जो खतरा जैसा आपने बताया कि हेलीकॉप्टर लैंड करना भी इतना मुश्किल होता था कि नीचे जो आप बता रहे हैं वहां पर गहरी गहरी दरारें जो
0: क्रेवास,
1: उसके अलावा हेलीकॉप्टर भी आपके ऑर्डर कहता था कि मत मनवाओ मुझसे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं।
0: बिल्कुल।
1: तो दूसरी तरफ से आपने कहा कि दुश्मन भी आप पर
0: एयरबस टर्मिनेशन
1: है कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली एवरी डे।
1: सर ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूँ सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा कैरियर रहा
1: जी।
0: है ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज़्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: तो मतलब कंप्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश और जुनून से भरा हुआ।
0: Absolutely.
1: सर आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं।
1: क्या बात?
0: कभी भी नहीं।
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डैरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो ये जो
0: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं एयरबस टर्मिनेशन
1: है कि वो कभी भी आप पर फायरिंग कर दे, तो दैट वाज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर फॉर यू ऑलवेज।
0: एब्सोल्युटली एवरी डे।
1: सर ये पूरा करियर आपका एज ए हेलीकॉप्टर पायलट खतरों से चैलेंजेस से पूरा भरा रहा, वॉज दैट वेरी टफ स्कैरी और प्योरली मैं कहूँ सेटिस्फाइंग जोश और जुनून देश सेवा जन सेवा से भरपूर, क्या कहेंगे आप?
0: मैं आपको मैंने पहले बोला था मेरा 25 साल में सबसे बढ़िया मेरा कैरियर रहा
1: जी
0: है ये 2 साल फ्लाइंग सियाचिन में सबसे ज़्यादा मेरे को लगा मैंने जिंदगी में कुछ किया है। उसके बाद जब कारगिल में मौका मिला फिर लगा एक और मौका मिला है, पर फ्लाइंग कैरियर इन सियाचिन वॉज माई मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग।
1: तो मतलब कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग और पूरा जोश जुनून से भरा हुआ।
0: Absolutely.
1: सर आपको कभी डर नहीं लगा?
0: कभी नहीं।
1: क्या बात?
0: कभी भी नहीं।
1: तो सर ये जो आपकी बात है, ये जो डैरिंग सोल्जर, हम बताना चाहेंगे अपने लिसनर्स को यहाँ पर के हमारे साथ बैठे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, तो उनकी बातें सुन करके और उनसे बात करके मुझे भी जोश भर रहा है। तो ये जो
0: सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ मैं नहीं, अनिल नंदा नहीं, आप कोई भी सोल्जर देखिए, कोई भी ऑफिसर देखिए, आप उसको किसी मिशन पे भेज दीजिए वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये मैं नहीं हूँ, ये पूरे सोल्जर की हमारी ट्रेनिंग है।

0: कुछ हो रहा है आर्मी के अंदर। उसके अलावा तो जनता सोचती है अभी फौज आर्मी वहां बैठी है, अपना काम कर रही है, अपनी तनख्वाह ले रही है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो बहुत मुस्तैदी से काम करते हैं तभी हम आराम से बैठते हैं।
1: और जैसे आपने कहा कि वो पूरा डेडिकेशन उनका होता है और सिर्फ एक ही फोकस होता है, वो होता है कि अपने मिशन को पूरा करना और अपने देश की सुरक्षा, उसकी हिफाजत। तो सर हमारी और आपकी बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन मैं चाह रहा था कि आपसे ये बताऊं कि हमारे पास मैसेजेस काफी आ चुके हैं, अगर आप कहें तो मैं लेना शुरू करूं।
0: आपकी मर्जी, आपकी।
1: सर मैं यहां पर ये एक मैसेज जो मैं शुरू से लेना चाहूंगा, संदेश टू सोल्जर्स शो पर बहुत खूबसूरत गीत सुना रहे हैं और साथ में दिल को छू लेने वाली बेहद खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं, तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये है सर यश शिंदे, मुंबई से इन्होंने मैसेज किया है।
0: शुक्रिया।
1: जय हिंद सर जी, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल हैं ये महाराष्ट्र डहाणू वाणवाण से। इसके अलावा ये मैसेज है, जय हिंद कर्नल साहब, हम जान ये सवाल कर रहे हैं सर, ये हम जानना चाहते हैं रात में हेलीकॉप्टर यूज करना कितना सेव होता होगा। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: ऐसा है, हेलीकॉप्टर रात को हमारे फ्लाइंग नहीं करते हैं। जो हम यूज़ करते थे चीता और चेतक हेलीकॉप्टर आर्मी के पास है, हम रात को फ्लाइंग नहीं करते, पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम पर हमको जब फुल मून होता है,
1: अच्छा,
0: 3 दिन महीने में ट्रेनिंग करनी होती है रात को, क्योंकि ऐसा होता है अगर हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कहाँ लैंड करे, रात को कहीं ऊपर न गिर जाए, इसलिए रात को वैसे ही फ्लाइंग नहीं करते। अगर कोई मिशन होता है, जैसे वॉर होती है, मिशन होता है, तो आई एम श्योर वो मौका भी होगा, मेरे साथ नहीं हुआ है, मौका होगा कि रात को आप जा सके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप ट्रेन पाए,
1: ट्रेनिंग है आपको,
0: आपको थोड़ी सी चाहे मूनलाइट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, बिल्कुल अंधेरे में फ्लाइंग करना मुश्किल हो जाता है।
1: जी ये है सर, जय हिंद, मेरे पास कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरे पास एक शेयर जरूरी है, जो सरहद पार रात बिताते है वही हमें सुकून की नींद सुलाते, खुद मौत से आंख मिलाते हैं तभी हम आजादी से मुस्कुराते हैं। सर मुझे गर्व है आप जैसे वीर जवानों पर। जय हिंद सर, इनका नाम है, माय नेम इज सौम्या वर्मा सर।
0: थैंक यू वेरी मच सौम्या,
1: ये लाइनें आपके लिए लिखी इन्होंने।
0: थैंक यू सौम्या जी, आई एम ग्रेटफुल।
1: और ये है सर अनिल नंदा सर जी, आपको मेरा सलाम, आप जो देश के लिए कर रहे हैं वो बहुत ही बड़ा काम है, सोल्जर होना ही एक अलग ही लाइफ है। जय हिंद, ग्राम गेंडा खाली नंबर 1 टनकपुर जिला चंपावत उत्तराखंड से लिख रहे हैं, इनका नाम है सर अनिल कुमार।
0: थैंक यू अनिल जी।
1: और ये सर मैसेज आया है त्रिचुरापल्ली से सर, श्रीरंगम राजेश का, गुड इवनिंग टू ऑल इन न्यू दिल्ली AIR 102.6, सल्यूट एक्स आर्मी पायलट कम कारगिल वॉर वेटरन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम श्रीरंगम राजेश। और सर इन्होंने बस यही ग्रीट किया है सर।
0: थैंक यू वेरी मच सर जी।
1: और ये हैं विकास थापर सर, DLF 2 गुड़गांव से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको, वी लव यू अनिल नंदा जी, ही इज अ ग्रेट कम्युनिटी वर्कर टू हेल्पिंग द रेजिडेंट्स ऑफ DLF 2 फॉर मेनी इयर्स, ही इज आल्सो प्रेजिडेंट ऑफ आर RWA DLF 2।
0: थैंक यू वेरी विकास जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी जी,
0: थैंक यू विकास जी।
1: जय हिंद सर, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ज्वाइन एज पायलट टू ज्वाइन द आर्मी सर, ये इनका सवाल है। ये हैं प्रवीण जी।
0: प्रवीण जी, ऐसा है, आपको पहले तो अगर आर्मी पायलट बनना है तो आर्मी में आप आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, उसके बाद आपका PABT टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, और टेस्ट में आप क्लियर हो जाते हैं, जब आप क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी मेरिट बनती है, जो आपकी आर्मी सर्विस की प्लस आपके जो टेस्ट के मार्क्स आए हैं उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट लिस्ट पे जो आप अगर आप टॉप में आ जाते हैं तो आपको पायलट सेलेक्ट कर लिया जाता
1: है। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि हमें जैसे इन्होंने सवाल किया कि पायलट बनने के लिए इनको कहाँ से कैसे प्रोसीजर क्या है, तो उसके लिए
0: ये आर्मी पायलट की बात कर रहा हूँ,
1: आर्मी पायलट की। हाँ जी जी, हाँ जी, एयरफोर्स की नहीं।
0: हाँ जी, आर्मी नहीं, आर्मी मतलब सिविल की नहीं, मैं आर्मी और एयरफोर्स का अलग,
1: एयरफोर्स का अलग प्रोसीजर है।
0: हाँ जी
1: जी, तो सर सभी को IMS ही होना
0: नहीं, ऐसा नहीं, मैं इंडियन मिलिट्री अकेडमी ग्रेजुएशन के बाद होती है, उससे पहले NDA होता है, कोई NDA के बाद हम 3 आर्म्स में चले जाते हैं, कोई नेवी चला जाता है, कोई एयरफोर्स, कोई आर्मी में चला जाता है।
1: राइट सर,
0: मैंने चूज किया था इंडियन मिलिट्री अकेडमी जो ग्रेजुएशन के बाद में किया था
1: जी,
0: तो उसके बाद आर्मी में जाने के बाद आप ऑफिसर बनने के बाद फिर आप फ्लाइंग ब्रांच में जा सकते हो, अगर एयरफोर्स में अगर NDA में जाते हो तो सीधा डायरेक्ट फ्लाइंग ब्रांच में आपको टेस्ट होगा, अगर आप फ्लाइंग ब्रांच में सिलेक्ट हो जाते हो तो चले जाएंगे।
1: राइट सर, सर एक मैसेज और है ये, और जय हिंद सर मेरे पास, अच्छा ये दोबारा से इन्होंने मैसेज किया है, उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेरी से इन्होंने लिखा था, नाम लिखा था, जगह नहीं लिखी थी, उन्होंने दोबारा मैसेज किया।
0: थैंक यू वेरी मच
1: जी। और त्रिचुरापल्ली श्रीरंगम राजेश ने सर आपको धन्यवाद किया है, आपने जो उनको जवाब दिया उनके सवाल का, और यहाँ पर हमारे साथ बातचीत जारी रहेगी हमारे आज के खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी के साथ। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए ये एक्साइटिंग ट्रैक का भी सिलसिला रहेगा जारी, आप हैं शायद के साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ आप सुन रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे योद्धा, हमारे लोहे का बंदा, अगर मैं सर विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको पुकारना चाहूँ, लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी। सर ये गीत मैंने बिल्कुल टोटली आपको ही डेडिकेट किया था, वो जो जोश और जज्बा आपने बताया उससे मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए।
1: थैंक यू सो मच
0: सर। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे आपने जब हेलीकॉप्टर पायलट के करियर के बारे में बात करी तो वो अपने आप में बहुत ही डायरिंग और अमेजिंग था, तो जब शहीद जो हो जाते हैं हमारे सिपाही तो उनको
1: हाँ मैं बल्कि बताऊँ। अच्छा आपने ये क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ।

0: हूँ कि जब एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था हेलीकॉप्टर्स के बारे में, जब हम उड़ा रहे थे सियाचिन ग्लेशियर में, तो हमें पता चला एक गन पोजीशन थी जिस पे एवलॉन्च आ गया था, तो वहाँ के 14 सोल्जर्स उनके वो उनके नीचे
1: दब
0: उसमें चपेट में आ गए। तो हमको बोला गया कि वहाँ पर जाइए और उनको लेके आइए नीचे, उनके बॉटल रिमेन्स को। तो आप विश्वास नहीं कर सकते, मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ के अंदर जब हम हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे हमारे उधर, तो वहाँ पर जब ये लोग थे और पूरा बर्फ के नीचे से लोग निकाल के रखे हुए थे साइड पे उन्होंने उसके ऊपर, तो उनको हमने जब पहली बार हेलीकॉप्टर में एक सोल्जर की वाटर रिमेन्स मैंने पिछले हेलीकॉप्टर में अपने डाली, हम दो हेलीकॉप्टर में पायलट थे, हमने उनके पीछे डाली, तो हेलीकॉप्टर को हम नीचे लेके आते हैं। हमारा एम ये रहता है, इंडियन आर्मी का एम ये रहता है कि वाटर रिमेन्स फैमिली तक पहुंचे ताकि उनके अच्छे से लास्ट राइड्स हो सके। जब मैं पहली बार मॉर्टल रिमेन्स लेके हेलीकॉप्टर से नीचे आ रहा था, आप विश्वास नहीं करोगे, आपने जैसे रोंगटे खड़े होने की बात की है ना, मेरे रोंगटे तब खड़े हुए थे लाइफ में, और मैं बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा था, मेरे हेलीकॉप्टर में पीछे किसी के मॉर्टल रिमेन्स पड़े हैं, बार बार ऐसे देख रहा था। जब हम लैंड कर रहे थे जहाँ पर, पूरी दोनों साइड पे आर्मी के बहुत जवान ऑफिसर्स जेसीओस खड़े थे और सब सैल्यूट कर रहे थे टू रिसीव दैट मॉर्टल रिमेन्स। एक एक करके हम सब मॉर्टल रिमेन्स को नीचे लेके आए, फिर वहां से आगे Mi-17 से, फिर वहां से चंडीगढ़ वगैरह बाकी दूसरे एयरक्राफ्ट में। तो बॉडी मॉर्टल रिमेन्स फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तो लाइफ में ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मतलब आई वुड से बहुत हार्ट
1: टचिंग। आपके साथी सिपाही जवान जब वो शहीद हो गए, तो जाहिर है वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है।
0: एब्सोल्युटली
1: जी, उन्होंने देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दी।
0: हाँ जी।
1: और शहीद हुए सर। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो कारगिल युद्ध आपके सामने ही हुआ, तो क्या वजह रही, मतलब कैसे समझें हम के कारगिल युद्ध क्यों हुआ, क्या हालात थे, क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ सब?
0: शायद मैं जल्दी से बताऊंगा कारगिल हुआ क्यों था, मुझे पता है ज़्यादा हम लोग के पास टाइम अब भी नहीं है, बेशक आधे घंटे से ज़्यादा। कारगिल हुआ क्यों था, ऐसा है कि हर साल हमारी जो आर्मी है अपने एरिया में कारगिल की हिल्स ऑक्यूपाई करती है
1: जी।
0: पाकिस्तान वाले अपनी हिल्स ऑक्यूपाई करते हैं। इस कारगिल का ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान वाले विंटर्स में अपने वापस चले जाते थे और ये इंडियन आर्मी नीचे आ जाती थी, बिकॉज पूरे विंटर्स के ऊपर सोल्जर्स को उतना मेंटेन करना उस हाइट्स पे बहुत एक्सपेंसिव है। हम सियाचिन में करते हैं, हमें पता कितना करोड़ों का राशन, ऑयल, दवाई, डॉक्टर्स वगैरह, तो हम कारगिल में हम पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी नहीं करती थी। मुशर्रफ ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो पाकिस्तान ने क्या किया कि इस बारी जब धोखा दिया इंडिया को, अगस्त 1998 की बात कर रहा हूँ, कारगिल 99 की बात आपको याद होगा, 98 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जब इंडियन आर्मी अब हम नीचे उतर आए, वो लोग पीछे चले गए, हमारे आने के बाद वो लोग वापस आए अपने एरिया से, हमारे एरिया में आके हमारी हिल्स पूरी, उन्होंने हिल्स कैप्चर कर ली थी। तो वो जब कैप्चर कर ली तो हमको आहिस्ता आहिस्ता पता चला, जब फरवरी मार्च के अंदर जब हमारी पेट्रोलिंग पार्टी, अगर आपका नाम याद हो, कैप्टन सौरभ कालिया
1: जी,
0: ये सौरभ कालिया अपने 4 जाट के थे, 5 जवानों के साथ पहले पेट्रोल के लिए जा रहे थे, तो उनको कैप्चर किया था, उनको टॉर्चर करके डेथ किया गया, मतलब मारे गए थे बेचारे। और सेक्टर्स में भी हमको बाकी जो गडरियाज वगैरह, उन्होंने बताया कि आपकी तो पूरी दूसरी तरफ की आर्मी बैठी हुई है, ऐसी इंटेलिजेंस खबरें आनी शुरू हुई। तब हमें पता चला मार्च 99 में कि आर्मी, पाकिस्तान आर्मी वाले हमारे एरिया में बैठे हैं। तो हमको बोला गया कि हमारी यूनिट, हमारे कर्नल गुप्ता हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, मैं उनका 2IC था, हमको बोला गया कि आप अपने यूनिट लेके पहले बोफोर्स रेजिमेंट आप कारगिल में जाइए। हमारी 6 गन्स सियाचिन में ऑलरेडी फायर कर रही थी, 6 गन्स कारगिल में ऑलरेडी थी। रेजिमेंट हेडक्वार्टर 10-6 गनों को और बोला गया आप जल्दी से जाइए। पहली बोफोर्स रेजिमेंट थी हमने जो क्रॉस किया
1: जी। तो कारगिल युद्ध के योद्धा लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी, 1999 में जब कारगिल में तोपों ने आसमान का सीना चीर कर रख दिया, उस समय आप अपनी यूनिट के सेकंड इन कमांड थे सर, राइट?
0: एब्सोल्युटली।
1: तो आपकी ही यूनिट ने सबसे ज्यादा गोले भी दागे, और कितने गोले दागे सर, वो पूरा एक रिकॉर्ड है अपने आप में।
0: हमारे पास जो हमने कारगिल के अंदर फायर किया उस टाइम पर करीब 9,200 गोले फायर किए थे हमने। हमारी यूनिट पहली यूनिट थी बोफोर्स यूनिट जो कारगिल वॉर के अंदर गई थी, जैसे मैंने आपको बताया, छः हम ऑलरेडी छः गनें हमारी सियाचिन में थी और छः गनें कारगिल में थी, तो वो भी लगातार फायरिंग कर रही थी। तो टोटल दो साल में तो हमने 18,000 गोले फायर किए, ये रिकॉर्ड है। आज तक किसी ने पहले नहीं किया था, बाद में नहीं किया, पर ड्यूरिंग कारगिल वॉर हमने 9,200, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हमारी सारा दिन सारी गनें

0: करती है, हम पास में बैठे होते हैं तो हम बहरे हो चुके थे अभी भी, बल्कि हमारे को फिजिकली इफेक्ट हुआ है। आप गनर्स और आर्मर्ड कोर ऑफिसर्स को देखोगे या जवानों को देखोगे, उनका हार्ड ऑफ हियरिंग हो जाती है टुवर्ड्स एंड जाके, तो हमने लगातार फायरिंग किया।
1: तो वो सर जो मोमेंट्स रहे हैं वो भी अपने आप में, जैसे आपने बताया कि वो आपके सामने सब कुछ हो रहा था, वो वॉर जोन में जब आप थे, तो वो जो कारगिल का जो एक्सपीरियंस आपका था उसके बारे में कुछ बताइए, कुछ जो सिचुएशंस थी वो क्या थी उस वॉर जोन में। और एक चीज और भी थी जो मैं जानना चाहता था आपसे, मैंने जो आपसे पूछूंगा कि व्हाट वर द रेड हिल्स, रेड हिल्स क्या है?
0: मैं बताता हूं। ऐसा है कि आप जल्दी से संक्षेप में बताता हूं, तो हमने कारगिल क्रॉस किया था इन द मंथ ऑफ मई, जबकि पूरी जुवीला पास 15-16 फीट बर्फ थी। हमको बोला गया था अभी निकलो वहां से, बॉर्डर रोडवेज काट रही थी बर्फ और हमारी गने आगे जा रही थी, फर्स्ट रेजिमेंट टू गेट इनटू द कारगिल। जब हम द्रास पे पहुंचे तो वहां पर कमांडर उस एरिया के आके हमको बताया, ये तो सब एरियाज में पाकिस्तानी लोग बैठे हुए। हम लोग सब हैरान हो गए, उन्होंने हमको मैप दिखाया तो सब हिल्स के ऊपर, हमारी जो हिल्स है इंडिया के हिल्स के ऊपर, पाकिस्तानी आके बैठे हुए थे। तो हमने पूरा का पूरा मैप रेड था।
1: अच्छा,
0: हमारे डॉक्टर क्यों खड़े हो गए कि हमारी सब हिल्स जो हमारी हैं, टाइगर गोल्ड हो या 5.1540 हो या अदर हिल्स, सब हमारी हिल्स पे पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो उनको निकाला और अगले दिन हम ओपन में बैठे हुए हैं जैसे हमारी बाकी सोल्जर्स और ऑफिसर्स बैठे हैं, तो पता चला वहां से पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू कर दी हमारे एरिया से। सो हमारे को तब बहुत पता चला कि हमको ये तो बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है।
1: इसलिए वो जो चूंकि ऑक्यूपाइड थी चारों तरफ से हमारी ही हिल्स,
0: हमारी
1: हिल्स, उनको रेड हिल्स का नाम दिया गया।
0: मैंने रेड हिल्स का नाम दिया थी, मैंने बोला है कि उनको पूरा रेड मार्क था मैप के अंदर, पूरा एरिया पूरा हिल्स रेड मार्क थे। रेड मार्क्स मीन एनिमी,
1: एनिमी
0: और ब्लू मीन्स हम। अगर वो सारी रेड थी तो इसका मतलब एनिमी हमारे एरिया में बैठा हुआ है, दैट्स व्हाई आई वाज कॉलिंग रेड।
1: सर वहां की कोई ऐसी आपके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा हुआ है जो आपको आज भी याद आता हो, कोई ऐसी याद उस मोमेंट की, उस वॉर जोन की, कारगिल वॉर की?
0: ऐसा है कि मतलब हमको ये था कि जैसे रोड क्रॉस, हमने दराज से हमको कारगिल जाना था और बीच में पाकिस्तानी पोस्ट हमारी रोड्स को देखती थी, मतलब रोड देख रही थी, और गन्स हमारी इतनी बड़ी बड़ी बोफोर्स गन को लेके जाना, तो हमारे जो ऑफिसर्स जवान्स को लेके जाना रात को, उनको तो पता था पाकिस्तानी यही रोड है, ऊपर एक ही रोड थी ऊपर जाने के लिए, उन गन्स को बिना आवाज़ किए उस रोड से क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम था। और मतलब
1: यानी कभी भी कोई भी अटैक आप पर हो सकता
0: होता था, वो फायर करते थे।
1: अच्छा,
0: इसीलिए कोशिश होती थी रात को जाओ, रात को जाओ तो दिखाई नहीं देता था, दिखाई दे तो मतलब ऐसा है कि इतनी चौड़ी गन, या छोटी गन तो है नहीं, छोटी सी गाड़ी, छोटी सी रोड पे, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें तो थी नहीं, मेरा मतलब टाइम वो बहुत टफ था। पर हर बंदे में इतना जज्बा था और हमको बोला गया कि जैसे पता चला ज्यादा बुरा हाल है तो आप आगे चलिए, और बोफोर्स की यूनिट और आ रही है, हमारे बाद 9 यूनिट और आई, तो ग्रेजुअली हम लोग आगे आगे ग्रेजुअली सेटल होना शुरू हो गया। तो उन्हीं दिनों में हमारे को पता चला इस जगह से बहुत ज़्यादा फायरिंग हो रही है, तो हमारी बोफर्स ने वहीं से दराज से एंगेज किया। तो पहले कुछ दिनों के अंदर 16 से 19 मई की बात है, हमने 17 पाकिस्तानी सोल्जर उन दिनों में मार दिए, उन दिनों में उनका कैजुअलिटीज कर दी।
1: अच्छा,
0: और जहाँ से फायर आ रहा था मीडियम मशीन गन थी उसको भी उड़ा दिया, और मतलब पहले दिनों में कितनी सक्सेस मिल गई, फिर आगे आगे करके तो बहुत सक्सेस मिली।
1: तो मतलब जाहिर है जो सोल्जर्स जो जवान थे उनका जोश पूरी तरीके से हाई था और वो पूरी तरीके से दुश्मन को खदेड़ने के लिए तैयारी करके गए थे कि अपनी सरहदों से उनको बाहर निकाले।
0: शायद जी मैं आपको बताना चाहता हूँ जल्दी से बात की, ऐसा है कि हर हिल्स के ऊपर
1: जी
0: इन्फेंट्री अटैक जाता था पूरा प्लानिंग से जाता था, पूरा ब्रिगेड डिवीजन सब प्लानिंग होती थी, आज इस हिल को हमने पाकिस्तानी पे अटैक करना है, तो इन्फेंट्री बटालियन को काम दिया जाता, तो वो हिल्स होती है ऊपर, जवानों ने फायर जाना है ऊपर अटैक करना है, बहुत मुश्किल होता है नीचे से ऊपर अटैक करना, कोई ऊपर बैठ के अगर पत्थर भी फेंकेगा ना आपको चोट लगेगी बहुत बुरी तरह। हमारे जो ऑफिसर्स जेसीओ जवान वो ऊपर फायर करते थे, हम लोग क्या करते थे बोफोर्स या और आर्टिलरी यूनिट्स पहले उस जगह को पूरा पल्वराइज करते थे, उसको पूरा हम दबाते थे ताकि इतना फायर करते रहे कि पाकिस्तानी बाहर आके ओपन हमारे पे लोगों फायर ना कर सके। हमारे लोग चल रहे हैं ऊपर से हम फायर करते जा रहे हैं, तो पहले उनके पास पहुंचने से पहले हम आर्टिलरी फायर उठाते थे तब वो हमारे लोग अटैक करते थे। तो ऐसे होता था कि हर पता चल जाए आज यहाँ इस हिल पे फायर जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, इस हिल पे अटैक जा रहा है, तो हम वेट ही करते रहते थे क्या हुआ, क्या सक्सेस सिग्नल हमारे जो लाइट जो वेट कर रहे थे। अच्छा, कि हमको सक्सेस मिला है कि नहीं
1: जी।
0: दिस वाज एवरी डे लाइक ए वॉर, एवरी डे।
1: और सर ये लगातार बहुत दिन
0: ये लगातार चलता रहा, ये मतलब जून तक एंड तक चलता रहा।
1: और सर इस

0: ईमान जो फौजियों का जो मनोबल था सिपाहियों का
1: बहुत हाई था, बहुत हाई था, बहुत हाई
0: था। तो सर वो फिर कैसे कनेक्ट रहते थे, जैसे परिवार से तो फिर जाहिर है याद आती है, तो कोई चिट्ठियां या कोई कम्युनिकेशन कैसे करते थे?
1: ऐसा है, हमारे को ना हफ्ते में एक बार फोन मिलता था, थोराया फोन मिलता था, थोराया सैटेलाइट फोन है,
0: तो कुछ अच्छा स्पेशल फोन होता,
1: स्पेशल थोराया फोन एक आया, एक यूनिट में आता, आप अपनी फैमिली में एक हफ्ते में एक बार बात कर सकते। हमारी फैमिली तो सारी बाप बाप वाइफ बच्चे सारे टीवी से जुड़े होते थे, शायद कुछ खबर आ जाए, मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे उन जमाने में, तो थोराया फोन मिलता आपको हफ्ते में एक बारी बात करने के लिए, कुछ मिनट के लिए अपनी फैमिली से बात करते थे, वो सुन लेते थे, माँ बाप आवाज फैमिली सुन लेते, को अच्छा लगता। इधर से चिट्ठियां इतनी आनी शुरू हो गई, शायद ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, पूरा देश ये टीवी की लड़ाई थी, आपको पता ये टीवी की लड़ाई थी, टीवी में सब दुनिया देख रही थी लड़ाई, तो लोगों ने इतनी चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी, मिठाइयां भेजनी शुरू कर दी सोल्जर्स के लिए, अच्छी अच्छी चीजें, पर उन्होंने क्या हुआ, सामान ऊपर आना शुरू हुआ तो ट्रैफिक जाम होना शुरू हो गया, जहां हमको एम्यूनिशन चाहिए था गाड़ियों का, वहां पर चिट्ठियों वाले ट्रक रोके, फिर उनको रोकना पड़ा।
0: अच्छा, तो सर ये फिर मोमेंट, मतलब जाहिर है जो सोल्जर है वो फ्रंट पर है, लड़ रहा है दुश्मन से, तो उसको भी थोड़ा मोटिवेशन तो चाहिए,
1: बहुत मोटिवेशन, बहुत मोटिवेशन, मतलब हर छुट्टी तो सबकी कैंसिल
0: थी, तो कैंसिल सब।
1: मैं आपको बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरे दिमाग में जो आया है, एक हमारे यूनिट के अंदर एक आदमी आया हमारे पास, कमांडिंग ऑफिसर साहब के पास, कि कहता है कि सर मुझे छुट्टी जाना है, लड़ाई चल रही है, छुट्टी जा रखे थे, सब मजाक कर रहे थे, तो छुट्टी मांग रहा है इस टाइम पर लड़ाई में, कहता बहुत जरूरी बात है, मेरी माँ बहुत बीमार है, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने बोला भी इतनी बात है तो चले जाओ भाई, कारगिल से बेचारा श्रीनगर आया, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से आगे, जम्मू से आगे घर गया, चार पांच गया था 15 दिन के लिए, चौथे दिन में हमने देखा वापस आ गया यूनिट के अंदर, हमने पूछा तुम वापस कैसे आ गया, कहता साहब मैं गांव पहुंचा, बहुत जूते पड़े मेरे को मेरे को गांव वालों ने इतने जूते मारे, कहते पूरी लड़ाई लड़ रहा देश और तुम घर में अपनी माँ के लिए, तेरी माँ को हम संभालेंगे, तो वो अपना देश के लिए लड़।
0: क्या बात है सर, क्या बात है।
1: और मेरे साथ हुआ शाहिद जी, मेरे साथ हुआ ऐसा, मिसिस चोना मेरे बच्चों के स्कूल की प्रिंसिपल थी आरकेपुरम की, उनकी मुझे चिट्ठी आई कि कर्नल साहब आप देश के लिए लड़िए, बच्चे मैं आपकी संभालूंगी, मिसेस चोरा ने मेरे को चिट्ठी लिखा।
0: सर ये है, मतलब ये जो जज्बा देशवासी,
1: पूरा देश आपके साथ खड़ा,
0: अपने सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ,
1: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ,
0: बिल्कुल। सर आपने बात की चिट्ठियों की,

0: है, मतलब ये जो ना जज्बा देशवासी
1: पूरा देश
0: का
1: आपके साथ खड़ा
0: अपने
1: है,
0: सिपाहियों के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ,
1: पूरा खड़ा होता है देश आपके साथ।
0: बिल्कुल। सर आपने बात की चिट्ठियों की, कम्युनिकेशन की, के सोल्जर्स को, सिपाही को जब घर से कोई चिट्ठी आती है या वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो उस पर क्या असर होता है। मुझे था ये जहन में कि मैं ये गाना चलाऊंगा और आपकी पसंद का भी यही है।
1: थैंक यू वेरी मच।

0: 1.6 नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स चल रहा है. मेरे साथ मेरा नाम है शाहिद और हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल नंदा जी. सर, हम कारगिल वॉर पर बात कर रहे थे और हम वहां पर आपकी बातों में लग रहा था जैसे हम उसी मोमेंट पर उसी वॉर जोन में पहुंच गए हैं. तो सर, कुछ ऐसी यादें भी हैं जो आपको आज भी कुछ खूबसूरत यादें भी हैं. जाहिर है सब बहुत ही वो जो टेरेन था, वो जो सिचुएशन थी, वो बहुत अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी कुछ यादें आपके साथ जुड़ी
1: हैं. बिल्कुल है. मेरे को बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि उस एरिया में जो कमांडर साहब थे हमारी यूनिट के, बहुत काबिल ऑफिसर ब्रिगेडियर देविंदर सिंह जो 70 ब्रिगेड कमांड कर रहे थे, उन्होंने का बहुत बड़ा सहयोग रहा है कारगिल वॉर में. बटालिक सेक्टर के कमांडर थे, बहुत बड़ा बढ़िया काम किया हमारी यूनिट में. उनको पूरा का पूरा सपोर्ट किया, अपनी ही उनकी अपनी यूनिट थी. तो हमारी यूनिट 307 मीडियम ने बहुत अच्छा काम किया कारगिल के अंदर और पूरा अपने कमांडर साहब को भी पूरा सपोर्ट दिया. प्लस उसके वॉर के अंदर हमारे कई ऑफिसर्स को अवार्ड्स भी मिले. एक हमारे कैप्टन साजू चेरियन है, उनको सेना मेडल मिला. एक मेजर दैया, उस टाइम मेजर दैया, बाद में कर्नल दैया, उनको और एक सी विजयन को मेंशन इन डिस्पैचेस मिले. मेजर झुलका मिला, उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिला. एक कैप्टन अतुल है, उनको GOC NC कमेंडेशन कार्ड मिला. हमारी खुद यूनिट को नदर कमांड आर्मी कमांडर का कमेंडेशन कार्ड मिला. तो हमारी काफ़ी यूनिट ने काफ़ी अचीवमेंट की,
0: बहुत अचीवमेंट,
1: बहुत अच्छा काम किया.
0: बिल्कुल सर, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं. आपने ये जो सर्विस दी अपनी एज एन हेलीकॉप्टर पायलट और फिर उसके बाद आपने कारगिल वॉर में भी जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी, उसके बाद सर फिर आपने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के लिए भी काम किया तकरीबन 5 साल और उससे ज़्यादा. तो उसके बारे में थोड़ा सा
1: मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में मैंने 5 साल काम किया और मैं काफ़ी अच्छे काम किया. मैंने डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड प्रोसीजर्स में मैंने काम किया. DPP 2006 में मैंने बनाई है प्रोसीजर, बैठ के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमने पूरे प्रोसीजर्स बनाए प्रोक्योरमेंट वगैरह के बाद. प्लस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन में था तो मैं डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन वगैरह के साथ, इन लोगों के साथ मैं आउट ऑफ कंट्री भी बहुत ट्रैवल किया. जितनी बड़ी बड़ी वर्ल्ड की एग्जीबिशन, जितनी नेगोशिएशंस विद पब्लिक सेक्टर कंपनीज और पूरा के पूरा हम लोगों ने काफ़ी काम किया. 5 साल का बहुत मुझे अच्छा एक्सपोजर मिला. उसकी वजह से फॉरेन कंपनीज ने भी मेरे को देखा कि मैंने अच्छा काम किया, तो उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया. फिर मैंने उसके बाद फिर फॉरेन का अपनी, क्योंकि दिल्ली छोड़ने का मेरी मजबूरी थी, आर्मी छोड़ने की. अच्छा. दिल्ली में ही रहना था, बच्चे छोटे थे तो मेरे को, इसलिए फिर मैंने आर्मी छोड़ी और फिर मैंने प्राइवेट सेक्टर में आ गया. मैं जॉब शुरू किया
0: आपने. फिर सर आपने कोविड के दिनों में भी बहुत लोगों की हेल्प करी और आगे बढ़ करके मदद करने में, ब्लड डोनेशन में, उनको राशन और बाकी चीज़ों में भी. तो वो किस तरीके का एक्सपीरियंस था उस दौर में, बहुत ही एक डर वाला जो माहौल बना हुआ था?
1: आपने शायद, मैं बताता हूँ, मेरे ना 15 साल ये जब मेरी जॉब ख़त्म करने के बाद मैं अपने, जब मैंने बोला अभी बहुत हो गया, बस 40 साल में ही नौकरी कर ली है, अभी थोड़ा बहुत समाज सेवा भी करनी चाहिए. समाज सेवा हमारे पूरे खानदान में, मेरे फादर, मदर, मेरी बहनें, ब्रदर बहुत समाज सेवा करते हैं अपने अपने लेवल पे. हम, मैंने सोचा हम कुछ समाज सेवा करना चाहिए. तो मैंने RW का एक जो जरिया मिला जिसकी मदद में हमने RW में आया और RW में लोगों के साथ जुड़ना शुरू किया, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम ठीक करनी शुरू की. फिर कोविड का टाइम आ गया. कोविड के टाइम पर ऐसा था जो कोई घर से नहीं निकलना चाहता था. हम लोग कुछ थे जो RW के मेंबर्स थे, वो पूरे दिल से, पूरे जोश से घर से निकलते थे. पूरी इतनी हमारी बहुत बड़ी कॉलोनी है, उस कॉलोनी को पूरा संभालने के लिए हम लोग, किसी को तो आगे आना था. तो हमारे RW के सारे मेंबर्स सारे बाहर आते थे सिक्योरिटी के साथ, गेट्स को मैनेज करना किसी, और कोविड

0: ऐसी चीज थी, आदमी हर बच्चा ये चाहता मेरे माँ बाप घर से ना निकले, या
1: जी
0: माँ बाप चाहते बच्चा घर से ना निकले, पर हमारी ड्यूटी थी। तो हम लोगों को राशन पहुँचाना, लोगों को जिनको ब्लड डोनेशन, जिनको ब्लड की जरूरत, आप पता होगा ब्लड की इतनी शॉर्टेज हो गई थी,
1: बिल्कुल
0: हॉस्पिटल बेड्स की इतनी शॉर्टेज थी। हमारी कॉलोनी में हम हमारे RWA ने ऑक्सीजन बॉटल्स तक किया, अपना एक टेम्प्रेरी कैंप लगाया, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मिलकर काम किया,
1: जी
0: लोगों के राशन बांटे, किसी ओल्ड एज पीपल को और कपल को, किसी को या किसी सीनियर सिटीजन को किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन, खाना पीना, हम उनके घर में पहुंचाते थे। तो बहुत सेवा की। तो उससे
1: जी
0: क्या, मैं एक के बाद मैं 3 टाइम मैं RWA में लगातार आता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार बना हुआ है, तो मुझे
1: जी
0: चाहते भी हैं कि मैं
1: और
0: वापस आऊँ। तो
1: सर,
0: RWA,
1: उनका प्यार और आपकी सेवा लगातार अभी भी बने हुए हैं, आप अभी भी लगातार सेवा कर रहे हैं।
0: हाँ जी, वो चाहते हैं मैं जुड़ा रहूँ तो मैं जुड़ा हूँ, जब
1: जी
0: चाहेंगे नहीं होंगे तो मैं बाहर चला
1: लेकिन
0: जाऊंगा।
1: सर, आपने इतना सब जो अपने पूरे करियर में किया, वो मतलब बड़े अचीवमेंट्स हैं, वो बहुत ही रिमार्केबल हैं, लैंडमार्क्स हैं वो। तो इसमें सर आपकी फैमिली का भी जरूर सहयोग और सपोर्ट और हेल्प रही होगी, किस तरीके से आपको वो लगातार इन सब चीज़ों के लिए, भले ही वो वार जोन में आप थे तब, आपके पेरेंट्स, आपके
0: हाँ
1: ब्रदर
0: जी,
1: सिस्टर्स और
0: मेरे
1: अब
0: माँ
1: आपके,
0: बाप, बहन
1: जी
0: भाई, मेरे मतलब मेरी वाइफ रश्मि, मेरे
1: जी
0: 3 बच्चे लड़के
1: जी
0: हैं, 3 बच्चे हैं, अंकित, शिवेन, और मेरी बेटी साहिबा है, और मेरी
1: जी
0: डॉटर रिलोदृषिका है। हम सब ने मतलब पूरा का पूरा, क्योंकि मैं ये काम करता था तो वो पीछे से सपोर्ट करते हैं,
1: बिल्कुल
0: अपनी
1: बिल्कुल
0: तरफ से जो वो कर सकते हैं वो करते हैं, मेरे को सबकी सपोर्ट है, उन लोगों की।
1: बिल्कुल सर,
0: तो आई एम क्वाइट अ
1: जाहिर ही
0: ब्लेस्ड मैन।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो सपोर्ट होती है खासतौर पर फैमिली की, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है और वही आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देती है।
0: एब्सोल्युटली
1: तो यहाँ पर सर मैं अभी, तो हमारे पास जो समय बहुत कम बचा है, लेकिन फिर भी चलते चलते ये जो मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं ज़रूर मैं आपसे शेयर कर
0: हाँ
1: दूँ।
0: जी, हाँ जी,
1: ये टेक्निकल ग्रेजुएट हैं, ये कहते हैं कि सर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रेजुएट, विच ब्रांच ऑफ आर्मी कैन आई ज्वाइन?
0: ही कैन ज्वाइन एवरी ब्रांच एज ए इंजीनियर, ही कैन ज्वाइन एज ए टेक्निकल, व्हेन ही
1: ओके
0: कम्स एज देयर इज अ स्पेशल कॉल्ड टेक्निकल ब्रांच इन द आर्मी, ही कैन अप्लाई फॉर दैट,
1: ओके
0: एंड एज ए इंजीनियर ही कैन ज्वाइन दैट ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच।
1: राइट सर। और सर ये मैसेज है मंसूर अली का बीकानेर से, और ये आपको नमस्कार करें। नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: और ये हैं कर्नल अभिनंदा इज वेरी हम्बल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल, सल्यूट टू हिम, रिगार्ड्स। विनोद तायल है सर, ये डीएलएफ
0: हाँ
1: गुड़गांव
0: जी,
1: से। प्लीज एयर दिस मैसेज ऑन योर FM, आई एम ऑनलाइन, थैंक्स,
0: थैंक यू वेरी मच विनोद
1: ब्रावो
0: जी,
1: कर्नल नंदा, वाह वाह कर्नल नंदा, ग्रेट ऑफ यू।
0: थैंक यू वेरी मच विनोद
1: जी,
0: जी।
1: मल्टीपल मैसेजेस इन्होंने किए सर आपकी तारीफ में। और
0: नहीं,
1: ये हैं
0: तारीफ
1: सर
0: क्या था, आपस का
1: जी,
0: प्यार है सबका ही।
1: बिल्कुल सर। ये सर हैं डॉक्टर दीपक जोशी।
0: ओके
1: सर ये अच्छा, ये शायद रेडियो डॉक्टर के लिए मैसेज कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट चाहते हैं। और ये
0: ओके
1: है सर, नमस्कार, जय हिंद यशवंत, आडमुटे हैं धाराशिव महाराष्ट्र से सर ये।
0: हाँ सब जी,
1: और सर ये है, हमारा देश का फौजी भाइयों की हमेशा सैल्यूट, और देश हित देशरत ना रचने के लिए उनका जीवन त्याग में जीवन है, बहुत प्यार से सैल्यूट करता हूं मैं। कर्नाटक स्टेट विजयपुर डिस्ट्रिक्ट अराकेरी गांव से पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरावद। तो सर
0: सरावत
1: ये
0: साहब, थैंक यू,
1: जी, ये आपको सैल्यूट करते हैं
0: थैंक यू
1: और
0: सर,
1: कहते हैं, सोल्जर भाइयों का हमारा सैल्यूट, हमारा भारत माँ के रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान का, श्रेष्ठ जीवन का संदेश है।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: और सर ये एक और मैसेज मैं पढ़ दूं, फिर इसके बाद समय बिल्कुल खत्म। मेरी तरफ से सभी सोल्जर्स को जय हिंद जय भारत, रंजीत मस्ताना, रायबरेली।
0: थैंक यू
1: तो
0: रंजीत
1: सर
0: जी,
1: ये सब बहुत ही प्यार भरे मैसेज आपके लिए, प्यार

100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मौसम का ये गीत। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीतकार गुलजार, संगीतकार हैं मदन मोहन।

लीजिए अब सुनिए फिल्म साजन का गीत, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की, गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रमण।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। इसके अंतर्गत सुनिए पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार। हमारी जिंदगी के जितनी यादें हैं उनका आईना बन जाती है कुछ आवाजें। प्यार के सुर सुनते हैं उनसे तो कहीं खुशियों की धुन सुनाई देती है तो कहीं जुदाई के एहसास, जिनमें से एक आवाज आज हमारे बीच भी उपस्थित है। लंबे अंतराल के बाद चुनौतियों का सामना करते हुए आज वो हमारे बीच है, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है जिन्होंने न केवल हमारी जिंदगी को सुरों से सजाया है बल्कि उन्होंने संगीत की एक विरासत भी देश को दी है। इसीलिए उनके तुलनीय योगदान को देखते हुए देश ने भी उन्हें पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा है। हमारे साथ हैं सुर साम्राज्ञी पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक।

0: अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: और आपको ढेरों बधाई, पद्म भूषण का सम्मान मिला है आपको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इतने पुरस्कार तो आपको पहले ही मिल चुके हैं अलका जी, लंबी फेहरिस्त है, उनके बीच पद्म भूषण का सम्मान आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत बड़ा मायने रखता है। सरकार की तरफ से अगर किसी कलाकार को अप्रिशिएट किया जाए तो उसमें बात ही और हो जाती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी सरकार का जिन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा है।
0: आपसे मैं अब वो सवाल पूछने वाली हूँ जिस सवाल को मुझे लगता है हर आपका प्रशंसक, आपके फैंस पूछना चाहते हैं। अलका जी कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ और अपने फैंस के लिए मैं आज सामने हूँ। मुझे बहुत से मैसेजेस आए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं सब और बहुत मुबारक दे रहे हैं मुझे बार बार।
0: जी बिल्कुल, मेरे को लगता है पूरा देश मुबारकबाद देना चाहता है क्योंकि आपने ना इतने दौर कवर किए हैं, इतने दशकों से आप गा रही हैं कि मुझे लगता है कि हर किसी की यादों में कहीं ना कहीं कोई गीत ऐसा होता ही है जो अलका जी से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में अलका जी, अब जब आपकी जिंदगी का इतना बड़ा अवसर है आपके सामने, आपको पद्म भूषण मिला है और ये जश्न का अवसर है, ऐसे जश्न के वक्त में अलका जी का क्या मन करता है कि कौन सा गीत है जो आपकी भावनाओं को दिखाता है?
1: मेरा अपना गीत तो मुझे ध्यान नहीं है,
0: कोई भी गीत, कोई भी,
1: लता जी का गाना है आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे।
0: क्या बात है,
1: बोलो देखा है कहीं तुमने मुझे उड़ते हुए?
0: और हम आपको उड़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन आपने अगर, क्योंकि ये कैसा पड़ाव होता है ना अलका जी, जब आप मुड़कर देखते हैं कि मतलब मुझे पद्म भूषण मिला है तो जिंदगी में मैंने क्या क्या हासिल किया, आपने इतनी शोहरत, इतना प्रेम हासिल किया है, प्यार

0: हासिल किया है सबका, किसको देती है इसका श्रेय?
1: इसका श्रेय मैं देती हूँ अपने माँ। मम्मी मेरी गुरु रही हैं, क्लासिकल सिंगर थी, क्लासिकल गाती थी, और मेरा झुकाव जो था वो लाइट की तरफ था थोड़ा, तो उन्होंने मुझे वैसे भी ट्रेन करना शुरू किया क्लासिकल म्यूजिक में, ताकि उसको जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं लाइट की फील्ड में, उस हिसाब से उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तो बस वो होती है आज तो बहुत खुश होती हैं।
0: वाकई बहुत खुश होती हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है आपका हाथ पकड़ कर वही आपको मुंबई तक लेकर गई, उन्होंने ही आपके सफर को आगे मुंबई तक पहुँचाया था। तो आपको याद है वो यादगार पल जब राज कपूर जी से मिले आप, लक्ष्मीकांत जी से, कल्याण जी, इन सब ने आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना?
1: हाँ, किया तो है। मैं जब बॉम्बे आई तब मैं बहुत छोटी सी थी और मम्मी पापा मेरे साथ रहते थे, और हर दिन उनकी छत्र छाया में मैंने गाने गाए और लोगों ने सुने।
0: और लक्ष्मीकांत जी ने आपका हाथ थामा, उसके बाद शायद आपको एक और ऊंची उड़ान के पद मिले।
1: हाँ, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो जब मैं आई उस लाइन में तब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बहुत बड़ा एक नाम था, तो उन्होंने मुझे सुना, पसंद किया और अच्छे अच्छे गाने दिए गाने को। एक दो तीन जैसे था, बहुत पॉपुलर हो गया था, एक के बाद एक
0: गाने आते गए और आप गाती गई। लेकिन सोचिए 1980 में आपने अपना पहला गाना गाया ना, उसके बाद अब तक तो कितने दौर की अभिनेत्रियां हैं जिनके लिए आपने गाया। कौन सी ऐसी अभिनेत्रियां थी जो आपकी आवाज, कहते थे कि आपकी आवाज उन अभिनेत्रियों पे सबसे सटीक बैठती है, जैसे आपको माधुरी की आवाज तो कहा ही जाता था।
1: मेरी आवाज मुझे लगता है कि सबसे अच्छी माधुरी दीक्षित पे बैठती है, और जूही चावला, रानी मुखर्जी, एक्चुअली सभी के लिए गाया है मैंने।
0: बहुत से गायकों के साथ भी आपने गाया है, कभी आपको अपने आपको रीइन्वेंट करने की कोशिश करनी पड़ी?
1: नहीं, कभी ऐसी कोशिश नहीं करनी पड़ी। गाया तो मैंने सब सिंगर्स के साथ है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यादगार जो है वो है किशोर कुमार के साथ गाए हुए गाने, और कुछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ी। मैं बस आती थी, गाना सीखती थी और दिल से गाती थी।
0: अच्छा, अगर गायकों की मैं बात करूं, आपने बहुत सारे लेजेंड्स के साथ गाया है, मतलब सोचिए लता दी, आशा ताई, किशोर दा के साथ साथ आपने उदित नारायण कुमार, सानू तक, सबके साथ ही गाने गाए हैं। इन सबके साथ गाते हुए कौन से ऐसे गायक हैं जिनमें आपको लगता है सीखने को बड़ा कुछ मिला?
1: किशोर कुमार।
0: कोई वाक्य याद है?
1: नहीं, वो बहुत हंसमुख थे और हंसाते रहते थे हर वक्त, रिकॉर्डिंग के टाइम भी कुछ कुछ ऐसी बातें करते थे कि हंसते हंसते गला बैठने लगता था। फिर बोलना पड़ता था कि किशोरदा इतना हंसाइए मत, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे।
0: जाहिर है, लेकिन आप जो छोटी सी 10 साल की अलका थी जो मंच पर खड़ी हुई थी और इतनी तालियां मिली थी आपको उस परफॉर्मेंस में जब आपने परफॉर्म किया था।
1: हाँ, मैं कुछ 10 साल की थी तब, एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं बलसारा करके, वी बलसारा, उनके साथ मैंने स्टेज पे गाना गाया था।
0: अच्छा अलका जी, आप मुझे लगता है कि जब भी कोई बहुत अच्छा गाती है ना तो उनके बच्चों को बहुत फायदा होता है, क्योंकि बहुत अच्छी लोरियां सुनने को मिलती हैं। आप साइशा को क्या लोरी सुनाती थी?
1: साइशा को मैं लोरी तो नहीं, मगर वो जो गाना है लता दीदी का, मेरे घर आई एक नन्ही परी,
0: अच्छा,
1: वो फिर गाती थी मैं उनके लिए, उसकी बर्थडे पर मैं हमेशा खास तौर से गाती थी।
0: फैमिली के लिए टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता था? इतना व्यस्त रहता था आपका कार्यक्रम।
1: ऐसा था कि मम्मी और पापा दोनों का, उनका बहुत सॉलिड सपोर्ट था, तो वो लोग काफी कुछ संभाल लेते थे, तो उनकी वजह से मैं कर पाती थी काम।
0: कोई आपका ऐसा गाना है जो आपको लगता है कि ये गाना मेरे को जब भी मन करे मैं गा सकती हूँ, एनी टाइम?
1: एक दिन आप ही हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था।
0: अभी तक रैपिड फायर करते हैं, एक कंपोजर, कोई एक ऐसे संगीतकार जो इनके साथ आप आज भी गाना पसंद करेंगे किसी भी दौर का?
1: आई थिंक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
0: ओके, क्लासिकल म्यूजिक या फिल्म म्यूजिक?
1: फिल्म म्यूजिक।
0: स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो रिकॉर्डिंग?
1: स्टेज परफॉर्मेंस।
0: ओके, एक सॉन्ग कोई भी कभी का भी जो आपको लगता है कि काश मैंने गाया होता, किसी और का गाया होता?
1: जी, ये गाना जैसे है, मेरे घर आई एक नन्ही परी, मैंने नहीं गाया, लता दीदी ने गाया
0: जी,
1: लेकिन मैं हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि काश मैंने गाया होता ये गाना।
0: एनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, कोई स्टेज की मेमोरेबल परफॉर्मेंस जो आपके जहन में आ रही हो?
1: अब्रॉड जो शोज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो वहाँ के जितने शोज हैं अब्रॉड के वो मुझे सब यादगारी हैं।
0: अगर आप सिंगर नहीं होती तो क्या होती?
1: सिंगर नहीं होती तो हाउसवाइफ होती, नॉर्मल।
0: सीरियसली?
1: हाँ, ऐसा कुछ शौक नहीं था कि मैं सिंगर बनूं या कुछ, मैं यूं ही गाती थी। मेरी जो मम्मी थी उनको लगा कि इसमें कुछ खासियत है, खास बात है इसकी सिंगिंग में, तो इसको

0: बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए कुछ करना चाहिए।
1: मुझे लगता है कि सभी फैंस को आपकी मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने आपको आगे बढ़ाया और यहाँ तक लेकर आई हैं। अंत में पद्म भूषण को लेकर सरकार के लिए कुछ बोलना चाहेंगी?
0: सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा दिल से उनके लिए सम्मान है और इसके लिए कंसिडर किया और ये अवार्ड दिया मुझे, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैंने सोचा ना था।
1: सभी फैंस, सभी उन लोगों के लिए जो म्यूजिक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो फिल्मों में गाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या लेसन देना चाहेंगे? अपनी जिंदगी का कोई एक सबक जो आप उनके साथ साझा करना
0: ना
1: चाहेंगे?
0: फोकस रखें अपने काम पर, अपने गाने पर, रियाज पर, ये जो चकाचौंधी है उससे दूर रहें, लगन से करना चाहिए काम जो भी करना है।
1: वेल, दैट इज सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सो मच अलका जी।
0: वेलकम।
1: आई एम श्योर हमारे आपके सारे फैंस आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे, और उन सबके तरफ से और हमारी तरफ से भी आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं। फिर
0: थैंक
1: सबके
0: यू
1: बीच वापस
0: थैंक यू
1: आइए।
0: थैंक यू थैंक यू।

0: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पद्म भूषण से सम्मानित गायिका अलका याग्निक के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी ममता चोपड़ा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम DD न्यूज के सहयोग से प्रसारित किया गया।
1: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।
5: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
6: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम युवा वाणी और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त महिमा श्रीवास्तव। जी हां, आपकी माही। काफ़ी लंबे समय के बाद आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है अपने प्रोग्राम युवा वाणी में। और यकीन मानिए, आज की यह मुलाकात सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, आज की बातचीत शायद आपको अपने आप से जोड़ देगी, आपकी जड़ों से जोड़ देगी, आपको थोड़ा और संवेदनशील बनाएगी और शायद आपके करियर को लेकर एक ऐसा विचार और एक ऐसी दिशा भी आपको देके जाएगी जो आपने सिर्फ अब तक इसे एक भाषा समझकर नज़रअंदाज किया होगा। और हाँ, हमारे इस खूबसूरत बॉन्ड को और भी थोड़ा मजबूत करेगी।

तो चलिए आज की शाम को शुरुआत करते हैं एक ऐसे विषय के साथ जो हमारे घर से निकलता है लेकिन हमारे दिल तक पहुंचता है और कई बार यह हमारी पहचान भी बन जाता है। लेकिन जरा ठहरिए, शाम की शुरुआत हो उसमें थोड़ा सा मनोरंजन का तड़का ना लगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपके और अपने इस बॉन्ड को थोड़ा सा और मजबूत करते हैं। दोस्तों आज का जो मौसम है ना वो बहुत प्यारा हो गया है, रिमझिम बारिश की फुहारें हैं और ऐसे में जब दिल हमारा आपसे मिला है, हम हार्ट टू हार्ट आपसे बात करेंगे अपने प्रोग्राम युवानी में, तो ज़रूरी है कि हम आपके बीच कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आए जो हमारे सिर्फ मन को ही नहीं बल्कि हमारे दिल को, हमारे कान को, यानी कि हमारे अपनेपन को सुकून देती है। हमारा आपके साथ साथ रहेगा, हम आपसे बातें करेंगे, हम आपको बताएंगे कि भाषा सिर्फ भाषा होती है, सिर्फ अभिव्यक्ति होती है या फिर एक करियर का अच्छा विकल्प भी हो सकती है। लेकिन ज्ञान की बात को करते हैं थोड़ा सा किनारे और पहले लेते हैं हम एक प्यारा सा इंटरटेनमेंट का तड़का। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लिसन अ वेरी लवली सॉन्ग।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: हाँ जी, तो भी आपने एक प्यारा सा गीत सुना धुरंधर मूवी से। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। और अब हम आते हैं उस सवाल पर जिसका जिक्र मैंने गीत से पहले किया था। क्या भाषा भी करियर का विकल्प हो सकती है? हमारे बीच शायद बहुत से ऐसे युवा होंगे जिनसे कभी ना कभी ये ज़रूर कहा गया होगा कि भाषा पढ़ कर करोगे क्या? अच्छा, करियर बनाना है तो कुछ प्रोफेशनल पढ़ो। आज के समय में सिर्फ हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, बंगाली या दूसरी भाषाएं पढ़ने से क्या फायदा, राइट? ऐसा क्वेश्चन हम सोचते भी हैं और एक दूसरे से पूछते भी हैं। लेकिन जरा रुककर सोचिए, अगर भाषा इतनी ही मामूली चीज होती तो हजारों वर्षों से सभ्यताएं अपनी कहानियां, ज्ञान, साहित्य और संस्कृति भाषा के माध्यम से ही क्यों सहेजती? क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं है, भाषा विचार है, भाषा संस्कृति है, भाषा स्मृति है, भाषा पहचान है और सबसे महत्वपूर्ण बात, भाषा लोगों को जोड़ने की ताकत है। अगर हम बात करें भाषा और भारत की कहानी के बारे में, तो भारत को समझना होगा तो सिर्फ उसका भूगोल देखना ही काफ़ी नहीं है। भारत को समझना है तो उसकी भाषाओं को सुनना पड़ेगा। कहीं कोई माँ बच्चे को लोरी सुना रही है, कहीं कोई दादी अपनी बोली में कहानी सुना रही है, कहीं कबीर के दोहे हैं, कहीं तुलसी की चौपाई है, कहीं संगम साहित्य की परंपरा है तो कहीं गुरुबाड़ी की मधुरता है, कहीं उर्दू की नज़ाकत है। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, लेकिन भावनाएं कितनी परिचित। हमारे संविधान में भी भाषाई विविधता को विशेष स्थान मिला है और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। यानी भारत में भाषा केवल घर में बोली जाने वाली चीज़ नहीं है, यह हमारी सामूहिक विरासत का हिस्सा है। और शायद यही कारण है कि समय के साथ भाषा की भूमिका भी बदलती रही है। पहले भाषा ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम समझा जाता था, लेकिन फिर यह शिक्षा और साहित्य का आधार बना। आज पत्रकारिता, प्रकाशन और प्रसारण की दुनिया में भाषा का अपना एक अलग स्थान है। भाषा तकनीक की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है भाषा और आज का डिजिटल दौर। जरा अपने आसपास देखिए, आज हम वीडियो देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। उस वक्त जो हम ऐप इस्तेमाल करते हैं और आजकल जो AI का है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम बातचीत करते हैं,

ये सब कुछ भारत जैसे बहुभाषी देश में एक बहुत बड़े सवाल के रूप में सामने आता है। क्या डिजिटल दुनिया हर भारतीय तथा उसकी अपनी भाषा में पहुंच सकती है? इसी जरूरत के बीच भाषा और तकनीक का रिश्ता तेजी से मजबूत हुआ है। भारत सरकार का भाषिणी प्लेटफॉर्म भारतीय भाषाओं के लिए ट्रांसलेशन, स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच और उसके साथ ही साथ लैंग्वेज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसके प्लेटफॉर्म पर हम स्टार्टअप, डेवलपर्स, लैंग्वेज एक्सपर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट सेक्टर जैसे अलग अलग समूहों के लिए भागीदारी के अवसर भी मिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में भाषा जानने वाला व्यक्ति सिर्फ भाषा का विद्यार्थी नहीं रहेगा, बल्कि वह ट्रांसलेटर हो सकता है, कंटेंट राइटर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, सबटाइटल एक्सपर्ट हो सकता है, वॉइस आर्टिस्ट हो सकता है, लैंग्वेज ट्रेनर हो सकता है, लोकलाइजेशन स्पेशलिस्ट हो सकता है और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में AI और लिंग्विस्टिक डेटा से जुड़े काम भी कर सकता है। एक जरूरी बात और, भाषा अकेले केवल भाषा नहीं है, बल्कि भाषा का प्रारूप पूरा होता है भाषा कौशल के माध्यम से। लेकिन यहाँ मैं युवाओं से एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहूंगी और मैं ये कहना चाहूंगी कि जरा सोचिए, मुझे हिंदी आती है इसलिए मुझे नौकरी मिल जाएगी? शायद पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है लैंग्वेज के साथ टेक्नोलॉजी की, लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन की, लैंग्वेज के साथ कंटेंट की और लैंग्वेज के साथ मीडिया और आज के युग में तो AI की भी। यानी आपकी भाषा आपकी बुनियाद हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर आपको अपने कौशल की एक मजबूत इमारत बनानी होगी। अगर आपको हिंदी आती है और आप वीडियो एडिटिंग भी जानते हैं तो आप हिंदी डिजिटल कंटेंट की दुनिया में जा सकते हैं। अगर आपको कोई भारतीय भाषा आती है और साथ में ट्रांसलेशन टूल्स तथा AI टूल्स का आपको ज्ञान है तो आपका काम केवल एक शहर तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आपकी भाषा अच्छी है और आपकी आवाज़ मेरी तरह थोड़ी प्रभावी है तो रेडियो, पॉडकास्ट, वॉइस ओवर और ऑडियो कंटेंट के लिए आप नए रास्तों के आयाम खोल सकते हैं। अगर आपकी भाषा अच्छी है और आपको लेखन आता है तो जर्नलिज्म, पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया पर क्रिएटिव राइटिंग जैसे तमाम क्षेत्र आज आपके लिए उपलब्ध हैं। और अगर आपको किसी भारतीय भाषा के साथ दूसरी भाषा की भी अच्छी तरह से जानकारी है तो आप ट्रांसलेशन और लोकलाइजेशन जैसी सेवाओं में अपनी अहम भूमिका को निभा सकते हैं। यानी कि आज हमारे बीच भाषा के हमें बहुत सारे प्रारूप देखने को मिलते हैं और इन प्रारूप के माध्यम से आप ना केवल अपनी मनी को, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप अपने स्किल को भी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में जितना ज़रूरी है डिग्री को हासिल करना, उसके साथ ही साथ ज़रूरी है अपने स्किल को इन्हेंस करना। क्योंकि डिग्री के चलते आप किसी भी सेक्टर में आप जा सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं, आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपना एक अच्छा क्राइटेरिया बनाना है, अगर आपको अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है और अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको भाषा के साथ ही साथ अपने स्किल पर भी उतना ही काम करना पड़ेगा। शिक्षा और भाषा दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए बिंदु हैं। शिक्षा की दुनिया में भारतीय भाषाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अगर हम शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करें तो भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री विकसित करने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। नीति में यह भी कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में दक्षता को रोजगार के अवसरों के लिए हमें अलग तरह से क्वालिफिकेशन पैंपर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर युवा को केवल भाषा पढ़नी ही आनी चाहिए, बल्कि इसका संदेश यह है कि जिस भाषा को आप जानते हैं उसकी ताकत को पहचानिए, उससे अपने कौशल को बढ़ाइए। क्योंकि आज की दुनिया में आपको स्किल काम दे सकती है, लेकिन स्किल का कॉम्बिनेशन आपको एक अलग पहचान दे सकता है। भारतीय भाषाएं और रोजगार के आज तमाम क्षेत्र हमारे समाज में उपलब्ध हैं। और दोस्तों, भाषा से जुड़े अवसर सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि एक युवा अपनी भाषा के माध्यम से अपने आप को एक डिजिटल ब्रांड भी बना सकता है, अपना सोशल मीडिया ऐसे शुरू कर सकता है, पॉडकास्ट कर सकता है, रीजनल जर्नलिज्म कर सकता है।

ऑनलाइन टीचिंग कर सकता है, बुक्स और ई बुक्स भी लिख सकता है, यानी कि ट्रांसलेशन एजेंसी भी शुरू कर सकता है। लोकल बिजनेस हो या फिर आपके लिए हो मल्टीपल करियर का ऑप्शन, आज भाषा के माध्यम से सब कुछ उपलब्ध है। आप अपनी भाषा के ज्ञान से क्या बना सकते हो, ये आज आपकी भाषा पर और आज आपके स्किल पे डिपेंड करता है। तो हम इस विषय पर आपको बची हुई थोड़ी और जानकारी देंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज का दिन है 24 सितंबर का। अब जरा रिमाइंड करिए कि क्या आज के दिन कुछ खास हुआ था, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हाँ ये तो हमारे हिस्ट्री में मतलब आज के दिन खास था। अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अभी तक रिमाइंड नहीं किया है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज का दिन खास कैसे है। जी हाँ, आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक भिकाजी कामा की जयंती मनाई जाती है। भिकाजी कामा वर्ष 1907 में विदेश में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज फैलाने वाली भारतीय महिला थी। तो आज उनकी जयंती पर हमें शत शत हम उनको नमन करते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भारत की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष करती रहूंगी। मेरा विश्वास है कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीति नहीं है बल्कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति का पूर्ण रूप से अधिकार है। तो अच्छे काम करें, अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करें, क्योंकि फ्रीडम ना एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप खुलकर बोलते हो, जब आप अपनी बात को रखते हो, जब आप भाषा के महत्व को समझते हो, जब दुनिया के सामने आप अपनी स्किल को दिखाते हो, तो आप एक स्वतंत्र जीवन जी रहे होते हो। इसलिए ध्यान रखें कि स्वतंत्रता हमें बहुत मुश्किल से मिली है। स्वतंत्रता का प्रयोग हमेशा स्वतंत्रता के ही रूप में करें, ना कि स्वच्छंदता के रूप में। हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए ऐसे तमाम महापुरुष हुए, वीरांगनाएं हुई, जिन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन को निछावर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र में अगर हम कैलेंडर देखें अपने वर्ष भर का, तो केवल गिने चुने 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ही नहीं, बल्कि ऐसे तमाम दिवस हैं और हर दिन है जो हमारे देश के ऐसे महापुरुषों के लिए, देश की ऐसी वीरांगनाओं के लिए और देश के ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए है जिनसे हमारा हर दिन शुरू होता है। तो आइए इस प्यारी सी बात के साथ एक प्यारा सा गीत हम अपने देश के हर उस व्यक्ति के लिए समर्पित करना चाहेंगे जो अपने राष्ट्र से प्रेम करता है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा सरहद पर खड़ा होता है।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब थोड़ी सी बात हम दिल से करेंगे। अगर आपके घर में कोई बोली बोली जाती है जिसे आप कभी कभी गांव की भाषा कहकर छिपाते हैं, अगर आपकी दादी ऐसी भाषा बोलती है जिसे आज की पीढ़ी कम समझती है, अगर आपके पास अपनी मातृभाषा के शब्दों का खजाना है तो उसे कम मत आंकिए, क्योंकि हो सकता है जिस भाषा को आप घर की चार दीवारी तक सीमित समझ रहे हैं उसी भाषा की कहानी किसी दिन डिजिटल दुनिया के लाखों लोगों तक पहुंच जाए। आज दुनिया लोकल से ग्लोबल और ग्लोबल से लोकल की तरफ भी बढ़ रही है, और ऐसे समय में अपनी भाषा जानना पीछे रह जाना नहीं है, बल्कि अपनी भाषा में मजबूत होना अपनी जड़ों को मजबूती देना है। भविष्य की ओर आने वाला समय शायद ऐसा होगा जहां इंसान और तकनीक मिलकर भाषा की कई दीवारें तोड़ेंगे। AI ट्रांसलेशन करेगा, स्पीच रिकॉग्निशन आवाज समझेगा, टेक्स्ट टू स्पीच लिखे हुए शब्दों को आवाज देगा और अलग अलग भाषाओं के बीच संवाद और भी आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी है

आसान नहीं होगा, शब्द के पीछे छिपा हुआ भाव। माँ और माता का अर्थ शब्द कोश बता सकता है, लेकिन किसी माँ को पुकारते समय उस शब्द में जो अपनापन है, उसे महसूस करना केवल मनुष्य का ही अनुभव होता है। यही हमारी भाषाओं की खूबसूरती है। आज की हमारी बातचीत का सवाल था, क्या भाषा भी करियर का विकल्प बन सकती है? मेरा जवाब, किसी एक नौकरी या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। मैं बस इतना ही कहूंगी दोस्तों अंत में कि हाँ, भाषा शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसे अपनी मंजिल बनाने के लिए भाषा के साथ हुनर को जोड़ना होगा। अपनी मातृभाषा को बोझ मत समझिए, अपनी बोली को पिछड़ापन मत समझिए, और किसी भाषा को सिर्फ इसलिए छोटा मत समझिए क्योंकि वह आपको नौकरी के एडवर्टाइजमेंट में एक काम नहीं देता, बल्कि भाषाएं शब्द नहीं पीढ़ियां बचाती हैं। और शायद आज के युवा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि वह भाषा को सिर्फ अतीत की निशानी बनाकर ना रखे, बल्कि उसे भविष्य की तकनीकी, रोजगार और रचनात्मकता से जोड़ दे। हो सकता है आपकी भाषा में कोई ऐसा शब्द हो जिसका दुनिया को अभी इंतजार हो, और ये भी हो सकता है कि जिस भाषा को आपने कभी करियर की राह में बाधा समझा हो, वही भाषा एक दिन आपको एक आधुनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ दे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगी कि अपने भाषा पर गर्व करिए। अभी हमने हाल में ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया था, तो कितने गर्व की बात है कि हम अपने भाषा की बात करते हैं। चलिए इसी प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में प्रेरणा पुंज के बारे में। जी हाँ, आज हम जिनके विषय में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। आज मैं जिनकी कहानी आपके बारे में बता रही हूँ ना, उनके कुछ विचार मैं बहुत अंतर मन से महसूस करती हूँ। एक बार उन्होंने कहा था, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, एक ऐसा सपना जिसमें इंसान को उसके त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उसके चरित्र से पहचाना जाए। और दूसरी बात जो उसकी पूरे संघर्ष की दिशा को बताता है, उन्होंने घृणा के जवाब में हिंसा नहीं बल्कि अहिंसक संघर्ष और प्रेम को चुना। उनके भाषणों और उनके लेखन में यह विचार बार बार सामने आता है। उनका गहरा संदेश यही था कि निराशा के पहाड़ से भी उम्मीद का पत्थर तराशा जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर कौन थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और क्यों उनकी आवाज आज पूरी दुनिया ने सुनी? मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के सिविल राइट्स मूवमेंट के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उस समय अमेरिका के कई हिस्सों में अश्वेत लोगों के साथ कानूनी और सामाजिक भेदभाव मौजूद था। स्कूलों, सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में नस्लीय अलगाव की व्यवस्था ने उनके जीवन की गहराई से उन्हें प्रभावित किया। किंग ने संन्याय के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध का रास्ता अपनाया। उनका संघर्ष केवल विरोध करने के लिए नहीं था, उनका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था को खत्म करना था जहां इंसान इंसान को बांटता है। बस फिर क्या, वॉशिंगटन में जॉब्स एंड फ्रीडम के लिए हुए विशाल मार्च में उन्होंने अपना ऐतिहासिक आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया। इस भाषण ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई और समानता तथा स्वतंत्रता की कल्पना को एक शक्तिशाली आवाज मिल गई। लेकिन किंग को अपनी लोकप्रियता केवल एक भाषण की वजह नहीं बनाना था, बल्कि उनका उद्देश्य तो समाज में हो रहे भेदभाव को मिटाना था। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा जॉर्जिया में हुआ। वे धार्मिक परिवार से आए और आगे चलकर वे बैप्टिस्ट मिनिस्टर भी बने। बचपन और युवावस्था में उन्होंने नस्लीय भेदभाव को करीब से देखा, जिसने उनके विचारों और जीवन की दिशा को और भी अधिक प्रभावित किया। धीरे धीरे वे नागरिक अधिकारों के आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। उनका संघर्ष आसान नहीं था, विरोध हुआ, गिरफ्तारियां हुई, धमकियां भी मिली, लेकिन उन्होंने अपने विचार का रास्ता नहीं छोड़ा और 1964 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। नोबेल व्याख्यान में उन्होंने सम्मान को केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन हजार लोगों के संघर्ष का फल कहा जो नस्लीय अन्याय के विरुद्ध उनके साथ आकर खड़े हुए थे। यहाँ उनकी कहानी हमें एक ऐसी खूबसूरत बात सिखाती है कि बड़ा परिवर्तन हमेशा किसी एक व्यक्ति की ताकत से नहीं आता, बल्कि कई बार व्यक्ति सिर्फ उसे सामूहिक आवाज देकर भी अपने बीच लाकर खड़ा करता है। वह हमें गरिमा, समानता, अहिंसा, आशा और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे मूल्यों पर सोचने का अवसर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वे कहते हैं कि युवा केवल भविष्य नहीं होते, युवा वर्तमान को दिशा देने वाले शक्ति होते हैं। मार्टिन लूथर किंग की कहानी पढ़ते हुए
मुझे एक बात तो महसूस हुई कि सपना देखना आसान है, लेकिन उस सपने को लगातार

उस पर काम करना, उसके लिए खड़े रहना, अडिग रहना वाकई में दोस्तों बहुत कठिन है। किंग ने अपना सपना देखा था एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान इंसान को बांटे ना, जहां कोई इंसान एक इंसान को दूसरे इंसान से कमतर ना आके। लेकिन उन्होंने केवल सपना नहीं देखा, उन्होंने इस सपने को शब्द दिया, उसके लिए संघर्ष किया, लाखों लोगों को जोड़ा और अपने बीच से ऐसे भेदभाव को मिटाया। इसीलिए कहा गया है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन फिलहाल समय है एक यू टर्न का।

तो अभी हमने एक प्यारा सा गीत एंजॉय किया, और जो हमारा आज हमने प्रेरणा पुंज की बात की, इसका सम अप मैं करूंगी मार्टिन लूथर किंग की एक बहुत प्यारी सी बात के साथ। दुनिया को बदलने से पहले दुनिया से लड़ना जरूरी नहीं है, कभी कभी जरूरी है कि हम अपने भीतर उम्मीद को इतना मजबूत कर लें कि अंधेरा हमें रोक ही ना सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ, लेकिन ध्यान रखिए कि सपनों को जिंदा रखना, उनको पॉलिश करना, खुद पर काम करना और खुद के लिए आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे पहले आपको अपनी गलती पर फटकार भी खुद को लगाना होगा और अपने अच्छे काम पर खुद को शाबाशी भी देनी होगी। तो रोज मिलिए अपने दोस्त से, यानी कि आईना से, जो आपको आपकी कहानी से रूबरू कराता है। और जब कभी आपको ऐसा लगे कि हाय मतलब मैं थोड़ा तो लो महसूस कर रहा हूँ, तो शाम को मुलाकात करिए युवाणी में, क्योंकि हमारे दोस्त और हम जब भी आते हैं तो हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके जज्बा को, हम आपके हुनर को एक अच्छी राह दे सके, आपको मोटिवेट कर सके और आपको आपके सपने के प्रति, आपको आपकी आकांक्षाओं के प्रति एक स्टेप और आगे बढ़ा सके। होप सो कि आपको आज का प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। हम यूं ही आपसे मिलते रहेंगे और आपके साथ प्यारी प्यारी यानी कि हार्ट टू हार्ट बातों का कनेक्शन जारी रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते प्रोग्राम के आखिरी में मेरी तरफ से डेडिकेट है आपके लिए ये एक प्यारा सा गीत।

मुस्कुराना अच्छी बात है, तो मुस्कुराती रहिए और किसी के मुस्कुराहट की वजह भी मिलिए। मिलेंगे कल शाम फिर कुछ नए किरदार और आपसे करेंगे तमाम बात। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्ट विथ अस और सुनते रहिए युवाओं की वाणी युवा वाणी। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी कि माही को इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की

0: पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट PG 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद ने स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानू TS और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे आज के शेष कार्यक्रम और कल के प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर एक नजर। आज रात 9:30 बजे आप सुनेंगे गजलों पर आधारित कहकशा कार्यक्रम। रात 10 बजे सुनिएगा 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर गीता बनर्जी का उपशास्त्रीय गायन होगा। 7:31 पर आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम में राकेश मालवीय और विनम्र सेन सिंह का काव्य पाठ। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में संगीता भारद्वाज के स्वर में गीत और भजन होंगे।

सबरस का समय होगा रात 8:30 बजे का। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात 8 बजे। ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नज़र कल के कार्यक्रमों पर। कल रात 9:30 बजे कहकशा कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे आप सुनेंगे 20वें एशियाई खेलों की दैनिक झलकी। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन होगा। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में डॉक्टर सुमित कुमार मिश्र की वार्ता होगी, रामायणम युगातीतः संदेश। 7:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीकांत वैश्य के गीत और भजन होंगे। रात 8:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे प्रोफेसर इंद्राणी की अंग्रेजी वार्ता, गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर एंड हिज यूनिक विजन। 6:35 पर कल प्रातः कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार से बातचीत होगी सजावटी फूलों की खेती विषय पर। 6:45 पर डॉक्टर श्वेता चौधरी की वार्ता होगी पायरिया का उपचार, कार्यक्रम होगा स्वास्थ्य चर्चा। 7:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उज्ज्वल दत्ता का ख्याल गायन होगा, नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कल सुबह 9:50 पर सुगम सात्विक मिश्रा के गाए भजन होंगे, वॉइस ऑफ प्रयागराज, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल 10:05 पर। 10:30 पर लोगे सुनिएगा, कलाकार होंगे आकांक्षा भारतीय और उनके साथी, कमला प्रसाद पाल और उनके साथी, और शोभा लाल और साथी। कल 11 बजे कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत एक ही कलाकार। 11:30 पर कार्यक्रम सुनिएगा यूथ एक्सप्रेस। दिन में 12:15 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पंडित कंठे महाराज का तबला वादन आप सुनेंगे। 12:30 पर हेलो फरमाइश। दिन में 2:30 बजे प्रायोजित कार्यक्रम होंगे NCERT। 5:00 बजे नई दुनिया कार्यक्रम होगा। 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे। और 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा। ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज़ पर। 6:20 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सेवाभावं जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्राख्यापयत्। सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा अनुसरणीयः मुख्य संकल्पः इत्यपि असौ सबलम् अकथयत्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने विदेश कार्य मन्त्रिणा डॉ एस जयशंकरेण फिपेक विदेश मंत्री मंडलस्य समलंकृता द्वितीय पीठिका। प्रशासनेन प्रोदीरितं भारतं स्वाभ्यंतर आवश्यकतानां 99.2% जंगम दूरवाणी यंत्राणि स्वदेशे एव सम्

0: पादयति। चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेशार्थम NBEMS संस्थया नीट PG परिणामः समुद्घोषितः। ओडिशा पश्चिम बंग प्रभृति पंच राज्येषु अतिवृष्टि परा रक्तवर्णीया संचेतना ऋतु विज्ञान विभागेन प्रख्यापिता। अपि च एशियाई क्रीडासु पुरुष कबड्डी स्पर्धायां अंतिम समूह क्रीडायां चीनी ताइपे दलं पराभूय भारतम् उपान्त्यचक्रे प्रवेशं प्रासाधयत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा प्रसंगे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सेवाभावः जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्रतिपादितः। तेन प्रोदीरितं यत् राजनीति शीर्षं प्राप्तेनापि अधिकारिणा सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा न विस्मरणीयः। साक्षात् आभासीय सम्भाषणे तेन सेवा प्रवृत्तिः सर्वनागरिकेषु समाहूता।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमन्त्री प्रख्यापयत् यत् सेवाभावः एव राष्ट्रविकासस्य मुख्यप्रवर्तकबलमस्ति। तेन सबलं प्रोक्तं यत् PM किसान निधिः वा PM सूर्यघर योजना वा एतादृशीनाम् अनन्तानां जनकल्याणपरियोजनानाम् अन्तिमजनप्रापणसामर्थ्यमेव तासां सफलतायाः मुख्यं प्रमाणमस्ति।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: राष्ट्र निर्माण व्रत धारिणः वयम् विकसित भारत रचनायाः संकल्प सिद्ध्यै प्रवृत्ताः इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। 47-2000 वर्षे विकसित भारत निर्माणाभियाने युवकानां मुख्य सामर्थ्यं सर्वजनैः पूर्णशक्त्या समुन्नेतव्यम् इति तेन साध्ववाची।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: न्यूयॉर्क नगरे 88 संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रसंगे विदेश कार्य मंत्री एस जयशंकरेण फिपिक विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय उपवेशनम् समलंकृतम्। तेन सहभागी देशैः सह क्षेत्रीय सहयोग संवर्धनाय दृढ़ संकल्पः प्रख्यापितः। 23-2000 वर्षे उद्घोषितायाः प्रधानमंत्री मोदिनः 12-सूत्रीय कार्य योजनायाः प्रगतिमधिकृत्य सम्भूय समीक्षा प्रोदीरिता। प्रमुख रक्षा अध्यक्षः जनरल NS राजा सुब्रह्मण्यः अद्य न्यगादीत् यत् युद्धकलायाः परिवर्त्यमान स्वरूपानुसारं भारतस्य सैन्य अधिग्रहण तन्त्रस्य द्रुत परिवर्तनं सर्वथा अनिवार्यम्। नवदिल्ल्यां रक्षाशिखर सम्मेलने सम्बोध्य तेन समदीदृशि यत् प्रौद्योगिकी दत्त सामग्री उद्योगानां समवायि सम्बन्धेनैव रक्षा पारिस्थितिकी तन्त्रं सुदृढं भवति। तेन प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी उद्योग संशोधनानां त्रिवेणी संगमेन रक्षा पारिस्थितिकी तन्त्रं अभूतपूर्वां प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। संचार विघ्नेष्वपि अप्रतिहता कृत्रिम प्रज्ञा एव भावि युद्धानां जय हेतुः संभविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com

0: www.ai.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तंत्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया पीएएफआई विंशति षड्विंशति इत्यस्य त्रयोदश वार्षिक अधिवेशनस्य उद्घाटन सत्रे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभागस्य सचिवः एस कृष्णन वर्यः प्रतिपादितवान् यत् भारतवर्षम् अधुना देशस्य स्वदेशीयायाः चलदूरभाषमाङ्गल्यस्य प्रायः 99.2% भागं स्वयमेव निर्माति। तेन विशदीकृतं यत् भारते प्रतिवर्षं 30 वा 32 कोटि परिमिताः चलदूरभाषाः उत्पद्यन्ते। सहैव विश्वस्य 5 प्रमुखाः चलदूरभाषनिर्माणसंस्थाः अधुना भारते उपस्थिताः सत्यः अत्रैव स्वकीययन्त्राणां निर्माणं सोत्साहं कुर्वन्ति। आयुर्विज्ञान राष्ट्रियपरीक्षामण्डलेन अद्य नीट पीजी विंशति षड्विंशति इत्यस्याः प्रतिष्ठितपरीक्षायाः परिणामः उद्घोषितः। परीक्षा एषा समग्रे अपि भारतवर्षे गते अगस्त मासस्य 30 दिनाङ्के विंशति षड्विंशति सप्तविंशति इत्यस्य शैक्षणिकसत्रस्य विविध चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेषु यथा हि एमडी एमएस डीएनबी द्रवीभूत षण्मासिक पाठभेदेषु तथा पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं सोत्साहं समायोजिता आसीत्। मण्डलेनानेन विज्ञापितं यत् सर्वे अपि परीक्षार्थिनः अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कादारभ्य अग्रे वा स्वकीय संगणकीय पट्टिकायाम् आसाद्य आत्मनः अंकपत्रं स्वीकर्तुं पारयिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पश्चिम बंग तेलंगाना छत्तीसगढ़ तटीयांध्र प्रदेश ओडिशा राज्येषु अतिभीषण वृष्टेः संभावनाम् अधिकृत्य रेड अलर्ट इति संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन बिहार झारखंड विदर्भ सिक्किम राज्येषु च अद्य अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एतदतिरिच्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहेषु असम मेघालय पूर्वीय मध्यप्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश कर्नाटक केरल माहे मराठवाड़ा क्षेत्रेषु च अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। ग्रेटर नोएडा मण्डलस्थे यमुना द्रुतमार्गे ह्यः अर्धरात्रौ संवृत्तायां दारुणायां यानाग्नि दुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 9 यात्रिणः मृत्युमुपगताः। आरक्षक सूचनानुसारेण दुर्घटना एषा जेवर आरक्षक स्थानान्तर्गत दयातानपुर ग्रामस्य समीपे मध्यरात्रौ समजनि। आरक्षकैः प्रोक्तं यत् मृतकानां 9 यात्रिणां अभिज्ञान प्रक्रिया सम्प्रति साध्या न जाता। जापान देशे समायोजितासु एशियाई क्रीडा विंशति षड्विंशति इत्येतासु भारतस्य पुरुष कबड्डी दलं स्वकीयायाम् अन्तिमायां वर्ग अ प्रतिद्वन्द्वितायां चीनी ताइपे दलं 37-21 इति सुस्पष्ट अंकांतरालेन पराजय्य उपांत्य स्पर्धायां प्रविष्टम्। भारतेन क्रीडारम्भादेव स्वकीयं प्रभुत्वं संस्थाप्य मध्यानन्तरं यावत् 23-11 इति सुदृढा अग्रता गृहीता। उत्तरार्धे च पुनरपि 14-10 इत्यङ्कैः तदैव वर्चस्वं निरन्तरं परिपालितं। वर्गचक्रे भारतस्य एषः अनुक्रमात् 4th विजयः अस्ति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम पंचायत घर।
2: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे न फैलाने देंगे।
3: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
2: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब ग्रामीण भाई सुने अपना कार्यक्रम पंचायत घर।

0: पंचो राम राम भैया। देखा खेती किसानी में हमार किसान भैया बहनी हरी नित्यम जौन है अपन धान की फसल में देखभाल में लाग हमें। और बहुत से किसान भैया बहनी हरिन के धान के फसल तो जौन है अपन तैयारियों की स्थित होते है। तो साथे साथ किसान भैया बहनी हरिन का और बात बत कही हुई और सरकार तरह तरह की योजना भी चलावत है जौने में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की भी योजना चलत है। तो किसान भैया बहनी हरिन यहाँ के लाभ उठावें। आज अपने किसान भैया बहनी हरिन का एक किसान चर्चा ज्ञान सिंह पटेल से राकेश कुमार मौर्य भैया की बातचीत बा। तो किसान भैया बहनी हरिन सुने तो आगे बात बत कही होई।
1: किसान भैया, आज किसान चर्चा का दिन है। किसान चर्चा में हमारे प्रगतिशील किसान भैया हरे आवत हिन और अपने खेती किसानी के अनुभव बाँटत हिन। का खेती में करत बाटन, का कुछ नवा करत बाटन, जौने से और भी किसान भाई सीख लें कि बढ़िया खेती करें, उत्पादन बढ़िया होए, उनकर फायदा होए। तो आज हमारे बीच में किसान चर्चा में ज्ञान सिंह पटेल भैया आए बाटन है, जौन की खेती किसानी जानकार बाटन, खेती बढ़िया करत बाटन। ज्ञान सिंह पटेल जी भैया, आपका स्वागत है। बतावा कहाँ से आए बाटा, कहाँ घर बाप के?
2: भैया हमारा नाम ज्ञान सिंह पटेल, हमारा ग्राम बनपुरवा, पोस्ट चिल्ला गोहाने, तहसील बारा
1: अच्छा
2: से हमारे
1: अच्छा
2: निवास
1: अच्छा
2: स्थान है।
1: तो कितना खेत बाड़ी बा भैया आपके
2: भैया
1: पास?
2: हम कुल 20 बीघा खेती करी थी। 20 बीघा खेती में 8 बीघा हम धान के खेती करे है।
1: 8 बीघा धान के
2: आठ
1: खेती।
2: बीघा धान के खेती करे है। हमार कुछ धान जो है फूटत बा, कुछ कुवारी धान है, कुछ जो है कातिक वाला धान है। तो कुवारी वाला तो कतौ जतौ जो है फूटत देखात बाटे। धान के पैदावार यह साल पानी के देखते हुए, क्योंकि जो मौसम की मिजाज थी बढ़िया थी, बरसात बढ़िया हुई, तो धान के खेती ऊंचे उखाले अगर जो मैंने कहे रहा तो ओकर खेती बहुत बढ़िया बा।
1: हाँ, यहाँ साल
2: तो
1: पानी बराबर मिला जात
2: जी
1: बा।
2: पानी बराबर मिला जात बाटे। अब तक पानी के कोनो जरूरत खेते में पड़ी नहीं। अब जो है बारिश निकल गई है तो अब जो है कुछ पानी की जरूरत है।
1: नहीं निकली नहीं, बीच बीच में
2: हाँ
1: बरसा
2: बीच
1: जात
2: बीच में
1: बा
2: जैसे
1: कुछ ना
2: कल भी
1: कुछ।
2: हमारे यहाँ हल्का फुल्का बारिश है
1: तो
2: भाई।
1: जितना जरूरत बा उतना बरसा ही जात
2: हाँ
1: बा इस
2: उतना
1: बार।
2: बरसा जाता है, लेकिन भाई अब जैसे सिगौहा खेत बाटे तो पानी की जरूरत बा।
1: हाँ, जहाँ जरूरत बात वहाँ तो किसान भाई पानी
2: जी
1: देन के
2: अब
1: चाहे
2: भाई
1: जौन
2: सिगौहा
1: बाटे।
2: खेते में पानी की जरूरत बा। जैसे मान ले जहाँ मिट्टी वजन ही अटे, क्षमता ज्यादा बा, तो वहां तो पानी की जरूरत नहीं बाटे
1: अच्छा
2: भाई। धान
1: अच्छा
2: वाली एरिया में धान की खेती, हमारे कहते सिगौहा खेत बा, तो जौन खेत समतल बाटे तो हमें तो पानी अबा कहीं कहीं लगा है। आ जौन थोड़ा से खेत नरमेदी रहन ओके लिए पानी की जरूरत है अब
1: बा
2: बा। हम जौन कुवारी धान बटे ओमे हम आज कल पाइप जो है फैलवाई के पानी लगावे के सोचत रहे भाई, पानी लगा दे, लेकिन शाम के कब है बारिश, हल्का बारिश भाई। तो हम कहा भैया नया मशीन चलवाओ कैसे कि शायद बरस दे तो हमार काम हो जाए,
1: हो
2: तो ऐसे हम
1: जाए।
2: फिर मशीन नहीं चलवावा। लेकिन अब यह है कि धान की खेती हमका यहाँ साल ही लागत बाकी हर एक साल के अपेक्षा यह साल बहुत बढ़िया दिखा दिया। ऐसा धान की खेती हमारे यहाँ कभी नहीं भाई।
1: जबकि शुरुआत में बहुत पानी नहीं बरसे।
2: हाँ पहले पहले तो ऐसा लगे कि भाई पानी है नहीं बाटे, लागत है सूखा पड़ जाए। हाँ एक वजह से कुछ बाजरा वजरा की खेती भी हम करवाए दे रहे 2-3 बीघा।
1: तो कुवारी जवन बोया है तो बिन पानी के देखते हुए पानी ना बरसे तो कुवारी हो जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: कई
2: बिल्कुल
1: बीघा कुवारी ले है?
2: कुवारी बाटे लगभग कम कम।

0: 3 बीघा तक।
1: तो का फर्क देखात लगावई वाले में कुवारी में कोनो फर्क देखात बे?
0: कुवारी वाले में साहब ये लगाता है कि उसमें लागत कम पड़े भाई, अब वो कोई पानी वानी न दे पड़े। हाँ
1: लगावे के ना वो का कहा पड़ा हो का?
0: हाँ वो लगाने में थोड़ा से पहले नच के वो का लगावा है, अब पहले पैदा हो जाए।
1: दूसरी चीज पैदावार में का फर्क पड़त बे?
0: पैदावार में साहब तो देख कुवारी वाला ज्यादा हुए क्योंकि पूरे पूरे मौसम में रहे।
1: पैदा ज्यादा हो और लागत भी कम हो?
0: लागत भी कम, लागत बिल्कुल कम ही बटे कि ओके लिए जब हम मान लो जैसे 7 घंटा 5 घंटा पानी सींचा तो सिंचाई लगी, आज हमें एको पैसा के पानी की जरूरत बाट है ये नहीं बा, तो ये हमार खेती ज्यादा बढ़िया बा,
1: ज्यादा फायदा थी भा हो। वो का एक जगह बेहन डाल के फिर लगावे वाला झंझट ना रहा, सीधा सीधा धान बो दिए हो बे
0: नहीं है। बेहन वो वाला धान हमरे यहाँ नहीं मानत, जैसे छिटुआ छीट दिन जाए
1: तो
0: वो नहीं मानत। ओके लिए पहले ये करे पड़त रहा कि मैंने जैसे अगर हम छीट दिन तो हर बरधा रहे तो जोतवाई दे तब वो बढ़िया से जो है विकास करत रहा, लेकिन अब बेहन सबके डाले पड़त है। लेकिन अभी ये है कि हमें जब पानी की जरूरत नहीं वो समय समय पानी पावत गए तो थोड़ा विकास ज्यादा करत है, और समय से कट गए तो अगली खेती जो ले के उस समय से हमका मिल जाता।
1: अच्छा
0: तो ये फायदा हो जाता हमका।
1: और कोनो रोग बिरामी?
0: रोग बिरामी ऐसा कोनो धाने में किसी भी प्रकार के
1: पानी
0: हमका लागत में रोग बियाद है ये नहीं
1: है ये नहीं और साल तो कुछ न कुछ लग।
0: अरे और साल तो जैसे कंडुआई जाए कोनो कोनो गांधी लग जाए
1: मोर्चा हवा लोग लग
0: जाए, लेकिन अब के साल जे ऊंचे उखाले बोए बा धान जहाँ नहीं बोए ला रहा वहाँ अगर बोए बा तो बिल्कुल ओकर धान हो के एकदम
1: मुफ्त में हो जाए।
0: हाँ मुफ्त में हो जाए, मैंने ये सोचा था कि यार हम बजरी काहे बोए दिन, भैया अगर धान बोए हो तो हमारे धान हो जाते
1: हैं। बजरी कम थोड़ो बिचात बहुत महंगी बिचात
0: भाई, बजरी बिचात तो बा, लेकिन समस्या है कि बाजरा जो है यह समय यह साल नहीं हो पाए भैया। 3 बीघा बाजरा हम बोआए रहे जैसे जामी है और इसे पानी पीट के बरसे लगे जो मतलब अगली बगली थोड़ बहुत बची रहे, इतना पशु हैं कि इतना परेशान कर दें। जैसे धान ज्यादा लोग बोएं तो खेत के चारों तरफ खम्भा गड़वाई दें, बाजरा वजरा मने खम्भा नहीं गड़वाए तो जब बाजरा थोड़ा से बढ़ा तो भाई बाजरे के तरफ जो है पशु ज्यादा भागत
1: चरा थी नौका ज्यादा।
0: हाँ अगर तकाई न कही पौगा तो बाजरा ना हो पा, ज्यादातर बजरी चरिल ले हैं। बहुत कम लोग जे लोग मतलब कुछ किसान ऐसा हैं कि जो बिल्कुल धाने साही खम्भा अपने खेत में गड़वाई ले बा, ओकर जो है बाजरा बच गया बा, लेकिन बहुत कम मात्रा में।
1: अच्छा,
0: जो
1: अच्छा।
0: गाँव के अगल बगल हैं उन्हीं के बाजरा बच पाए भैया, नहीं तो बाजरा तैसा नहीं होगा। लेकिन धान की खेती ये कहा कि जे घेरे पारे बाटे बढ़िया से देख रेख ताकत बा ओकर धान बहुत
1: बढ़िया बाटे, यानी हर साल का घाटा मुनाफा में बदल जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल मुनाफा बिल्कुल अच्छा, मतलब उसे रकम उनका अच्छी मिल जाए।
1: एक बात बतावा, जैसे पानी तो यहाँ साल जरूरत नहीं पड़ी, खाद का व्यवस्था के रखा?
0: खाद भैया जब शुरू में खेत जब बनावा है पहले तो हम अपने खेत के पलाऊ करवावा हैरो से करवाए दिन है, ओके बाद सड़ी गोबर के कहा 3-4-5 टाली रही ओका वही में फेंकवाए दिन है, आ फेंकवाए के बाद नौफरवा चलवाए दिन है, नौफरवा से ट्रैक्टर से जोतवाए दिन तू मिलू गई। जब मिल गई तो फिर ओका का कहते हैं एक जने भाई साहब हैं बैल रखे हैं, हम कहा यार ऐसा वो कही देते है आप तनी नच के पांटा मार दे भाई जो 400-600 रुपया ले, तो पांटा मरवाए दिन तो एकदम खेत बन गए गर्दा हो गए। एक पांटा तो ट्रैक्टर से है तो हमें सही प्रकार से पांटा लग नहीं पावे, वजन हो तो बैठा नहीं जात, ये लागत के भाई डर लागे तो कहीं गोर पैर ने छटक
1: और का।
0: तो जब कराए दिन तो पांटा से एकदम खेत बन गवा, ओके बाद सीधा सीधा बुलवावा और हमें वो सनई सनई भैया बोवाए दिन, जब एक एक डेढ़ डेढ़ डेढ़ दुई बीता के हो गई लर्मेन पे
1: जोताई के साथ
0: लर्मेन पे जोताए दिन तो वो हरी खाद जो है बन गई।
1: ये तो बहुत बढ़िया काम के धान के लिए, तो बहुत बढ़िया
0: धान के लिए, मतलब उसे बढ़िया कोनो खाद ही नहीं बा।
1: सनई या ढैंचा?
0: हाँ सनई और ढैंचा, अगर सनई आप सड़ई देहा अगर खेते में तो जान ले कि धान की फसल बहुत अच्छा विकास करत है।
1: सही कहे भैया। अच्छा ये बताओ, बतावत रहा कि सब्जी की खेती बढ़िया की है बटे, मूली है और कुर्थी है काका तो रही?
0: भैया देखे मूली हम 2 बीघा मूली बोए तो 2 बीघा में 1 बीघा पहले मूली बोवा, जून में पहले ओका पलाऊ से कराई के ओमे बहुत गोबर के खाद भी हम नहीं डाले, इसलिए कि गोबर के खाद जब ज्यादा हो जाता है
1: तो करियाई लागत
0: जड़ में जड़ जो है ओकर खराब हो जाता है।

0: बनाए रहे
1: मूली वाले खेत में बहुत जो है गोबर के खाद नहीं डाले, लेकिन खेत पलाऊ से कराए के नौफरवास कराए बढ़िया ओका पाटा उटा लगवाए के तैयार जब कैले तो बिया ले आए बाजार से बिया ले आए के ओके छीटे
0: छिटवा बोया कि डुड़ोही
1: नहीं नहीं छिटवा है हमारे खिया हल्की मिट्टी पे बालू मिट्टी
0: पे मेड़ी पे नहीं बोए
1: नहीं मेड़ी पे नहीं बोए मेड़ी पे बोए थे तो बढ़िया फसल नहीं हो
0: पाओ। अच्छा
1: तो हम पे छिटवा बोई दी थी तो पिछले बार जो बोए थे तो पिछले बार में हुआ ये कि ट्रैक्टर से बोवाई दे और जब ट्रैक्टर से बोवाई दे तो हमें कुछ बीज के नीचे पड़ जाते तो बढ़िया से जर्मिनेशन है नहीं आई
0: ज्यादा नीचे
1: तो आपकी बार किया का कि जौन कांटा लेके हम कहा भैया बैल से एका जो है जितना पूरी मूरी एक बीघा हम बोई रहा है एका आप कांटा कह दे और जब कांटा हल्का से कांटा चारो एक बीघा में कांटा चलाए दिन चारो कहते से तो हम कहा अब आप जो है अपने बैल से एका पांटा मार दे जब पांटा मार दे तो एकदम खेत बिल्कुल एकदम बन गए बैठ गए तो सीधा जो है उठावा का कहते कराहा वो है मेट टाड़े वाला फरहुई वह बनेरा
0: अच्छा
1: बनाए दिन 10-12 बनेरा जहाँ जैसे पानी चढ़ाई ला रहा है
0: जैसे ज्यादा पानी एक जगह ना इकट्ठा
1: मतलब कहूँ पानी ज्यादा ना लगे उस प्रकार से बनेरा हम बनाए दिन और बनाए के बाद छोड़ दिन और इसे बरसात हल्का बारिश पहले भई है शुरू में तो शुरू में जब हल्का बारिश हुई तो मूली इतनी बढ़िया भैया जामे कि पूरी पूरी मूरी जामी है हमको हमको ऐसा लगे कि जना मूरी ज्यादा हो गई हमको लगा कि विकास ना हो पाए तो लेकिन फिर पानी तनी
0: ज्यादा
1: ज्यादा हो गए जब ज्यादा हो गए तो कुछ मर गए
0: वो तो हो ही जाए
1: जब कुछ मर गए तो कुछ बिड़र भी हो गए जब बिड़र हो गए तो मूली बढ़िया खुली जो उन पतली वाली खरपतवार आयु में ओका निर्वाय दिन मजदूर बुलाई
0: अच्छा अच्छा
1: तो इतना बढ़िया तैयार है भाव से तैयार भाई
0: अब समय से तैयार
1: समय से तैयार भाई जब पहला खेप हम मूरी ले गए तो 350 रुपया धरा के मूरी हम 70 किलो मूरी ले गए
0: बरसात को मूली तो महंगी बिका भाई करते
1: पूरी मूरी हम आपसे कही थी कि 250 से 300 रुपया धरा के आसपास सारी मूरी
0: तो पूरा एक बीघा बेच ली है
1: हाँ एक बीघा पूरी मूली बीच के कुछ रहा नहीं
0: तो कितना पाएगी एक बीघा
1: लगभग 1,00,000 के आसपास
0: लागत कितना लगाया
1: लागत 25-30 हजार मान के चला कि जौन मूरी पहले बोआ था उसमें लागत गिरत है
0: अरे ठीक है तो 2 महीने में 60-70 हजार कमाई ले कब
1: 30 दिन में तैयार हो गई एक प्रकार से
0: 30 दिन में 70 हजार के कमाई ले दो
1: तो मतलब ये कि बड़े भाव से पड़ी जब से मूली बोवत है ऐसा मूली के भाव कमाओ मिला ना अब भी मूली के भाव बिल्कुल टिका ही बा
0: नहीं अबे तो ऐसे रहा भाई कह रहे
1: अब आ यही बटे अब फिर पीछे लगी बटे यह ज्यादा जा 2-3 दिन बाद
0: तैयार हो जाए
1: हाँ 10-10 बिस्सा कहते यह बोए है यह तैयार है बटे
0: तो वो बेच ले
1: यह वाली बेच ले तो बढ़िया इनकम हमको
0: पालक भी बोए है
1: पालक भी बोए है 10 बिस्सा लेकिन पालक जो है बहुत अच्छी नहीं है वो कुछ छिदाई छिदाई हो गई अब जो उन बोवा थे खेत बनाए है एक बीघा खेत बनाए है अब एक बाद हम वही जान ले कि पालक और गाजर यह मेन फसल बाटे साग सब्जी वाले में सोवा मेथी अब खेत अब एक करे के बाद तब सोवा मेथी वो धनिया सोवा कुछ जने सोवा हमारे यहाँ बोए दे हैं लेकिन थोड़ा से नच के आगे पीछे बोए तो का हम कराऊ ले भाई
0: नहीं सही बात
1: अब भाई आगे पीछे न कर बस सब एक संघन बोई दे भाई तो न ओकर निर्वाही हो पाए न गुणवाही हो पाए तो खेती बढ़िया न हो पाए
0: और जो और का सब्जी में खुरथी का के हाथ रहे
1: खुरथी खुरथी 10-20 बोए है खुरथी भी सही है निर्वाही निकलत नहीं बस है
0: अच्छा
1: निकलत नहीं बटे फूल ले कतौ जतौ फर है खुरथी में आवत बा
0: शुरू होत
1: बा हाँ शुरू होत बा
0: और मौसम भी सही हो
1: मौसम सही बा अब खुरथी के लिए बहुत बढ़िया मौसम
0: तरोई
1: तो 2 बीघा बोए रहे निकल रही अब यहाँ से
0: दाम तो बढ़िया मिला
1: बढ़िया 250-250 रुपया में वो बिचत रहे
0: वो कितना चढ़वाई करत
1: अरे बहुत कम चढ़ा तो वजन होता ना थोड़ा तो यह साल तरोई और मूली के अच्छा पैसा पाए जाते
0: अच्छा पैसा मिल गया
1: मतलब ऐसा पैसा पिछले वाले खेती में हम लोग नहीं पाए रहे लेकिन अब की बार जो खेती हुई है मान के चले कि बहुत बढ़िया
0: एक पीछे कारण ये पानी के रहा
1: पानी के रहा
0: समय से पानी गिरा
1: समय से पानी मिल गया मान लीजिए जैसे अगर बरसात समय समय पर न होते बराबर होते गए रिमझिम बरसे तो फसल बढ़िया से विकास कर
0: ऊपर से पानी मिला
1: ऊपर से पानी मिल
0: गया भरे पे तो कहूँ ज्यादा कहूँ कम
1: कहूँ कम ज्यादा मान लो आज के जरूरत में तो 2 रोज लाइटे ही नहीं वो ट्रांसफार्मर गड़बड़ हो गया तो वही से गड़बड़ हो गया
0: समय से पानी नहीं
1: समय नहीं मिल पानी
0: रोज वो एक तो ऊपर वाला पानी फायदा हो
1: जाता बहुत फायदा करा था अब जितनी यहाँ समय धाने होने में जो गाले में पानी चला गया अब वो पूरा भन्न से निकल गया
0: धान तो रेड़त हुई है बाल आवे
1: अरे एकदम से बिल्कुल

0: समझ लें कि देखा तो बना था धान के खेत के अगल बगल टड़ा हो जा तो लागे कि बहुत बढ़िया खेती बा।
1: एकरे अलावा और का कुछ कहे बाटे?
0: एक के अलावा भैया ये अब तैयारी करते हैं कि अब गाजर बुवाई देवे। हाँ, गाजर के खेत हम बनावत है। टमाटर एक बीघा के बिया हम
1: अच्छा,
0: डाले है।
1: अच्छा,
0: और टमाटर हम अपने से डाला। एक बार हम जब टमाटर डाला तो हमारे टमाटर बढ़िया से उबे नहीं हुए। इतना बरसात हो गया, हालांकि ओका घेरे रहे,
1: उबाई ठीक है,
0: मूंधे रहे, लेकिन एक दिन उभाल दे रहे, सही समय पर रहबे नहीं हुए, क्यों पहुंच नहीं पाए। सारी बेहन गिर गए, लपट गए, लंगड़ हो गए, बढ़िया से नहीं हुए। हमका फिर से टमाटर के बेहन डाले के पड़िए। अब की बार बढ़िया आए घेरिन दे ऊपर
1: नहीं ठीक
0: ओका समय समय पे जैसे धूप लागेगा तो पन्नी को हटाई दे थी तो धूप लागत था। अब बेहन तैयार हो
1: जाए तो पुआल डाल देते वहीं पे।
0: हाँ नहीं तो पुआल नहीं डाले ही, लेकिन एक बढ़िया से पॉलीथीन रही,
1: पानी न जाए,
0: पानी न जाए, क्योंकि जब बहुत तेजी के साथ बारिश होता तो बहुत नुकसान करता। हल्का पालिका बारिश होता तो ओके लिए कोई दिक्कत नहीं।
1: खेत ऊंचास रहा तो हो ही जाते,
0: खेत ऊंचास रहे तो कोई बात ही नहीं। अब जो है यह जो तरोई के

0: बरसात होगी, हालांकि ओका घेरे रहे
1: वही ठीक है हो
0: मुंधे
1: जाए।
0: रहे, लेकिन एक दिन उभाल दे रहे और सही समय पर रहा नहीं वे क्यों पहुंच नहीं पास,
1: साड़ी जो अब
0: सारी बेहन गिर गई लपट गई लंगड़ हो गई बढ़िया से नहीं भाई। हमका फिर से टमाटर के बेहन डाले के पड़िए, अब की बार बढ़िया आए भाई घेरिन दे ऊपर से,
1: नहीं ठीक
0: ओका समय समय पे जैसे धूप लगेगा तो पन्नी को हटाई दी थी तो धूप लागत था, अब बेहन
1: कुछ
0: तैयार
1: लोग
0: हो
1: तो
0: जाए।
1: पुआल डाल देते हैं वहीं पे
0: हाँ नहीं तो
1: जो
0: पुआल नहीं डाले ही, लेकिन
1: है
0: एक बढ़िया से पॉलीथीन रही
1: तो पानी ना जाए यही
0: पानी न
1: ना।
0: जाए, क्योंकि जब बहुत तेजी के साथ बारिश होता है तो बहुत नुकसान करत है,
1: हाँ
0: हल्का पालिका बारिश होता है तो ओके लिए कोनो दिक्कत नहीं बा,
1: खेत उचास रहा तो हो जाते जो
0: खेत
1: है।
0: उचास रहे तो कोनो बात ही नहीं बा। अब जो है यह जो तरोई के खेत उजाड़ देते ही, अब यह उजाड़ के एक पलाव कराई दे भाई तुरंत, एक वही ट्रैक्टर से जो है एक जो गवा बाटे चार दाई दस दाई ट्रैक्टर घुमा देवे तो ये सब जो है
1: तैयार हो जाए सब।
0: पूरा गोलिया जाए, और एक गड्ढा बगल खेत के बगली गड्ढा बने ही
1: अच्छा
0: हाँ,
1: अच्छा
0: और वही में ले चल के सब पलट देवे, काम
1: हाँ
0: खत्म वही पड़ा रहे कुछ दिनों
1: सड़
0: तक,
1: जाए खाद
0: सड़ जाए
1: बन
0: तो
1: जाए।
0: खाद हो जाए, और ओके बाद वही में हम जोन बटे टमाटर रखे ज्यादा ज्यादा 15 दिन बाद
1: लगावे लाए हो जाए
0: लगावे ला हो जाए बढ़िया, बहुत अच्छी बेहन आई बा,
1: बहुत बढ़िया।
0: तो एक
1: वैरायटी
0: बीघा
1: भी अच्छा
0: टमाटर
1: ले आए हो
0: हाँ
1: प्रजाति।
0: वैरायटी बहुत बढ़िया है हाँ
1: अच्छा बताओ इस सब के अलावा जोन बाटे है
0: हाँ
1: खाद का है जैविक जैसे बताए एक व्यवस्था हो के रासायनिक खाद पे जोड़ देते
0: नहीं, ज्यादातर जैविक खाद के गोबर के खाद के हम इस्तेमाल करी थी,
1: अच्छा
0: कुछ
1: करते
0: हमारे लगे खाद हो जाता और कुछ हम अगली बगली से ट्रैक्टर से
1: खरीद
0: खाद
1: लेते।
0: उठाए ले आए थे, और ओका जो है एक ही जगह गिरवाई गई थी, और बढ़िया वो जब बनी रहता ही है और जब वो कहा तो ओका मजदूर से फेंकवाई दी झगुआ जोर,
1: नहीं बढ़िया कर रहा था भाई।
0: तो रासायनिक खाद बहुत नहीं ले, रासायनिक खाद ले तो बहुत बहुत जरूरत पड़त नहीं,
1: नहीं जब जैविक खाद जोड़ देते हैं तो जरूरत ही नहीं, हरी खाद गोबर खाद यही बहुत हो
0: बहुत बहुत
1: जाता।
0: बहुत ऐसे फसल अच्छी आवत है
1: फसल अच्छी और जमीन बनी रहा
0: बनी
1: था।
0: रहा था, ओकर जो भुरभुरापन होता है वो बना रहा था,
1: उपजाऊपन बना रहा था
0: दवा पवा
1: जमीन
0: का बहुत छिड़काव कम करे देखा मिट्टी एकदम बनी रहे
1: बनी रहा
0: अच्छी से
1: था।
0: फसल
1: हाँ
0: तैयार
1: वो
0: हो।
1: तो रासायनिक खाद रासायनिक दवा से ही मिट्टी ज्यादा खराब
0: बिल्कुल
1: होती है।
0: बिल्कुल भाई, यह साल जैसे बढ़िया से तुहार ग्रोथ हो गई, लेकिन अगले आने
1: अगले
0: वाले
1: साल
0: साल में
1: हाँ
0: आपके बढ़िया फसल ना हो,
1: कम हो
0: लेकिन
1: जाए तो।
0: अगर जैविक खाद हरी खाद और गोबर के खाद के प्रयोग आप करें तो ये मान लें कि आपके मिट्टी के कोनो प्रकार से कमी ना आए, आप फसल बराबर रहे।
1: नहीं बहुत बढ़िया
0: अब
1: भैया।
0: मौका है कि भाई तुहार गड़बड़ हो जाए,
1: और ये वो
0: अब
1: तो
0: लेनी
1: अलग
0: देनी
1: बात
0: भगवान
1: है
0: के
1: भाई,
0: हाथे बाटे
1: वो तो अलग
0: हाँ
1: बात है ये
0: हाँ
1: का दिन का करवा। नहीं बहुत निक बात भाई। हम कहे कि ज्ञान सिंह जी आप आए अपने खेती किसानी का अनुभव बांटा, हमारे किसान भाई आपकी तरह से मूली की खेती ले तो नहु बढ़िया फायदा कहीं पर ही,
0: जी
1: तो आपको जानकारी दे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भैया बहनी हैं किसान चचा सुनिन गुणे लाभ उठावें, पंचायती से बिदर लेके बेला भो तो पंचो राम राम।
3: अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पंच हैं अपने अपने उम्र के हिसाब से आपन अंश जौन है वही का लगावत है और सरकारों पैसा लगावत है। और फिर भैया जब हम पंच 60 साल के हो जायत है तो फिर वो जैसे पेंशन होत है वही मेर हम पंचन का एक निर्धारित पैसा जौन है वो दियत है, जैसे हम पंच के जौन जिंदगी है वो आसान हो जात है।
1: बिल्कुल रामजीत भैया, ई योजना का लाभ जो है अपने हर किसान हर पंच बहन के यहाँ लेक चाहे।
0: हिमांशु भैया जौन अपने आसपास बदलाव हो रहा है
1: हाँ।
0: वही का हम पंच जानित है आज की खबरें में।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 160 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कृषि में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजना के अंतर्गत 10,59,82,000 रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। वहीं किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने, बीज भंडारण और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। यह धनराशि खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के बीजों सहित विभिन्न बीज आधारित मदों पर खर्च की जाएगी। सरकार के इस वित्तीय प्रावधान से प्रदेश में उन्नत बीजों की उपलब्धता बढ़ाने और कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।
0: हिमांशु भैया।
1: हाँ रामजीत भैया।
0: देखो हम पंच अपने खेती पाती का काम काज तो करवे करी थे, साथ ही साथ हम पंच बागो बगीचा लगाई थे।
1: बिल्कुल।
0: और वही माँ कौनो मेर के अगर नुकसान हो जात है तो आपन जो कमाई है वो कम हो जात है। और कहूँ कीट पतंगा लाग गए तो कुछ कहन कनाई।
1: अरे भैया कुछ पूछबे ना करो, जो है कीट पतंगन में यहाँ तो इतना ज्यादा नुकसान हो जात है कि कहो बढ़िया हरे भरे बिरवा पूरी पूरी बाग सूख जाए वही माँ। तो इससे संबंधित आज केरी बात में यहाँ बहुत बढ़िया भेंट वार्ता लेकर आए हैं आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन और एका बता रहे हैं डॉक्टर हरिशंकर सिंह भैया।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आम की व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं वहां इस मौसम में हानिकारक कीटों के प्रबंधन के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें यानी IPM कैसे अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर HS सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस समय आम के जो फलदार वृक्ष हैं उनमें समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन।
4: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आम के फल की तोड़ाई के बाद में कीट प्रबंधन के हिसाब से बहुत खास समय है। समन्वित कीट प्रबंधन की शुरुआत इसी समय से की जा सकती है। इसमें 3-4 कार्य हैं जो बहुत जरूरी होते हैं। पहला, ये बगीचे की साफ सफाई और प्रूनिंग बहुत जरूरी है, जो कि पुरानी शाखाएं वगैरह हैं उनको काट करके निकाली जाएं और पत्तियों को हटाया जाए। इसके अलावा खेत की जुताई की जाए जिससे कि जमीन में छुपे हुए कीड़े मकोड़े सब मर जाएं। इसके अतिरिक्त बायोपेस्टिसाइड्स मार्केट में उपलब्ध होते हैं, उनका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं,
3: यानी जैविक उपाय।
4: हाँ, जैविक उपाय जो है उनको भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे कि आम के पुराने पेड़ों के तने पर बहुत सारे हापर या फुदका बैठे हुए मिलेंगे जो कि बारिश में उतर करके इस पर चले आते हैं और पूरी ठंडी इसी पर बैठे रहते हैं। जैसे ठंडी खत्म होगी और नई पत्तियां निकलना शुरू होंगी या जो है नए फूल आना शुरू होंगे, ये तने से उठ करके और धीरे धीरे फूल पर पहुंचना शुरू करेंगे। अगर अक्टूबर नवंबर के महीने में हम आम के तनों के ऊपर ही जहां छुप कर बैठे होते हैं वहीं पर अगर दवा डालकर इनको मार दें तो इनकी संख्या इस समय बहुत कम होती है, क्योंकि खाते पीते कुछ नहीं है, बड़ी सुसुप्ता अवस्था में रहते हैं, तो इनके ऊपर दवा पड़ते हैं इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है।
3: डॉक्टर साहब, जो आप मैंगो लीफ हॉपर की बात कर रहे हैं उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन सितंबर का महीना चल रहा है
4: जी,
3: अभी भी आम के फलदार वृक्षों पर जाला कीट की समस्या है।
4: जी जी जी, ये बहुत समयानुकूल प्रश्न है आपका। जाला कीट हर वर्ष बहुत भयंकर रूप से आम के बगीचों में आता रहता है और जो बगीचे बहुत ऊंचे हैं, पेड़ जहां पर बहुत ऊंचे हैं और छायादार हैं वहां पर इस कीट का बहुत भयंकर प्रकोप होता है। परंतु पिछले वर्ष भी जो है इसका प्रकोप कम इसलिए हुआ क्योंकि बारिश बहुत हुई थी, और इस बार भी इसका प्रकोप कम देखा जा रहा है क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हुई है। जिन क्षेत्रों में इसका प्रकोप हो रहा है वहां पर ये ऊपर की पत्तियों को जोड़ करके आपस में चाट करके खा जाता है,
3: जाला बना लेता है,
4: झोपा बना लेता है, और एक एक झोपे में 8-8, 10-10 कीड़े बैठे रहते हैं। इनके व्यवहार कुछ ऐसा होता है कि अगर इनके झोपे को या इनके झोंझ को आप छू लीजिए या किसी डंडे से खोद दीजिए तो ये तुरंत अपने झोंझ को छोड़ करके जमीन पर गिर

0: बिल्कुल भैया, और रुपया पैसा जोड़ के रखे चाहे अपन, बहुत सारे किसान पंच भाई जो है अपने बुढ़ापा तक का जब थोड़ा काम कम हो जाते हैं और रुपया काम तो उतने रहते हैं, तो वैसे समय में यहाँ कि कौने हिसाब से ने रुपया क्या बचत की जाए कि उस समय में यहाँ काम आवे।
1: बिल्कुल भैया, और यह बात जौन है आपन सरकारों सोचत है
0: हाँ
1: कि जौन हम पंच है हमार मान सम्मानों बना रहा
0: बिल्कुल
1: और कौनो मेर का दिक्कत ना हुए,
0: बिल्कुल
1: यही वजह योजना चलाए रही है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। यही माँ का है भैया
0: हाँ
1: कि जौन

0: पड़ते हैं। तो अगर इनकी रोकथाम करना है, लंबी जो है लग्गी हो या डंडा हो जिसमें कोई चीज़ बांध करके अगर आप इसको जो है जरा झोंझ को इनको आप हिला दें,
1: तेज हंसिया हो,
0: हाँ हंसिया हो, उससे भी अगर किसी तरीके से उसको डिस्टर्ब कर दे, छेड़छाड़ कर दे, तो ये सारे कीड़े जमीन पर नीचे गिर पड़ते हैं, फिर ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं और वहीं पर मर जाते हैं।
1: और कोई सुरक्षित रसायन?
0: हाँ, और अगर जो है नहीं जो है किसान भाई इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ हैं, वहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो जाता है, तो दवा डालना एकमात्र विकल्प रह जाता है। तो ऐसे में ब्यूवेरिया बैसियाना नाम की एक
1: जैविक
0: कीटनाशक, वो इस पर बहुत बढ़िया काम करती
1: है। जैविक कीटनाशक,
0: जैविक कीटनाशक है जो कि चूंकि ये जो कीड़े रहते हैं झोंझ में रहते हैं, वहाँ नमी बहुत रहती है और नमी में ही ये ब्यूवेरिया बैसियाना बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर इसका छिड़काव कर ले जाएं तो बहुत अच्छा नियंत्रण होगा। अब मान लो ये नहीं मिल पा रही है तो दूसरा तरीका ये है कि लैम्डा साई हेलोथ्रिन 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें, अन्यथा बहुत पुराने जमाने से किसान भाई क्विनल फास जो 1.5 ml दवा जो है मिला करके छिड़काव करते आए
1: प्रति लीटर,
0: प्रति लीटर, और यह दवा समझिए कि जाला कीट के लिए रामबाण औषधि मानी जाती है।
1: और जहां ब्यूवेरिया बैसियाना प्रयोग करना है तो माचिस की 1 डिबिया 1 लीटर पानी
0: के जी से? जी जी हाँ, माचिस के, हाँ ठीक कह रहे हैं
1: डॉक्टर साहब। तना बेधक कीट की भी समस्या, जो ट्रंक बोरर है
0: जी,
1: उसकी भी समस्या आम के बागों में बहुत ज्यादा आती है।
0: जी जी, ये ट्रंक बोरर मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि और जितने भी कीड़े लगते हैं, ये कीड़े आम को सीजन के हिसाब से नुकसान पहुंचा देते हैं। कोई फूल खा लेता है, कोई पत्ती खा लेता है, कोई फल को नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन आम का पौधा बचा रहता है। ट्रंक बोरर एक ऐसा कीड़ा है जो आम के वृक्ष को ही खत्म कर देता है
1: जी।
0: इसलिए इकोनॉमिक आर्थिक दृष्टि से अगर देखें तो ट्रंक बोरर बहुत खतरनाक कीड़ा, जिसको हम तना छेदक भी कहते हैं,
1: यानी तने में अगर लग गया तो पूरा पेड़ चाट,
0: हाँ पूरा पेड़ सूखने की संभावना हो जाती है। अच्छा, इसके साथ समस्या ये है कि ये अभी थोड़े दिन में इसकी अंडे देने की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी ये निकला है, इसका जो प्रौढ़ है अभी निकला है और ये अभी अंडा देना शुरू कर देगा। कीड़ा धीरे धीरे करके अंदर घुस जाएगा और अगले साल तक उसी के अंदर खाता रहेगा, बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा।
1: और बुरादा निकलता रहेगा?
0: बुरादा नहीं, बुरादा शुरू में नहीं निकलता है। जब ये आपका जुलाई अगस्त का महीना आएगा, जब ये कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है
1: जी,
0: तब ढेर सारा जो है पानी निकालता है, बुरादा निकालता है, तब इसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
1: तो इसका समन्वित प्रबंधन हो कैसे?
0: हाँ, समन्वित प्रबंधन का तरीका यह है कि जैसे इस समय अंडा दे रहा है ये, तो आम के वृक्ष के तने के ऊपर अगर संभव हो सके तो क्लोरोपाइरीफास 2 ml पर लीटर के हिसाब से 1.5 m तक केवल छिड़काव कर दें,
1: यानी जमीन की सतह से
0: 1.5 m ऊपर, केवल तने के ऊपर उस पर छिड़काव कर दे, जितनी नई इल्लिया या अंडे निकले होंगे वो सब मर जाएंगे। तो एक तो तरीका यह है। दूसरा, अब अगले सीजन में पता आप लगा पाएंगे कि ये अंदर घुसा है कि नहीं। तो इसके लिए किसान भाइयों को सलाह मैं ये देता हूँ कि आप जून जुलाई के आसपास अपने बगीचों का हर पेड़ का निरीक्षण निश्चित रूप से और नियमित रूप से करते रहें।
1: अगर पिछले साल घुसा है और इस समय बुरादा निकल रहा है तो?
0: हाँ, तो इस समय क्या कर सकते हैं, एक हंसिया ले लें। हंसिया से जो है जहाँ पर बुरादा निकल रहा है, छाल उसके जो है हंसिए के नोक से छाल पर मारें तो छाल हट जाएगी क्योंकि ऊपर से एकदम कमजोर हो जाती है। उसके अंदर बहुत सारा बुरादा भरा रहेगा, उसको साफ करके निकाल दें। उसमें देखेंगे तो एक छोटा सा छेद दिखाई पड़ता है, इसी छेद के अंदर एक घुसा रहता है
1: जी।
0: उसमें एक साइकिल की तीली या कोई चीज डाल करके अच्छी तरीके से उसको हिला दें और इसके बाद में अगर कीड़ा मर जाए तो मर जाए, ये एक अवसर की बात है। अगर नहीं मरता है तो उसमें कोई भी कीटनाशी, ये जो इंजेक्शन होता है जो आदमियों को सुई लगाई जाती है
1: जी, जी।
0: उसी में जो है
1: सिरिंज,
0: पानी में, हाँ, सिरिंज, उसमें जो है
1: दवा
0: भर करके और उसी छेद में मुंह लगाकर खूब तेजी से पिचकारी की तरह मार दें तो दवा अंदर तक घुस जाती है। उसके बाद वहीं बगल से गीली मिट्टी लेकर के उस छेद को अच्छी तरीके से बंद कर दें। इसके बाद में क्या करना होगा कि चूंकि आम के सतह के ऊपर से छाल हट जाती है तो बीमारियों को लगने की संभावना रहती है, तो अपनी जो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आती है, ये 2 से 2.5 g प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके उस पर छिड़काव कर दें, तो जिससे कि बीमारी,
1: या गाढ़ा लेप लगा,
0: हाँ गाढ़ा लेप भी लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं सूट गाल सिला की भी समस्या आती है?
0: जी जी, ये एक ऐसा कीड़ा है जो कि बाहर से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, केवल जब फूल आने का समय होता है, फूल आने के थोड़ा दिन पहले फूल की जगह पर छोटी छोटी गांठें आम की टहनियों में बन जाती हैं और किसान भाई जान ही नहीं पाते कि हो क्या गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो अंडा देना का काम होता है ये जो है अगस्त और सितंबर में ही होता है,
1: अभी से।
0: तो अगर इस कीड़े को रोकथाम करना है तो दवा डालने का समय केवल अगस्त और सितंबर ही है। अगर इस 2 महीने में चुक गए तो इस कीड़े को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर लगातार 2-3 साल तक किसी बगीचे में आप जो है 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में या 30 अगस्त के बीच में 2 बार स्प्रे आप कर चुके हैं तो 2-3 साल में वो खत्म हो जाता है, कीड़ा फिर नहीं आता है।
1: कौन सा सुरक्षित रसायन
0: सबसे बढ़िया दवा, चूंकि ये कीड़ा बहुत

0: कोमल होता है और पत्ती के अंदर बैठा रहता है। तो इसमें जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होती है जैसे इमिडाक्लोपिड, ये 0.3 ml पर लीटर के हिसाब से डालते
1: हैं, यानी 1 ml दवा 3 लीटर पानी के हिसाब।
0: जी जी जी। और इसी तरीके से एक थायमेथोक्साम दवाती है, उसको भी जो है इसी दर से इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: यानी 1 ग्राम 3 लीटर पानी।
0: जी हाँ जी हाँ, इसका छिड़काव करें और 2 छिड़काव कर दें तो सूटगाल सिल्ला का नियंत्रण आराम से हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर किसान भाई नोट कर सकते हैं, 94 37 63 57 36, 94 37 63 57 36, 9437635736।
1: डॉक्टर हरिशंकर सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में समन्वित कीट प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमांशु भैया।
4: हाँ रामजीत भैया।
3: देखो हम पंचन के बातचीत तो भैया चला करी, मूल तनी कुछ गीत गवनी हो जाए।
4: बिल्कुल भैया, अब सुना जाए बहुत बढ़िया लोकगीत खेमटा।

0: रामजीत भैया।
1: हाँ हिमांशु भैया।
0: देखो अपन किसान भाई तो सब मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो उन तनुक अलग तरीके से ने जो है किसानी कहके बढ़िया मेहनत कहके जो है बहुत बढ़िया मुनाफा कमाते हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो वह मैं यहाँ आज के किसान है इंद्र प्रकाश सिंह भैया और ये बता रहे हैं धान उत्पादन के बारे में। यहाँ
2: किसान भाइयों बहनों आइए आज आपको ले चलते हैं गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम ब्लॉक के जानीपुर गांव, जहां के नवोन्मेषी किसान इंद्र प्रकाश सिंह भैया टेलीफोन लाइन पर हैं। इंद्र प्रकाश भैया नमस्कार।
3: जी प्रणाम।
2: इंद्र प्रकाश भैया आप नवोन्मेषी खेती के लिए जाने जाते हैं, नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं, ये बताएं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: मैं यूपी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, एमएससी एजी हॉर्टिकल्चर से हूँ, 89 का पास आउट हूँ।
2: यानी लगभग 37 साल हो गया। तो खेती से जुड़ाव हुआ कब से?
3: 2002 के बाद।
2: कुल खेती की जमीन है कितनी आपके पास?
3: मेरे पास करीब 9 एकड़ है।
2: तो 9 एकड़ में कौन कौन सी फसल इस समय आपके खेत में है?
3: वर्तमान समय में तो धान है 6 एकड़ के।
2: तो कौन कौन सी वैरायटी आपके खेत में है इस समय?
3: यमुना गोल्ड है 5 एकड़ और 1 एकड़ जो है ये राजभोग है।
2: क्या खासियत महसूस कर रहे हैं दोनों वैरायटी जो आपके खेत में है इस समय?
3: जैसे यमुना गोल्ड जो है ये मोटा धान है और ये वेट ज्यादा पकड़ता है।
2: अच्छा वजन?
3: वजन। और राजभोग जैसे सुगंधित है और वो खाने के लिए है।
2: तो धान की रोपाई और उसके पहले नर्सरी से लेकर के धान की कटाई तक कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम आप धान में कर रहे हैं?
3: देखिए मैं जब धान लगाता हूँ तो निश्चित रूप से ये करता हूँ कि गेहूँ की कटाई के बाद ढैंचे को लगाता हूँ और ढैंचा इस तरीके से मैं करता हूँ कि 50 दिन का ढैंचा हो जाए तो 20 से 22 दिन का मेरी नर्सरी हो जाए।
2: अच्छा तो उसके बाद पलटाई करते होंगे हरी खाद की?
3: उसको पलटने के बाद जो है तुरंत रुपाई कर देते हैं।
2: पूरा 6 एकड़ में?
3: 6 एकड़ में।
2: तो आपने इस साल नर्सरी कब डाली और रुपाई कब की?
3: जैसे आमतौर पे हमारे क्षेत्र में जो है मध्य अप्रैल के बाद गेहूं कट जाता है
2: जी,
3: और अप्रैल लास्ट में जो है ये पानी चला करके ढैंचे की बुआई हो जाती है। जब ढैंचा मेरा औसतन 15 से 20 दिन का हो जाता है उसके बाद नर्सरी पड़ जाती है, क्योंकि जो इसके नोड्यूल्स हैं जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो उसमें पलटने के बाद जो है जहाँ तक मेरा अनुभव है कि अगर ढैंचे के खेत में जब धान की रुपाई हम करते हैं तो 2-3 चीजें अपने आप हो जाती हैं। पहला कि खर पतवार का नियंत्रण अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं एक लेयर बना लेती हैं, खर पतवार उगने की संभावना बहुत कम हो जाती है या यूं कहें कि नगण्य हो जाती है। राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो एटमोसफियर से किया रहता है वो मेरा धान जो है वो पा लेता है,
2: यानी खेत का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है।
3: हाँ, और ये जल धारण क्षमता
2: बढ़ जाती है। फिर रोपाई कब करते हैं आप?
3: सपोज करिए कि अगर हम 1 अप्रैल को हम डाले हैं ढैंचे को तो नर्सरी मेरी पड़ेगी 20 मई को।
2: हाँ,
3: यही रेशियो रहता है।
2: तो इस समय आपकी फसल कैसी चल रही है?
3: अच्छी है।
2: फसल की भूख मिटाने के लिए प्रति एकड़ कितनी खाद की मात्रा आप देते हैं, रासायनिक खाद या जीवाणु खाद?
3: जैसे हम नाइट्रोजन जो है करीब 100 केजी पर हेक्टेयर, फास्फोरस जो है वो 80 और पोटास जो है 70 से 75 केजी,
2: यानी 2.5 एकड़ की मात्रा आप बता रहे हैं
3: जी।
2: तो ये जो भी रासायनिक खाद की मात्रा है किस्तों में देते हो?

0: होंगे।
1: नहीं, जैसे फास्फोरस और पोटास तो सॉइल एप्लीकेशन में पड़ जाती है,
0: यानी रोपाई के पहले।
1: हाँ, रोपाई के पहले। लेकिन नाइट्रोजन को हम जो है वो डिवाइड कर देते हैं तीन दफा
0: जी।
1: जैसे खरपतवार अगर आ गया मेरा 30 दिन बाद, खरपतवार का नियंत्रण करने के बाद जो भी 100 kg नाइट्रोजन है मेरा, उसका 1/3 एक टॉप ब्लीचिंग
0: जी,
1: फिर जो है 50 दिन पे एक टॉप ब्लीचिंग और 60 दिन के बाद एक टॉप ब्लीचिंग,
0: यानी तीन किस्तों में नाइट्रोजन की मात्रा देते हैं।
1: जी जी।
0: इस समय कोई हानिकारक कीट या बीमारी के लक्षण तो नहीं है? अगर है तो उनका प्रबंधन कैसे आप कर रहे हैं अपने केस पर?
1: जैसे हमारे यहाँ आमतौर पे जो है ये हरदा रोग लगता है
0: जी,
1: लेकिन ये जो हरदा रोग है मेरा, उसका स्वाइल ट्रीटमेंट पहले ही कर लिया जाता है।
0: क्या उपाय करते हैं?
1: जैसे हेक्साकोनाजोल का जो है
0: जी
1: लिक्विड, उसमें सीड में ये कर लेते हैं हम,
0: यानी बीज शोधन कर लेते हैं।
1: जी जी।
0: क्या खड़ी फसल में सुरक्षात्मक छिड़काव भी करते हैं?
1: सर, सबसे ये है कि अगर हरदा रोग लग गया आपका
0: जी
1: खेत में, तो वो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको।
0: लेकिन सुरक्षात्मक अगर पहले ही छिड़काव कर दें तो
1: सीड ट्रीटमेंट ही उसका बेस्ट ये है।
0: क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार आप धान उत्पादन से जुड़े हैं, तो एकड़ पीछे कितना लागत गिरती है, उत्पादन कितना ले लेते हैं और आपका मुनाफा होता कितना है?
1: एक एकड़ में औसतन जो है आपका 25 क्विंटल हो जाएगा
0: पैदावार
1: हो जाएगा जमुना गोल्ड का।
0: और राजभोग का?
1: वो कम होता है
0: लगभग,
1: अब उसको मान के चलिए कि एकड़ में वो 15 के ऊपर नहीं जाएगा।
0: लेकिन उसकी कीमत अधिक मिलेगी आपको?
1: हाँ, कीमत अच्छी मिल जाती है।
0: और लागत में भी अंतर होगा?
1: नहीं, लागत तो लगभग दोनों की बराबर ही आती है।
0: तो क्या आंकड़ा है आपका आय व्यय?
1: जैसे अगर उसको हम कैलकुलेट करें, 10 से 12 पड़ेगा एकड़ में।
0: 10 से 12 हजार?
1: हजार।
0: और अगर आप 25 कुंतल धान बेचते हैं
1: तो जैसे ये समर्थन मूल्य के हिसाब से दें तो 24 से को वो मल्टीप्लाई कर दें 25 में,
0: यानी लगभग 60 हजार।
1: जी।
0: तो लगभग 40,000-50,000 की बचत हुई आपकी?
1: ना, बचत हो जाएगी।
0: बहुत सारे किसान भाई बहन उत्सुक होंगे आपसे मिलने के लिए या आपसे बात करने के लिए, तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 97-93-67-67-71 97-93-67-67-71 97-93-67-67-71
0: इंद्र प्रकाश सिंह भैया, आज आपसे इतनी अच्छी बातचीत हुई कि आप MSc कृषि की पढ़ाई करने के बाद लगभग 25 सालों से आप खेती से जुड़े और इस समय आपके खेत में 6 एकड़ धान की फसल अच्छी लहलहा रही है, आप खुशहाल हैं और किसान भाई बहन आपसे सीख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: देखो, अपने खेती पाती में मौसम के जानकारी हो बहुत जरूरी रहा भैया।
7: बिल्कुल भैया,
6: तो अपने पंच भाई का मौसम के जानकारी बताई दीन जाए।
7: जो मौसम है वो है भारत सरकार

0: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग प्रादेशिक मौसम केंद्र लखनऊ से ने प्राप्त हुआ है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ 24, 25, 26 यानी अगले 7 दिन के वर्षा पूर्वानुमान इस प्रकार है। कहीं कहीं पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़े संभावना है। और अगले 7 दिनन में यहाँ मौसम संबंधी जो चेतावनी है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। तो भैया ऐसे समय में यहाँ खुद का, अपने घर परिवार के यहाँ और साथ में यहाँ अपने हरहा गोरुन के यहाँ सुरक्षित स्थान पर बांधे और उनका ध्यान रखें।
1: बिल्कुल भैया, यही के साथ है, अगर कोनो बात हम पंचन से कहे चाहें तो वकरी तय कागज कलम उठाए लिए और लिखें हमार पता कार्यक्रम किसानवाणी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001। जे पंच मेल भेजे चाहें वह मेल लिखें
0: फार्म एंड होम AIRLKO@gmail.com। तो भैया घड़ी इशारा कर रही है, समय हो चुका है, तब तक के लिए लीजिए पंचन से ने आज्ञा। जय हिंद।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ, कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का करेंगे उद्घाटन, जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख, मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी, रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण की वरुण विहार और नैमिष नगर आवासीय योजनाओं का भूमि पूजन किया और भूखंडों के पंजीकरण का

0: शुभारंभ किया। ये परियोजना आगरा एक्सप्रेसवे के समीप 12,000 करोड़ रुपए से 10,680 एकड़ में विकसित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 2,166 करोड़ रुपए से प्रस्तावित 5 बहुमंजिला अपार्टमेंट का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वरुण विहार 6,500 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में विकसित होगा, जहां 6,00,000 से अधिक लोगों के लिए आवासीय सुविधा होगी। नैमिष नगर 4,100 एकड़ में विकसित होगा और 4,00,000 से अधिक लोग इसका लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ को केवल महानगर और जनपद तक सीमित न रखकर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में व्यवस्थित विकास किया जा रहा है। लखनऊ आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहा है।
1: ये आज की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकता को प्लांड वे में अर्बन डेवलपमेंट के इंटीग्रेटेड प्लान को आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक था। एक जगह पर सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त हो, आज के समय में जब एजुकेशन के हब के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है, हेल्थ केयर के नए हब के रूप में लखनऊ को नई पहचान मिली है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के एक नए केंद्र के रूप में लखनऊ आगे बढ़ा है।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने श्री गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक तकनीक से जोड़कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गौतम बुद्ध नगर में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेड शो का आयोजन इंडिया एक्सपो मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: ट्रेड शो में वियतनाम, जापान, सिंगापुर, रूस, ऑस्ट्रिया और बेलारूस को पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। इस आयोजन में 72 देशों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 600 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्टेट शो के समापन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 2016 में शुरू हुई स्टार्टअप इंडिया पहल ने भारत की उद्यमिता संस्कृति में बड़ा बदलाव किया है। करीब 400 सर्टिफाइड स्टार्टअप से शुरू हुआ यह सफर मार्च 2026 तक 2,00,000 से अधिक सर्टिफाइड स्टार्टअप और 23,00,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 10 साल में देश नए स्टार्टअप में दुनिया का नेतृत्व करे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
4: पिछले 10 वर्षों ने देश की क्षमताओं को साबित किया है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले 10 वर्षों में भारत नए स्टार्टअप ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व करे।
3: सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले मेरठ के स्टार्टअप के फाउंडर आशुतोष वशिष्ठ ने बताया कि सरकार से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिला।
5: बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत काफी सारा सपोर्ट इकोसिस्टम जो स्टार्टअप्स के लिए डेवलप कराया है, वो स्टार्टअप का एक बोन है जो कि उसको आने वाले टाइम में काफी स्ट्रोंगर करेगा।
3: सरकार के प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में करीब 50% स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से सामने आए हैं। संगीता श्रीवास्तव, आकाशवाणी समाचार, मेरठ।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश

0: सत्र के विभिन्न 6 वर्षीय पाठ्यक्रमों और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई अन्य यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। बिहार में पंजीकृत स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से महोबा जा रही थी और उसमें करीब 35 यात्री सवार थे। ग्रेटर नोएडा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि आग बस के इंजन से शुरू हुई और तेजी से बस के अन्य हिस्सों में फैल गई। बस के चालक और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। जेवर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि बस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है।
1: प्रारंभिक जांच में वो बस महोबा जा रही थी दिल्ली से और नेशनल परमिट की बस थी, बिहार में रजिस्टर्ड है। ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, इमरजेंसी गेट नहीं खुला जिसके कारण सभी लोगों को नहीं बचाया जा सका। इसकी जांच कराई जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। एशियाई खेल 2026 में अमेठी के सलमान खान ने रोइंग की पुरुष डबल्स स्कल्स में भारत के लिए कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। सलमान और सतनाम सिंह की जोड़ी फाइनल में तीसरे स्थान पर रही। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेता चीन से 3.48 सेकेंड और रजत पदक विजेता उज्बेकिस्तान से 2.76 सेकेंड पीछे रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेताओं को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दृढ़ प्रयास ने इस जोड़ी को पोडियम पर एक सुयोग्य स्थान दिलाया है। पदक तालिका में भारत के कुल पदक की संख्या 15 हो गई है। इसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। राजधानी लखनऊ, बलरामपुर, जौनपुर समेत कई अन्य जनपदों में कल से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 सितंबर तक प्रदेश में तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एलडीए की वरुण विहार और नैमिष नगर योजनाओं का किया शुभारंभ। कहा 10 लाख से अधिक लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के 4th संस्करण का करेंगे उद्घाटन। जापान, सिंगापुर और रूस समेत 6 देश पार्टनर कंट्री के रूप में होंगे शामिल। ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया हादसे पर दुख। मृतकों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि का किया ऐलान। और एशियाई खेलों में चमकी अमेठी के सलमान खान और सतनाम सिंह की जोड़ी, रोइंग की पुरुष डबल स्कल्स में जीता कांस्य पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। लीजिए इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले सुनिए राकेश मालवीय का काव्य पाठ।
1: पहली कविता है मेरी माटी मेरा देश। सुंदर माटी है वीरों की, कितनों ने बलिदान दिए, लहू बहा

कर भारत माहित कितना नित सम्मान जिए। सुंदर माटी है वीरों की, कितनों ने बलिदान दिए। लहू बहा कर भारत माहित कितना नित सम्मान जिए। आज एकता हम सब की हो, भारत देश पुकार रहा। आज एकता हम सब की हो, भारत देश पुकार रहा। दुख के दिन अब बीते सारे, दुख के दिन अब बीते सारे। खुद को चलो संवार रहा, खुद को चलो संवार रहा। जय जय वसुधा वंदे भारत, जय जय वसुधा वंदे भारत। कण कण देश निहार रहा, रिपु में ताकत आज नहीं है, अब भारत ललकार रहा। रिपु में ताकत आज नहीं है, अब भारत ललकार रहा। ताकत हम सब की है कितनी, मद गौरव अरमान लिए। सुंदर माटी है वीरों की, कितनों

भारतवासी दीपित मन हर साएगी। याद करेंगे फिर उनको, याद करेंगे फिर उनको, जिसने जीवन दान दिए। सुंदर माटी है वीरों की, कितनों ने बलिदान दिए, कितनों ने बलिदान दिए। हरी भरी हो धरती फिर से, हरी भरी हो धरती फिर से, पौधारोपण आज करें। पंच शक्ति संख्या हो प्यारी, हरियाली रसधार भरे, हरियाली रसधार भरे। धरती अंबर उड़े तिरंगा, फिर लय में श्रृंगार करें। वीरों के शोणित को फिर से नमन आज सतबार करें। वीरों के शोणित को फिर से नमन आज सतबार करें। उरण न होंगे दीवानों से, जिसने कार्य महान किए। उरण न होंगे दीवानों से, जिसने कार्य महान किए। सुंदर माटी है वीरों की, सुंदर माटी है वीरों की, कितनों ने बलिदान दिए। सुंदर माटी है वीरों की, कितनों ने बलिदान दिए। लहू बहाकर भारत माहित, कितना नित सम्मान जिए, कितना नित सम्मान जिए। अब मैं कुछ दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अनमोल, जिसके मन में जो रुचे वैसे उसके बोल, जिसके मन में जो रुचे वैसे

रहा जो हमें प्रेम भाव से भीज, प्रेम भाव से भीज। पुरुष नाम का पुरुष है, पुरुष नाम का पुरुष है, लखता

सब चाहते, मन चाहा सब चाहते, मनन करे नहीं कोई। मन चाहा सब चाहते, मनन करे नहीं कोई। प्रकट लुप्त हो रही है कपट बीज ज्यों बोए, कपट बीज ज्यों बोए। चल मन अब एकांत में, यहाँ बहुत है शोर। लता मुकुट हो जिस जगह और सुहानी भोर, और सुहानी भोर। कोकिल की कू कू सुना अपना सुंदर गाँव, कोकिल की कू कू।

चाकिया बैठ आम की छाँव, बैठ आम की छाँव। गाय रंभाती शाम को बछड़े का लख प्यार, गाय रंभाती शाम को बछड़े का लख प्यार। छोटा बच्चा पी गया गैया की रसधार, छोटा बच्चा पी गया गैया की रसधार। जहां मान हो बड़ों का हो

0: पावन भूमि को, ऐसी पावन भूमि को नयन ढूंढते यार, ऐसी पावन भूमि को नयन ढूंढते यार। अब मेरी अगली कविता है जो नई प्रवृत्ति में लिखी गई है, गांठ। इस पन्नी में सामान है, इस पन्नी में सामान है और ऊपर से लगी यह कठिन गांठ, और ऊपर से लगी यह कठिन गांठ। उन्होंने कहा ए जी यह गांठ खोल दीजिए, उन्होंने कहा ए जी यह गांठ खोल दीजिए। ऐसी नहीं कि गांठ खोलने की कोशिश उन्होंने नहीं की, गांठ तो गांठ होती है, गांठ तो गांठ होती है। मैंने कोशिश की सिर्फ हाथ उंगलियों से नहीं, बल्कि गांठ खोलने की कोशिश की, भाव मुद्रा भी बदली, बल्कि गांठ खोलने की कोशिश की, भाव मुद्रा बदली। मेरी उंगलियों की गंभीर कोशिश के साथ दांत भिजे, दिमाग में भी कोशिश जैसा तनाव। पन्नी बिना फटे गांठ खोलनी थी, पन्नी बिना फटे गांठ खोलनी थी, अपने उस्ताद होने की हुकारी बोलनी थी। आंखों में भी जोर पड़ा, आंखों में भी जोर पड़ा, मैं और दृढ़ता से अड़ा। समझ में आया गांठ नहीं पड़ने देनी चाहिए, समझ में आया गांठ नहीं पड़ने देनी चाहिए, गांठ के बाद टूट हो जाती है, गांठ के बाद टूट हो जाती है। पर बड़े सलीके से मैंने धीरे धीरे गांठ खोली, बिना किसी नुकसान के सिखा गई गांठ, बड़ा कठिन होता है इसे खोलना, सिखा गई गांठ, बड़ा कठिन होता है इसे खोलना, गांठ का समाधान जब पत्नी चाहे हो ही जाता है, शायद पौरुष जाग जाता है, फिर याद आता है बेचारे वे जिनकी पत्नी नहीं इसलिए वे गठियाते नहीं, बेचारे वो जिनकी पत्नी नहीं इसलिए वे गठियाते नहीं, अथवा अकड़ू बनकर टूट जाते हैं। जब तक खुल जाए गांठ अच्छी है, जब तक खुल जाए गांठ अच्छी है, वरना वह ही नर बच्ची है। इसीलिए गांठ से बचें, इसीलिए गांठ से बचें, या फिर एक कड़क पत्नी रचें, या फिर एक कड़क पत्नी रचें।
1: काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राकेश मालवीय का कविता पाठ, और लीजिए अब इसी कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर विनम्र सेन सिंह से उनकी कविताएं।

0: है।
1: काव्य कौमुदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर विनम्र सेन सिंह का काव्य पाठ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रही हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें कलाकार हैं संगीता भारद्वाज। लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये भक्ति रचना।

अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे संगीता भरद्वाज के स्वर में सूरदास का ये भजन, और लीजिए अब सुनिए इन्हीं के स्वर में आरसी प्रसाद का लिखा ये गीत।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संगीता भारद्वाज के स्वर में गीत और भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आगाज करने जा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुम की इस कव्वाली के साथ। आवाजें हैं अमीन साबरी, फरीद साबरी और साथियों की। इसे लिखा है समीर ने, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: आपकी एक छोटी सी आदत ला सकती है बड़ा बदलाव। चिप्स का रैपर, बोतल या चाय का कप, इन्हें ट्रैक पर नहीं कूड़ेदान में डालें, क्योंकि आपकी एक सही पहल लाखों यात्रियों के लिए एक स्वच्छ रेलवे बनाती है। न कचरा फैलाएंगे, न फैलाने देंगे।
1: रेलवे ट्रैक और स्टेशन को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है। आइए इसे मिलकर स्वच्छ रखें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: आँखियों के झरोखों से लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। आवाज़ है हेमलता की, गीत संगीत रविंद्र जैन का है।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म जुर्म का गीत। आवाज़ें थी साधना सरगम और कुमार सानू की। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे राजेश रोशन। और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सबरस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं फिर अनुपमा देश पांडे के स्वर में इस भक्ति रचना के साथ।

सबरस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज़ में ये गीत रचना, और लीजिए अब सुनिए हरिहरन की आवाज़ में ये गज़ल।

इस गजल के साथ ही सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ

0: आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी हैं और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी भी क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

0: सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की। मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
2: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
1: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
3: विकसित भारत का जो आशावादी हमारे लक्ष्य हैं, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं, उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
1: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया।
1: उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर

0: किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वो उचित समझे एसआईआर आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
5: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें एक कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
6: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रश्मिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
7: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल्ड लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा

0: मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
1: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशी बिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
4: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत के निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
3: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual.

0: He said seva parmo dharma, service as the highest duty should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी भी क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
0: During the interaction, Sevayatri shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organised by a media house in New Delhi. The Defence Minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and the security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soybean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. Prime Minister Narendra Modi is completing 25 years in public service, a journey defined by the mantra of Jan Seva Se Desh Seva and a relentless commitment that continues. Guided by this vision for Seva and Sushasan, the government has been ceaselessly working towards achieving the goal of a Viksit Bharat by 2047. Through inclusive development and social empowerment, this dedication is transforming lives. Today, in our special series, we bring you an instance of how this vision has been translated into action through the Mission Karma Yogi.
2: Mission Karma Yogi was launched in September 2020, envisioning a future-ready civil service rooted in India ethos with a global perspective. Mission Karma Yogi is aimed at strengthening the capacity and skills of government officials and making civil services more citizen-centric. The iGOT platform under Mission Karma Yogi has over 1.70 crore registered users, and it hosts over 6,500 courses across domain, functional and behavioral competencies. It also includes more than 200 courses on AI and emerging technologies designed to equip government officials with essential digital knowledge and skills. Addressing an event, Prime Minister Narendra Modi said that the objective of Mission Karma Yogi is to make the government officials citizen-centric.
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं. इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए. इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है. हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे. टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है.
2: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन एस राधा चौहान सेड दैट मिशन कर्मयोगी वाज एस्टेब्लिश्ड विद द विजन ऑफ अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल्स ऑफ विकसित भारत 2047 इन अ टाइमली एंड हाई क्वालिटी मैनर.
4: विकसित भारत का जो एक बहुत एस्पिरेशनल हमारे लक्ष्य है.
5: द एम्बिशियस गोल ऑफ विकसित भारत इज टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम एंड विद क्वालिटी. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आवर पब्लिक सर्वेंट्स मस्ट इंश्योर द डिलीवरी ऑफ क्वालिटी सर्विसेज टू सिटीजन्स. दिस अप्लाइज नॉट ओनली टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो टू एवरी स्टेट एंड एवरी लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. फ्रॉम ग्रास रूट्स वर्कर्स टू सीनियर सेक्रेटरीज एंड पॉलिसी मेकर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग इज नीडेड अक्रॉस द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की. विद दिस विजन मिशन कर्मयोगी वॉज established 5 years ago.
4: 5 years purve sthapit kiya gaya.
2: All central government employees and officers of the All India Services are required to complete prescribed courses on iGOT annually, which get captured in their annual performance appraisal reports. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news.
6: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alert.

0: rising bond yields all over the world, and that's giving rise to nervousness across the world. So that's also affecting the stock markets. But today, perhaps the biggest headline that caused the great fall that we witnessed in the stock market was a report, a discussion paper that IRDA released, which basically calls for lower commissions, stricter regulation of insurance companies. That actually has an impact on the fee income of banks, impacting their profitability, which explains why some of the bank stocks actually fell. So that impacted the stock markets.
1: Government sources today emphasize that merchant discount rate MDR on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic business. I beg your pardon, prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वज़ीर-ए-आज़म ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर निकालने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। ओडिशा में जुनूबी इलाकों और मुत्तसिला शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के गहरे दबाव के बायस शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 1,248 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,581 पर बंद हुआ। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में चांदी के तमगे हासिल किए हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य का तमगा जीता है, जबकि डबल स्कल्स रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांस्य के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2047 तक तरक्की याफ्ता भारत की तामीर के लिए सभी को नौजवानों के अहम रोल को पुरजोश तरीके से बढ़ावा देना होगा। जनाब मोदी ने वड़नगर से वाराणसी का सफर कर रहे सेवा यात्रियों से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने कहा कि सियासत, इंतखाबात और निजाम हुक्मरानी की अपनी अपनी जगह है। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुल्क की तामीर और तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को पूरा करने के लिए वक्फ लोग हैं।
3: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
2: वजीर आजम ने कहा कि खिदमत ही जिंदगी का असल मकसद हयात होना चाहिए और ये जज्बा हर फर्द में मौजूद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी कोई आला ओहदे पर पहुंच जाए तब भी खिदमत ही मशाले राह होनी चाहिए।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन

0: सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि चाहे वो पीएम किसान हो या पीएम सूर्य घर योजना, खिदमत ही सबसे बड़ा मुहर्रिक है और ऐसी बेशुमार स्कीमें हैं जो सफ़े आखिर तक खिदमत की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि यह खिदमत का जज्बा ही है जिसकी बदौलत 4 करोड़ गरीब लोगों को मुस्तकिल मकानात मिले हैं।
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने हैं। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: हुकूमत ने खुर्दनी तेल की घरेलू कीमतों में इस्तेकाम पैदा करने के मकसद से दरामद किए जाने वाले सभी खुर्दनी तेलों पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD में कटौती की है। इस कदम से खुर्दनी तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे के दौरान ग्राहकों को राहत मिलेगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से निमटने में मदद मिलेगी। सारफीन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने बताया कि सूरजमुखी के खाम तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 0, जबकि सोयाबीन के खाम तेल और खाम पाम तेल पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वजारत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने रिफाइंड खुर्दनी तेल पर आयद होने वाली BCD में कटौती की है, साथ ही साथ खाम तेल और रिफाइंड खुर्दनी तेलों के दरमियान इम्पोर्ट ड्यूटी के फर्क को 19.25% पर बरकरार रखा है। वजारत ने मजीद बताया कि खुर्दनी तेलों की BCD पर की गई कटौती में उनकी आमद के बाद मजीद कमी आ सकती है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन के जरिए फवायद की मुंतकली में मदद की उम्मीद है। इस दौरान हुकूमत ने खुर्दनी तेल की अंजुमनों और सनती शराकतदारों को एडवाइजरी जारी की है ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से होने वाले फायदों के ग्राहकों तक पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज़ में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि मिशन कर्मयोगी के जरिए इस नज़रिए को किस तरह बरूए कार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मिशन कर्मयोगी का आगाज सितंबर 2020 में एक ऐसी सिविल सर्विस के तसव्वुर के साथ किया गया था जो मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग हो, भारतीय अकदार से जुड़ी हो और आलमी नुक्ता नज़र की हामिल हो। इस मिशन का मकसद सरकारी अफसरान की सलाहियतों और महारतों को मजबूत बनाना और सिविल सर्विस को शहरियों पर ज्यादा मरकूज बनाना है। मिशन कर्मयोगी के तहत आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 120 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड सारिफीन हैं और मुख्तलिफ शोबों, फंक्शनल और रवैया जाती सलाहियतों से मुतालिक 6,500 से ज्यादा कोर्सेज दस्तयाब हैं। इनमें मसनूई जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुतालिक 200 से ज्यादा कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनका मकसद सरकारी अफसरान को डिजिटल मालूमात और महारतों से आरास्ता करना है। एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का मकसद सरकारी अफसरान को शहरियों पर मरकूज बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का आगाज 2047 तक विकसित भारत के अज्म को पूरा करने के विजन के साथ किया गया।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं, उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: तमाम मरकजी सरकारी मुलाजमीन और ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के अफसरान के लिए अपने मुतालिका शोबों में आई गॉट कर्मयोगी पर सालाना मुकर्रा कोर्सेज मुकम्मल करना जरूरी है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और मुत्तसला जुनूबी ओडिशा में बने हवा के गहरे दबाव की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों

0: में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से सड़कों पर आमोदरफ्त मुतासिर रही। इस दौरान रियासती हुकूमत ने राहत और इनखला से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं कल और हफ्ते के रोज भी मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा के 6 जिलों कोरापुट, गजापति, मलकानगिरी, गुंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ के 37 ब्लॉक्स, 127 ग्राम पंचायतें और 273 गांव मुतासिर हैं। वहीं 20 वार्ड समेत 5 शहरी इलाके भी इस मौसमी सूरत हाल से मुतासिर हैं। मलकानगिरी में पानी के सड़कों और पुलों के ऊपर से बहने की खबर है। वहीं जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने से कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। हुकूमत ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम्स को फाल किया है और राहत साजो सामान की फराहमी को यकीनी बनाते हुए कुदरती आफात से निपटने की उड़ीसा की फोर्स NDRF और फायर खिदमत टीमों को तैनात किया है। एहतियाती कदम के तौर पर गजपति, नवरंगपुर और कालाहंडी में कल स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
0: इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं महकमे मौसमियात ने कल दिल्ली में मतला अबर आलूद रहने की भी पेशगोई की है। बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इशारिया में 1.8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सेंसेक्स 1,249 पॉइंट्स गिरकर 73,581 पर, जबकि निफ्टी 384 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,063 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वसी मार्केट में मिड कैप इशारिये में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप 100 इशारिये में 1.5% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान जर मुबादला बाजार में भी आज रुपए की कदर में 21 पैसे की गिरावट आई और ये डॉलर के मुकाबले 95 रुपए 95 पैसे के करीब बंद हुआ। दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: मेडिकल साइंस इम्तहान के कौमी बोर्ड NBEMS ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट PG 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तालीमी साल 2026-27 के लिए बराह रास्त 6 साला कोर्सेज MD, MS, DNB, DRNB और PG डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तहानात मुल्क भर में 30 अगस्त को मुनक्कद कराए गए थे। NBEMS ने कहा है कि उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से अपना इनफरादी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NBEMS ने मजीद बताया कि वेबसाइट पर अगले महीने की 1 तारीख को आंसर की अपलोड किए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के इजलास के मौके पर एंटीगुआ एंड बरबूडा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउने के साथ मीटिंग की। सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम में ताउन जारी है। उन्होंने दौलत मुश्तरका हुकूमत के सरबराहों की मीटिंग CHOGM की कामयाबी के लिए भारत के मजबूत अज़्म का इजहार किया। सेक्रेटरी मगरिब सिब्बी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर G7 चेयर फ्रांस की जानिब से मुनक़िद G7 तरक्याती वुज़रा के दूसरे इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में जनाब जॉर्ज ने इंसानियत पर मरकूज और जामे तरक्की की राह अपनाने पर जोर दिया जो सर्वोदय के उसूलों पर मबनी है। भारत की तरक्याती शराकतदारी का हवाला देते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने भारत के इस मौकफ़ को उजागर किया कि तरक्की महज माली इमदाद फराहम करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मकसद मकामी सलाहियतों को फ़रोग देना और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाना भी है। जापान के आइची नगोया में जारी एशियाई खेलों 2026 में सीमा कुमारी ने खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ में मुल्क के लिए कांस्य का तमगा जीता है। उन्होंने आज शाम यह तमगा हासिल किया। पिछले 16 साल में एशियाई खेलों में खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ मुकाबले में भारत का ये पहला तमगा है। इस दौरान वुशू में भारतीय खिलाड़ी रोशी बीना देवी नौरेम ने खवातीन के 60 किलोग्राम जुमरे में चीन की जियांग जियायो को 2-0 से शिकस्त के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस दौरान मर्दों के डबल स्कल्स में सलमान खान और सतनाम सिंह ने आज कांस्य का एक तमगा जीतकर आइची नगोया में एशियन गेम 2026

इंतज़ार रहे तो मुलाकात की आस रहती है, दिल में उम्मीद की एक शमा जलती रहती है। लीजिए सुनते हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल।

इश्क वो एहसास है जो लफ्ज़ों में कहाँ आता है, दिल जिसे चाह ले वही खास बन जाता है। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी गज़ल उस्ताद अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

दिल को यूँ छुओगे तो इश्क फिर जागेगा। श्रोताओं, अभी कार्यक्रम के आखिरी से लीजिए, सुनिए चंदन दास अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गज़ल।

कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhalewal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal aur ab athletics mein gold ka intezaar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai aur track and field se lagatar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezaar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पूर्व मराजू विशाल थेनारसु, विद्याराम राज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्याराम राज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया। बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाओ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा। अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला। महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया। ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है। साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है। 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था। 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है। अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे। तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया। वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं। अब बात करेंगे ट्रिपल जंप

0: की जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया, यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रही। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Balraj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Ali Nanto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabhina Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Xiao Zhang. Rushabhina gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabhina Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its 3rd consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an

0: 8 to win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Book found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
1: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी। साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं। उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बाली कोबोकुवा ने 3-2 से हरा दिया। साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं। कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नबखोर खामिदोवा से होगा। मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा। सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई, इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े। सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा। और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई।
0: They were successful in India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chautrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chautrani, the score line being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuong Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favour to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favour.
0: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया, यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं। अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा। दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की। आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा।
0: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shreeja Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his

0: men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shin. Manush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल 4 में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल 4 में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल 2 में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हा यंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Bennison finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Bennison, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Nayocha Singh, Lighton Jim, Varinder Singh, Oynam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the esports arena with Prerna Sharma.
2: Esports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए esports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने esports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle 3 positions individual and team final with APS Tomar, Rudraksh

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म घर में लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। और लीजिए अब सुनिए फिल्म प्रेम गीत का ये गीत, आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर गीता बनर्जी का राग देश में ठुमरी और दादरा।

उपशास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गीता बनर्जी का राग देश में ठुमरी और दादरा। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं। थोड़ी देर में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी

0: influence of a deep depression over north coastal Andhra Pradesh and adjoining South Odisha. The system has triggered waterlogging, road disruptions and a flood-like situation in vulnerable areas, while the state government has intensified relief and evacuation measures. And in the Asian Games 2026, Indian runners have clinched silver in the mixed 4 into 400-meter relay race at Nagoya today. Before that, Seema Kumari won bronze in the 10,000-meter race after finishing at third spot in 32.50 minutes. The achievement marks India's first medal in the women's 10,000-meter event at the Asian Games in 16 years. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ हमारी ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 5:55 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।